सुप्रभात। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम एफ के 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज शनिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 5:57 और 12 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार। कृपया
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री

0: गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: साथियों, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। खेती किसानी सुनिए, सेमिया लता पर लाह की खेती।
3: सेमिया लता दलहन कुल का झाड़ीनुमा पौधा है, जो लाह की खेती के लिए काफी उपयुक्त है। सामान्य जलवायु में पानी के स्रोत के आसपास ही मिलता है, क्योंकि ग्रीष्म काल में जीवित रहने के लिए इसे पानी अवश्य चाहिए। सेमिया लता एक उपयुक्त लाख पोषक वृक्ष है, जिसका बागान लगाकर कृषि की भांति ही लाख की खेती की जा सकती है। लाख खेती हेतु सेमियालता के बहुत अच्छे गुण हैं। एक तो इसका बागान एक वर्ष में ही तैयार किया जा सकता है। बागान लगाने के दूसरे वर्ष से लाख की खेती प्रारंभ की जा सकती है। पौधे की ऊंचाई कम होने के कारण फसल का प्रबंधन काफी आसानी से किया जा सकता है। कुसमी लाख के लिए उपयुक्त होने के कारण रंगीनी से अधिक आमदनी होती है। महिलाएं भी लाख की खेती के कई कार्य इस पर आसानी से कर सकती हैं। दलहन समूह का होने के कारण

0: इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन संचित करती हैं। फसल कटाई के समय ही पौधों की काट छांट भी हो जाती है। फसल कटाई के 6 महीने के बाद दोबारा इन्हीं पौधों पर कीट संचारण किया जा सकता है, जबकि कुसुम वृक्ष पर 18 माह का समय लग जाता है। इन सभी गुणों के कारण सेमिया लता को पोषक पौधा माना जाता है, जो कि लाह की खेती के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके कुछ अवगुण भी हैं, जैसे कि मवेशियों के द्वारा आसानी से चर जाना, सिंचाई की आवश्यकता, आसानी से लाख की चोरी और अधिक कीट संचारण सहन करने की असमर्थता। अगर किसान भाई सेमिया लता पौधे की खेती करना चाहते, पौधा लगाना चाहते, इसका बगान लगाना चाहते हैं, तो आंशिक शुष्क और उपजाऊ या काली मिट्टी में आसानी से लगा सकते हैं। दलहन कुल का होने के कारण पानी एकत्रित होने वाले स्थान इसके लिए उपयुक्त नहीं है। नए पौधे तैयार करने के लिए नर्सरी में बीज द्वारा और आंशिक रूप से कलम करके आप इसे लगा सकते हैं। नर्सरी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिसके आसपास पानी उपलब्ध हो और मवेशियों से बचाने का समुचित प्रबंध हो। नर्सरी बेड सामान्यतः 9x1.2 मीटर के आकार का हो, जिसमें पानी देने और खरपतवार निकालने में आसानी हो, अन्यथा जमीन आपके पास जैसा उपलब्ध है उसके अनुसार बना सकते हैं। लगभग 0.5 मीटर गड्ढा खोदकर मिट्टी को उलट पुलट कर बेड बनाना चाहिए और इसमें 50 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। 15 सेंटीमीटर कतार की दूरी पर बीज लगा देना चाहिए, जिसमें मानसून आते ही लगभग 30 सेंटीमीटर के पौधे प्राप्त हो जाएंगे। नर्सरी में प्रतिदिन पानी का छिड़काव करना चाहिए और तब तक छिड़काव करना चाहिए जब तक मानसून की वर्षा ना हो जाए। समय समय पर खरपतवार भी हटाते रहना चाहिए। किसी भी फफूंद के आक्रमण से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं और कीटनाशक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं कीटों से बचाने के लिए। इसके आकार के प्रत्येक बेड से 700 से 900 पौधे प्राप्त होंगे और 1 हेक्टेयर में सेमिया लता लगाने हेतु इस आकार के लगभग 12 बेड की आवश्यकता होती है। पॉलीथीन थैली जो है उसमें भी आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। इसकी थैली जो है 25x15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इस थैली में मिट्टी, गोबर खाद और बालू के मिश्रण को 2:1 अनुपात में भर देते हैं। थैली के नीचे छिद्र बना देते हैं जिससे पानी ना एकत्रित हो पाए और आवश्यकता से अधिक जो पानी है वो बाहर निकल जाए। अगर आप जमीन में इसे लगाना चाहते हैं तो जमीन की तैयारी और गड्ढे बनाने के लिए गहरी तिरछी जुताई और 2 सीधी जुताई करके मिट्टी बराबर करने की आवश्यकता होती है और प्रत्येक गड्ढा का जो आकार है 45 सेंटीमीटर गहरा, 45 सेंटीमीटर लंबा और 45 सेंटीमीटर चौड़ा खोदेंगे। उसे छोड़ देंगे, गड्ढे में गोबर की खाद अच्छी तरह से मिला देंगे और पौधा लगाने के 25 से 30 दिन पहले इसे भर देंगे। पौधा लगाने की प्रक्रिया मानसून की पहली वर्षा में पूरी हो जाए तो पौधे शीघ्र ही लग जाते हैं। इनकी वृद्धि जल्दी होने से मानसून समाप्त होने के बाद सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। स्वस्थ पौधों को मिट्टी समेत निकालकर पूर्व से तैयार गड्ढे में लगाना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो जड़ें हैं वो क्षतिग्रस्त ना होने पाए।
1: आप सुन रहे थे सेमिया लता पर लाह की खेती, बता रही थी अनीता तिर्की। अब आइए हम आप सभी को सुनवाएं आज का चिंतन।

जीवन प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। इसे जानने, समझने व हस्तगत करने के अलावा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं। प्रायः जो हमारे अत्यधिक नजदीक होता है या जो हमसे अत्यधिक दूर होता है उसकी हम उपेक्षा कर देते हैं। हमारा जीवन हमारे अति निकट है और यही वजह है कि वो हमसे उपेक्षित होता है। हम इसे जानने और समझने की कोशिश नहीं करते। हम इसके लिए थोड़ा भी समय नहीं निकाल पाते।

0: यदि हमें स्वयं को समझना और जानना है तो सबसे पहले हमें अपने जीवन के नजदीक आना होगा, और इसके लिए उपासना, आत्मबोध और तत्वबोध को जानने का प्रयास करना होगा। थोड़ा समय अपने बारे में सोचें कि हम क्या हैं, हम ऐसे क्यों हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे भीतर क्या संभावनाएं हैं, उन्हें किस तरह से निखारना है। इन सवालों का जवाब पाने के लिए एक आदर्श विधि व्यवस्था है जिसमें चार बातें हैं, श्रम, सेवा, सदाचार और स्वाध्याय। श्रम से हमें यह एहसास होता है कि हम जीवित हैं। जो श्रम नहीं करता वो मृत के समान है। जिस दिन व्यक्ति पूरे दिन श्रम करता है उस दिन शाम को वह आत्मगौरव का अनुभव करता है, स्वयं से उसका परिचय होता है। श्रम चाहे छोटा हो या बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम श्रम करने के बारे में सोचते हैं कि जब हम अमुक काम करेंगे तो हमारा श्रम सार्थक होगा, लेकिन जीवन हमारे समक्ष जो भी परिस्थितियां और चुनौतियां प्रस्तुत करे उनसे हमें घबराकर श्रम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा करने पर ही हमारा जीवन उन्नति का द्वार बनता है। जहां पर हम खड़े हैं वही दरवाजा हमारे लिए प्रगति का द्वार बन जाता है। श्रम ऐसी कुदाल है जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व की विभूतियों को खोद सकते हैं। श्रम के संदर्भ में एक सहज प्रश्न उठता है कि श्रम तमाम लोग करते हैं लेकिन उन्हें कोई हीरे जवाहरात नहीं मिलते। इसका कारण है श्रम के साथ उनकी भावना और मनोयोग नहीं जुड़ता है, उस श्रम के साथ उनकी बुद्धि और विवेक नहीं जुड़ते हैं। श्रम तब भी व्यापक और आध्यात्मिक बन जाता है और व्यक्तित्व में प्रगति के द्वार खोलता है जब श्रम सेवा में तब्दील हो जाता है। जब हम सेवा के माध्यम से श्रम करते हैं तो हम निजी जीवन को समृद्ध बनाते हैं और व्यक्तित्व को व्यापक बनाते हैं।
1: यह था आज का चिंतन, संकलन और वाचन दिनेश कुमार लाल का था। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम है आराधना का और आरंभ में सुनिए देशभक्ति गीत।

0: इन्हें देखिए, छुपके ब्रिटानिया गॉबल्स खा रही है। छुपाना भी चाहिए, आखिर गॉबल्स बन गया है सॉफ्टर, टेस्टियर और फ्रूटियर। ब्रिटानिया गॉबल्स, माउथफुल ऑफ टिंग।
1: आई लव

श्री राम के वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, श्री राम वन जा रहे हैं किंतु अब भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे। ना जाने किस सुख की आशा में ये अब भी इस शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर 4 दिनों में वापस लौटावें। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटें तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ। यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार

मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत रथ लेकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़ते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं, किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोकाकुल अयोध्यावासी चित्रलेखित से हो चले हैं।

साथियों, अभी आप श्री रामचरित मानस गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए हम आप सभी को जानकारी दे दें शेष कार्यक्रमों के बारे में।

साथियों, थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे संस्कृत समाचार 6:55 पर और 7 हिंदी समाचार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा 7:05 पर। आप सुनेंगे मुंह का कैंसर और सावधानियां, बताएंगे डॉक्टर स्नेहा, इनसे बातचीत करेंगे संजू कुमार लाल। सुबह सुरेली, ये प्रोग्राम होगा 7:15 से। आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से कुछ गाने, कानून की बात इस कार्यक्रम में। आज हम आप सभी को सुनवाएंगे

निर्मल कुमार भारतीय से ले गए भेंट वार्ता, बुजुर्ग माता पिता का भरण पोषण अधिकार और इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। समाचार प्रभात आप सुनेंगे 8 बजे और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। हम अपने केंद्र रांची से आप सभी को सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार 8:30 पर। लोक रंग कार्यक्रम होगा 8:45 पर और आज आप सुनेंगे पंच परगनिया लोकगीत। फिल्में गाने आप सुनेंगे 9 बजे से कार्यक्रम रसरंजन में और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा 9:30 पर।

मित्र वही जो समय पर काम आए, इस पर चर्चा होगी कार्यक्रम कल्याणी में 10 बजे से। और 10:23 से आप सुनेंगे जोहार रांची। आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:23 पर। इसमें आप सभी को अपनी पसंद के गाने सुनवाए जाते हैं और हमारे श्रोता बहने अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनेंगे गृहलक्ष्मी 12:00।

शैक्षिक प्रसारण होगा 12:23 पर। आप सुनेंगे वार्ता हिंदी साहित्य में अलंकार और रस। वार्ताकार होंगी रीना सहाय और प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की होगी। 12:45 से हम आप सभी को सुनवाएंगे फिल्मी गाने और 1 बजे से आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। साथियों, हमारे आगे के जो भी कार्यक्रम होंगे हम समय समय पर आप सभी को बताते रहेंगे। फिलहाल आप इस वाद्य वादन का आनंद लीजिए और थोड़ी ही देर में आपको सुनवाए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, स्वास्थ्य चर्चा। आप सुनिए मुंह का कैंसर और सावधानियां, बता रही हैं डॉक्टर स्नेहा और इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
2: दोस्तों आज का विषय है हमारा मुंह का कैंसर। क्या वजह है कि लोग मुंह के कैंसर से पीड़ित हो जा रहे हैं और इसका हम बचाव कैसे करें और लक्षण पहचानने की आवश्यकता है कि जब हमें इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ने लगे तो तुरंत सतर्क हो जाना है और चिकित्सीय परामर्श लेना शुरू कर देना चाहिए। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर स्नेहा स्वागत है।
3: नमस्ते।
2: मुंह के कैंसर की बात करें तो अपने भारत में क्या तस्वीर है इसकी?
3: इंडिया में लोग तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, खास करके गांव के इलाकों में या छोटे छोटे शहर में। तो और बट उसके लिए उसका जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो किसी को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस वजह से मरते हैं। और ये सेकंड मोस्ट हाईली कारण है कैंसर, सबसे मोस्ट सेकंड कॉमन कैंसर है हमारे इंडिया में।
2: तो ये ज़्यादातर जो पान बीड़ी गुटखा सिगरेट का सेवन करते हैं वो ज़्यादा हाई रिस्क में आ जाते हैं।
3: हाँ
2: जी, तो कितने तरह के मुंह का कैंसर हो जाता है लोगों को?
3: इसका तो बहुत सारा टाइप्स है, जैसे लिम्फोमा होता है या फिर हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है उसका कैंसर हो जाता है, फिर सार्कोमा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, ये सारे कुछ प्रकार हैं जो बहुत कॉमन है इंडिया में।
2: तो स्नेहा जी,

0: जो इसका लक्षण है कैंसर का, ताकि हम सतर्क हो जाएं और इलाज कराना शुरू कर दें?
1: सबसे पहले तो स्टार्टिंग में इंडिकेशन होता है कि कुछ भी अगर हम स्पाइसी फूड खाते हैं या फिर कुछ भी नमक वाला चीज़ खाते हैं, तो उसकी वजह से पूरे ओरल कैविटी में बहुत ज़्यादा जलन होता है। फिर अगर पानी भी पी रहे हैं या खाना भी खा रहे हैं तो वो स्वॉलो करने में प्रॉब्लम होती है। सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ देखा जाता है कि एक अल्सर के जैसा हो गया, कोई ऐसा घाव हो गया मुँह में या कोई ऐसा लंप बन गया जो 2 वीक से ज़्यादा रह रहा है, और लोग उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है, नॉर्मल अल्सर देख के छोड़ देते हैं जो बाद में बड़ा रूप ले लेता है और बहुत घातक हो जाता है। सबसे मोस्ट कॉमन इसका पॉइंट है टंग के नीचे या फिर लिप्स में भी होता है, और वो पहले धीरे धीरे वो एक नॉर्मल अल्सर की जैसा दिखता है जो बाद में जाकर बड़ा होते जाता है।
0: जी।
1: कैंसर का जो अल्सर होता है उसमें रेडनेस बहुत ज्यादा होता है और उसमें जलन भी बाकी नॉर्मल कैंसर जो हमारे अल्सर्स होते हैं उससे ज्यादा होता है। अगर 2 वीक से ज्यादा कोई सा भी ओरल कैविटी में किसी भी तरीके का अगर आपको घाव है या फिर अल्सर है तो जरूर जाके डॉक्टर को एक बार चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि जनरल जो अल्सर्स रहते हैं वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं।
0: अमूमन लोगों को दांतों में छाले हो जाते हैं और ठीक भी हो जाता है समय के रहते रहते, लेकिन कुछ कुछ जो दांतों के आसपास जीभ के आसपास चकत्ते दिखाई पड़ते हैं, तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है।
1: कैंसर से पहले भी बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, जैसे व्हाइट कलर के पैचेस दिखेंगे आपको अपने मुंह में, जो कि अगर आप उसको रब करो या स्क्रेप करो तो वो नहीं हटेगा। तो उस समय में अलर्ट हो जाना चाहिए, और अगर इस तरह का कोई लक्षण दिखे तो तुरंत अपने किसी भी डेंटिस्ट को जाकर जरूर दिखाना चाहिए। दूसरी बात कि मुंह का खुलना कम हो जाता है, अगर आप कुछ चबा रहे हो ठीक से आप प्रॉपरली चबा नहीं पाओगे, दांत जो है वो थोड़े लूज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ लक्षण जो स्टार्टिंग में दिखते हैं, और अगर किसी भी पेशेंट को ऐसा दिखता है या ऐसा डाउट होता है तो डेंटिस्ट को जरूर जाके दिखाना चाहिए।
0: इस तरह के जो प्रारंभिक लक्षण हमें दिखलाई पड़ते हैं तो हमें सजग और सतर्क होने की आवश्यकता है। अमूमन हम इग्नोर कर जाते हैं, चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। हर चीज़ का हम ख्याल रखते हैं, लेकिन मुंह के अंदर क्या हलचल हो रहा है इससे हम अनभिज्ञ हो जाते हैं। तो बचाव का क्या तरीका है डॉक्टर साहब, और ये जो मुंह का कैंसर है इसका इलाज का क्या तरीका है, कितना वक्त लग जाता है और इसकी तरीका क्या है?
1: देखिए, पहले ही बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम शुरू से ही ये मेक श्योर करना चाहिए, जैसे अगर तंबाकू खा रहे हैं तो उसका तंबाकू नहीं खाना चाहिए, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जो भी गुटखा वगैरह में जो एक रहता है कसैली, जिसको अरेका नट भी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है जिसके वजह से कैंसर होता है। तो पहले हमें उसको प्रिवेंट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ लक्षण दिखता है, इन केस आपको बहुत ज़्यादा तंबाकू वगैरह का सेवन करने का आदत है, तो तुरंत जाकर अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, और प्रॉपर हर 6 महीने मंथ्स में डेंटिस्ट को जाकर आप चेकअप करवाइए।
0: और इलाज का क्या तरीका है?
1: इलाज का स्टार्टिंग लेवल में अगर शुरुआत में पता चल जाता है तो मेडिकेशंस देकर भी प्रिवेंट होता है, उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी देते हैं, फोटोन बीम थेरेपी देते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा फैला नहीं है तो फिर हम लोग एक्साइज करके भी निकाल सकते हैं, सर्जिकली भी रिमूव हो सकता है
0: जी।
1: उसके अलावा ये थेरेपी 3 महीने, 6 महीने, साल भर और फॉलोअप लेते रहते हैं हम लोग बीच बीच में, ताकि वो रीअकर ना करे।
0: जी, ये चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करता है, ना पान खाता है, ना बीड़ी पीता है, ना तंबाकू का सेवन करता है, फिर भी इस तरह की बीमारियों से वो ग्रसित होता हुआ दिखलाई पड़ जाता है, क्या कारण है इसके?
1: उसका कारण है कि आपकी या तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है किसी रीज़न से, बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी किसी को कैंसर होता है, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से भी माउथ और नेक का कैंसर होता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो मतलब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको। फिर एक सबसे मोस्ट कॉमन होता है चीक बाइटिंग अगर हम लोग इग्नोर करते हैं इनिशियल स्टेज में। चीक बाइटिंग मतलब दांत के बीच में अगर आपका गाल फंसता है, अगर उसको आप इनिशियल स्टेज में अगर मतलब वो तो आपको पता चल जाता है, जैसे आप खा रहे हो बार बार आपका जो चीक है वो बाइट दांत के बीच में आ रहा है, बाइट हो जा रहा है, वाइट सा लाइन आ जा रहा है, अगर उसको आप इग्नोर कर रहे हैं तो वो प्रोग्रेस होते होते वो भी एक बार कभी कैंसर का रूप ले लेता है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा गर्म खाते हैं या कुछ मतलब उस तरह का कोई फैक्टर है, तो वैसे उस तरह से भी फैलता है, मतलब वो कैंसर हो जाता है।
0: जी, अपने शरीर के अन्य अंगों की देखभाल करते हैं, वैसे हमें दांतों की भी देखभाल करने की ज़रूरत है। ये जो इलाज चलता है बहुत लंबा चलता है, इसमें पैसे भी काफ़ी लगते हैं और मानसिक तनाव से भी हमें गुजरना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा जब स्थिति विकराल हो जाती है तो व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो

0: हमें सजग, सतर्क, सावधान होने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को कि इस तरह की चीज़ों से दूरियां बनाएं, खान पान में आप अच्छी चीज़ों का सेवन करें, स्वस्थ भोजन खाएं ताकि आप स्वस्थ रहें और आपके दांतें मजबूत रहें।
1: जी हाँ, पहले तो अगर किन्हीं को भी तंबाकू या फिर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करने की आदत है तो वो चीज़ में सुधार करना चाहिए। दूसरी बात कि आपको अपना डाइट बहुत अच्छा रखना चाहिए, विटामिन सी वगैरह अच्छे से खाओ, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से लेना चाहिए, जो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको कोई सा भी कैंसर का लक्षण दिखता है तो तुरंत से तुरंत आपको अपने डेंटिस्ट को जाकर दिखाना चाहिए, क्योंकि स्टेज 1-2 में फिर भी क्योरेबल होता है, जैसे प्रोग्रेस हो जाता है बहुत लोगों की जान भी चली जाती है, तो इनिशियल स्टेज में दिखाना मस्ट है।
0: अपने जिले की हम बात करें, यहाँ क्या स्थिति है इलाज का?
1: सर, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे क्लिनिक में, कहीं पे भी ये इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से होता है। और इसका क्या होता है कि जैसे कि अगर कैंसर प्रोग्रेस हो गया है और अगर हमें बहुत बार ऐसा होता है कि जबड़े को काट के निकालना पड़ा या फिर टंग को निकालना पड़ा, तो उसके लिए हम लोग अलग से एक ट्रीटमेंट सर्जरी भी करते हैं जिससे हम लोग फिर से उसको रिकन्स्ट्रक्ट भी कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं।
0: घबराने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी आदतें डालिए।
1: जी हाँ,
0: खान पान में आप सुधार कीजिए और फल फूल और अनाज का सेवन कीजिए। बाहर की चीज़ों से आप जितना दूरियां बनाएंगे आप उतना ही स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि खान पान का संबंध आपके दांतों से भी जुड़ा हुआ है। दांतें स्वस्थ रहेंगे, किसी भी तरह की बीमारी आपके दांतों के अंदर नहीं रहेगी, तो आप स्वस्थ रहेंगे, खूबसूरत दिखेंगे, हंसते रहेंगे, और जब हंसेंगे तो आपकी मोती जैसे दांत आपके चमकते रहेंगे और एक आत्मविश्वास भी आप में जागेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्नेहा, दंत रोग विशेषज्ञ, बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी मुंह के कैंसर के बारे में, लक्षण क्या है और कैसे हम इससे बचाव करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, अगले दिन एक नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।
2: मुंह का कैंसर और बचाव, बता रहे थे डॉक्टर स्नेहा और इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। साथियों, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब हमारा कार्यक्रम है सुबह सुरेली।

0: लता मंगेशकर और शमशाद बेगम से ये गाना सुन रहे थे साथियों, फिल्म थी बैजू बावरा। आप इस समय पुराने फिल्मों के कुछ गाने सुन रहे हैं, ये आकाशवाणी रांची केंद्र का प्रसारण है। अगला गाना इस ब्रेक के बाद।
1: एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-9-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: साथियों, आप सुबह सुरीली प्रोग्राम में फिल्मी गाने सुन रहे थे और अब हमारा कार्यक्रम है कानून की बात।
1: मित्रों, बहुत सारे विवाद न्यायालय में लंबित रहते हैं। जब मामले न्यायालय में लंबित होती है तो फिर काफ़ी इसमें विलंब हो जाता है और फिर व्यक्ति तनाव से भी ग्रसित हो जाता है। लेकिन जब विवादों का निपटारा सही से किया जाए, त्वरित गति से किया जाए, तो इसमें सभी को लाभ मिल जाता है। एक ऐसा ही समारोह चलाया हुआ जिसे हम समाधान समारोह 2026 कहते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा है। इसमें बहुत सारे मामले जो न्यायालय में लंबित है उसका निष्पादन त्वरित गति से किया जाएगा और सभी को सुलभ न्याय प्राप्त हो पाएगा। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि समाधान समारोह 2026 क्या है, किस तरह के मामलों का इसमें निष्पादन होगा, कौन से ऐसे मामले जो लंबित हैं और किस न्यायालय में मामले लंबित है, उस मामले को समाधान समारोह में लाकर उस मामले को त्वरित गति से निष्पादित किया जाएगा और इसमें सबको न्याय मिलेगा। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए कि समाधान समारोह क्या है, इसमें आप सुलभ न्याय किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं झालसा के अंडर सेक्रेटरी श्री दीपक कुमार साहू जी। दीपक जी, स्वागत है।
2: नमस्कार
1: दीपक जी। आने वाले समय में समाधान समारोह 2026 बड़े जोर शोर से इसकी तैयारी शुरू की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय और नालसा के द्वारा। तो ये समाधान समारोह क्या है और किस तरह के मामलों का इसमें निष्पादन किया जाएगा?
2: जी बिल्कुल, ये समाधान समारोह जो नालसा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, इसके माध्यम विशेषकर यह विशेष लोक अदालत है, स्पेशल लोक अदालत जिसको हम लोग जानते हैं, ये 21, 22 और 23 अगस्त को इसके संबंधित जो भी केसेस जो हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, उन केसेस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उनको चिन्हित करते हुए सभी पूरे भारतवर्ष में सभी राज्य स्तर पर जो भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है वहाँ भेजा जा रहा है, ताकि वहाँ से जो भी पार्टीज़ हैं, संबंधित पार्टी जहाँ पर रह रहे हैं, उनको इनकी सूचना मिले और उनको सूचना मिलने के साथ वो संबंधित जो भी नियरेस्ट जो डालसाज हैं और SLSAs हैं, वहाँ जाकर आपसी में दोनों पक्ष उपस्थित होकर केस का अपना अगर निपटारा करना चाहते हैं मीडिएशन माध्यम से, प्रोसेस मध्यस्थता के माध्यम से, तो केस का निपटारा कर सकते हैं। और जब वो केस का निपटारा हो जाएगा तो वही केस जो है यहाँ से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे और 21, 22 और 23 अगस्त को एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बेंच का गठन होगा और जो भी सेटल्ड केसेस है उनका फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है ये समाधान जो समारोह है, ये राष्ट्रीय मतलब विधिक सेवा प्राधिकार जो है उनके तत्वाधान में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है एक सुलह का संकल्प और न्याय का विकल्प को देखते हुए, हम लोग कहते हैं न्याय आपके द्वार, समाधान के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय नालसा के माध्यम से, झालसा डालसा के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाह रही है, ताकि लोग अपने केसेस का त्वरित गति से और इजी वे पे उसको समाधान कर सके।
1: तो इसमें जो मामले लंबित पड़े हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय में और जो मामले जिस जिले का है, उस जिले में उस मामले की सुनवाई होगी इस समाधान समारोह में?
2: जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, जिस किसी भी व्यक्ति का मामला पेंडिंग है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैसे केसेस का आइडेंटिफिकेशन किया है, जैसे कि पूरे भारतवर्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 45,000 केसेस का उन लोगों ने सिलेक्शन किया है, जिसमें लगभग 600 के आसपास के केसेस हमारे झारखंड राज्य में भी आए हैं। तो इनसे संबंधित हम लोग जो संबंधित डालसा जो है नीचे जिला स्तर पे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से, इवन झालसा में जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो केसेस हैं जिसमें पार्टीज हैं, तो झालसा के माध्यम से भी हम लोगों ने सबको पूरे जिला स्तर में रह रहे जो भी लिटिगेंट हैं उनको हम लोग नोटिसेस किए हुए हैं, और उनको नोटिस करने के बाद उनके जो भी उनकी सहूलियत के हिसाब से, उनके टाइम के हिसाब से, वो संपूर्ण जैसे एज फॉर एग्जांपल सपोज कोई व्यक्ति धनबाद का रहने वाला है, उसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, तो हम लोग धनबाद के पार्टी को भी नोटिस किए हैं और उनके जो अपोजिट पार्टी, चाहे वो गवर्नमेंट साइड से हो या फिर कोई प्राइवेट पार्टी ही हो, दोनों को नोटिस करने के बाद उनको हम लोग उन वही नियरेस्ट जो डालसा के जो ऑफिस है वहाँ पर मेडिएटर नियुक्त करके और वहाँ पर हम लोग उनका मेडिएशन कराएंगे। अगर दोनों पक्ष आकार आपस में आकर और आपसी सहमति से उसका सुलह करते हैं, तो उनके द्वारा जो सुलहनामा है उसको हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उनको भेजेंगे और फाइनली फिर 21, 22, 23 जो तीन डेट निर्धारित किया गया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच, हाँ अगस्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो बेंच जो बनेगा उसमें इस केस का निपटारा कर दिया जाएगा। तो बिना वहाँ सुप्रीम कोर्ट गए दिल्ली गए भी मामला का निष्पादन। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप जो यहाँ जुड़ेंगे तो VC जो मतलब ऑनलाइन भी आप उससे कनेक्ट होके और घर बैठे भी आप अपना केस का निपटारा कर सकते हैं।
1: क्योंकि जो व्यक्ति जिस जिले का है, कोई धनबाद का है, कोई चतरा का है, कोई पलामू का है और उसके मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं तो उसको सूचना जाएगी, उसके पास चिट्ठियां जाएंगी,
2: नोटिस वगैरह
1: बहुत तरह से सूचनाएं आजकल संप्रेषित हो जाती है। तो वो व्यक्ति जहां का है वहीं पर एक मेडिएटर के द्वारा उसकी बातों को सुना जाएगा और वहीं पर समाधान निकालने की एक त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
2: मैं छोटा ये भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी क्या है कि नोटिस की प्रक्रिया जारी है और सभी जगहों पर नोटिस जारी है, तो बहुत जगह से ऐसे कॉल भी आते हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से बोलूंगा नोटिस से डरे नहीं, वो नोटिस आप के ही केस के समाधान के लिए बड़ा उसको अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोगों ने उसको भेजा है। क्योंकि बहुत जगह से कॉल आते हैं कि नोटिस आया है, लोग डरते हैं, थाने से भी जा रहे हैं, तो ये समाधान समारोह बिल्कुल आपके लिए रखा गया है और आपके केसेस का सौहार्दपूर्ण तरीके से त्वरित गति से समाधान के लिए रखा गया। इसलिए नोटिस जो है, नोटिस मिलने के बाद आप लोग जो है उसमें जो भी प्रक्रिया उसमें आप पार्टिसिपेट करें, अगर आपको सहमति आपके साथ अगर समाधान करना चाहते हैं, उस केस का सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो मध्यस्थता के माध्यम से आपकी सहमति के साथ ही केस का निपटारा होगा
1: जी। समाधान समारोह एक तरह का विशेष लोक अदालत है
2: जी।
1: इसमें दोनों पक्ष जहां पर हैं वहीं पर आपको सर्वोच्च न्यायालय जाने की
2: आवश्यकता
1: नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आपके घर पर ही न्याय सुलभ है। दोनों पार्टियां मिलेंगे और मिल बैठकर एक मेडिएटर के समक्ष अपनी बातें रखेंगे और वहां जब सुलह हो जाती है, बात बन जाती है, आपस में एक राजीनामा हो जाता है, दोनों पक्षों की जीत हो जाती
2: जी,
1: है
2: जी,
1: एक तरह की ये एक ADR जिसे हम कहते हैं,
2: बिल्कुल
1: डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, मिल बैठकर एक मेडिसन के
2: मध्यस्थता के माध्यम से
1: के द्वारा बात आपकी बन जाती है और एक निर्णय पर आप पहुंच जाते हैं। जो वर्षों से मामले लंबित चल रहे हैं,
2: बिल्कुल
1: आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और फिर आप तनाव से भी घिरते हैं, काफी वक्त लगता है, तो एक बहुत बड़ा न्याय प्राप्त करने का एक अवसर है समाधान समारोह 2026 जो आगामी 21, 22, 23 अगस्त को हर जिले में जहां जहां के मामले हैं सर्वोच्च

0: विधायक तक पहुंचे हुए हैं, उस जिले में नोटिस के माध्यम से आप तक जाएगा और इस नोटिस को पढ़कर देखकर घबराए नहीं, आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा अवसर है न्याय प्राप्त करने का, न्याय आपके द्वार आपके घर पे ही न्याय सुलभ होगा
1: जी।
0: तो इसमें जो भी समाधान होगा दीपक जी, आगामी 21, 22, 23 अगस्त 2026 को, और प्रकृति क्या होगी जो मिल बैठ कर जो भी बात बनेगी
1: जी, बिल्कुल इसमें बैठने बाद मैं बताऊँ तो नेचर ऑफ जो केसेस है, जैसे किसी भी तरह के केसेस आपके लाइक दीवानी मामले हैं या फिर कोई वैवाहिक संबंधिक डिस्प्यूट हैं, बैंक ऋण से मामले हैं, बैंक वसूली के मामले, बीमा संबंधित दावे हैं, या फिर आपके मोटर दुर्घटना हो गए, सुलह योग्य आपराधिक मामले, जमीन जायदाद से संबंधित मामले, मैट्रिमोनियल जो आपके केसेस हैं, चाहे सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित भी किसी व्यक्ति के मामले कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, वैसे सारे मामले को इसमें लिया गया है और वैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। कुछ नोटिसेस आपके पास माध्यम से भेजा जा रहा है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चिन्हित करके भी दिया गया है, उसके अलावे भी वैसे मामले जिनमें पार्टी जो भी लिटिगेंट्स हैं उनको लगता है कि ये मामला हमारा सुलहनीय है लेकिन हमें उसका नोटिस नहीं मिला है, तो वैसे मामले को भी लेकर अगर आप संबंधित नज़दीकी जो डालसा वहाँ जाते हैं या झालसा में आकर अपने बातें, तो वैसे मामलों का भी हम लोग निपटारा उसमें करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जिनको नोटिस मिला तो ये मान के चले कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया गया है तो वही मामलों का ही सिर्फ निपटारा होगा, ऐसा नहीं है। वैसे भी मामलों का निपटारा होगा जो सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है और आपको लगता है कि ये मामले का निपटारा हो सकता है और हम लोग राजी हैं, तो निसंकोच आप लोग अपने नज़दीकी जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है या झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जो रांची में है वहाँ आप लोग पहुँचे और अपनी बातों को रखें, आप लोगों का जो केसेस का जो भी है प्रॉपर वे पे मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा किया जाएगा।
0: दीपक जी, समाधान समारोह 2026 जो आगामी 21, 22, 23 अगस्त को सभी जिले में होगा, जहां जहां केसेस लंबित है सर्वोच्च न्यायालय में, ये एक स्वर्णिम अवसर है लोगों को न्याय प्राप्त करने का।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: और मिल बैठ कर यदि हम समस्या का समाधान कर लेते हैं तो जो मामले वर्षों तक लंबित पड़े हैं उससे आपकी मुक्ति मिल जाती है।
1: बिल्कुल,
0: मिल बैठकर समस्या का समाधान हो जाता है तो दोनों पक्ष इसमें राजी हो जाते हैं, दोनों पक्षों की जीत हो जाती है और त्वरित गति से आपको न्याय मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि आप जो तनाव या अवसाद से घिर जाते हैं लंबे लंबे, जो आपको समय लगता है और बार बार आपको सर्वोच्च न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उससे आपकी मुक्ति मिलेगी।
1: मुक्ति मिलती
0: और
1: है।
0: आपके शहर में जहां आपने मामला दायर किया है सर्वोच्च न्यायालय तक आपकी बात पहुंची हुई है और आपको न्याय नहीं मिल पाया, आपको ऐसा लगता है, तो घर बैठे ही आपको न्याय सुलभ हो जाएगा। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जिनके मामले लंबित हैं सर्वोच्च न्यायालय में, जिनको नोटिस पहुंच रहा है या जिनको नोटिस नहीं भी पहुंच रहा है, वो इस सेवा का लाभ उठाएं,
1: बिल्कुल
0: इस अवसर का लाभ ले।
1: बिल्कुल, देखिए बहुत सही बात आपने कहा, अभी समाधान समारोह के माध्यम से अपने न्यायालय जो है उनका भी यही मानना है कि जो हम लोग जिसमें पार्टिसिपेंट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन से इसमें होना चाहिए, कभी क्वेश्चन है क्यों हम पार्टिसिपेट करें, तो आपने जैसे बताया कि पहला कि एक त्वरित एवं समयबद्ध निपटारा है
0: जी,
1: कि तुरंत इसमें बहुत ज़्यादा लेट होता नहीं है, तुरंत विद इन मिनट्स में केसेस का अगर दोनों पार्टी सहमति में मिल जाए तो विद इन मिनट्स में केस का निपटारा हो जाता है, टाइम बाउंड निपटारा हो जाता है। दूसरा चीज, कोई लंबी न्यायिक प्रक्रिया नहीं रह जाती कि बहुत लंबी प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ता है, इसमें तुरंत एक दो पार्टी आते हैं सेटलमेंट करते हैं, अवार्ड बनता है, डिस्पोज हो जाता है मैटर, तो लंबे समय से अरसे से चला रहा केसेस का भी आपका निपटारा होता है। तीसरा कि किफायती समाधान है, किसी तरह का बहुत ज़्यादा आपका कोई कॉस्ट नहीं लगना, कॉस्ट बेयरिंग है नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको उसमें खर्चे लग रहे हैं या अलग से आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, फी देने पड़ रहे हैं। उसके अलावा कि पक्षकारों की भी आपसी सहमति हो जाती है तो एक सौहार्दपूर्ण तरीके से होता है, आपने कहा ना किसी की हार होती ना किसी की जीत होती है, और एक अच्छा मतलब एक संबंध भी बना रहता है, और देखा जाए तो विवाद का अंतिम निपटारा भी यहीं से निस्तारण भी हो जाता है। तो देखा जाए तो इस तरह से विन विन ही सिचुएशन है, अगर हम इस तरह के कैंपेन को यूज करते हुए और इस तरह का मध्यस्थता की प्रणाली को हम अपनाते हैं, केस का निपटारा करते हैं, तो दोनों पार्टियों की जीत है। और मैं यही कहूँगा कि ये जो समाधान समारोह जो लाया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय नालसा के द्वारा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इसका मतलब इसका
0: लाभ
1: लें, और लाभ लेने के बाद अपने केस का जो है निपटारा करें
0: जी, और घर पे ही सारे मामले
1: घर पे ही घर बैठे आपके सारे मामलों का निष्पादन हो जा रहा है, ये और भी अच्छी बात है आप लोगों के।
0: तो मित्रों, समाधान समारोह का आप लाभ लें। जो भी मामले आपके सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इस समाधान समारोह में आप अपनी बात को लाकर आप अपनी जो भी विवाद है उसका निष्पादन आपके गृह जिले में, जहां से आपने मुकदमा दायर किया है, उसी जिले में, उसी जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आप जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और उस दिन त्वरित गति से, बिल्कुल आसान से, सुगमतापूर्वक आपको न्याय मिल जाएगा इस समाधान समारोह में।
1: जी
0: बड़ी अच्छी एक पहल है
1: जी
0: माननीय
1: बिल्कुल
0: सर्वोच्च न्यायालय की
1: माननीय
0: तरफ से।
1: सर्वोच्च।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीपक कुमार साहू जी, अंडर सेक्रेटरी झालसा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और समाधान समारोह 2026 पर आपने बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: नमस्कार।
0: मित्रों, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह एक नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

साथियों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण। कृपया इंतजार करिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया

0: जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1

0: 2,00,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता

0: ता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्य ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा सात चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है, बैट बीएमएस जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नौ आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है, हलाला तीन तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है, घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ न करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat Anti-Terrorist Squad arrests eight people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Uran scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs.

0: on removal of the three Chinese apps after these were allegedly found being misused for stalling e-rickshaws. The Hindu writes SIT likely to re-audit Ram Temple Trust accounts for 5 years. And finally, a report in Times of India states Bangalore, Chandigarh and Delhi having the highest average income in the country. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals and men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है प्रादेशिक समाचार का।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में बेहतर वित्तीय अनुशासन के लिए झारखंड को मिला अचीवर का दर्जा। देश के टॉप 3 राज्यों में बनाई जगह। राज्य में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक। कम पानी वाली मिलेट की खेती बढ़ाने पर दिया जोर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की SIR कार्यक्रम की समीक्षा। कहा हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो दर्ज। राज्य के संथाल और कोल्हान सहित आधे हिस्से में मॉनसून सक्रिय। 8 जुलाई से पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान। और रांची के खेलगांव में तीसरी जिला शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निशाना लगाकर किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में झारखंड ने देश के टॉप 3 राज्यों में जगह बनाई है। बेहतर वित्तीय अनुशासन के कारण राज्य को अचीवर श्रेणी मिली है। झारखंड ने टैक्स राजस्व 60% से अधिक रखा और राजकोषीय घाटे को 3% से नीचे बनाए रखा। संतुलित कर्ज प्रबंधन और बुनियादी ढांचे पर खर्च से राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। राज्य में कमजोर मॉनसून और एल नीनो के प्रभाव से पैदा हुई सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। राज्य में अब तक सामान्य से 54% कम बारिश दर्ज की गई है। मंत्री ने पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर कम पानी वाली मिलेट की खेती को बढ़ावा देने और आपातकालीन योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं।
4: वर्षा का सदुपयोग करते हुए हम लोग लगभग कम से कम 60% तक बिचड़ा हम लोग ले जा पाएंगे और आशा करते हैं कि जितने भी किसान हैं वो भी जो अन्य फसल हैं उसके तरफ भी अल्टरनेटिव के रूप में आगे बढ़ेंगे। कुछ कुछ जिला में हम लोगों को रिपोर्ट भी हुआ है कि जैसे मोटे अनाज जैसे मड़ुआ एक्सेट्रा दलहन तिलहन इन सभी फसलों का भी किसान ज्यादा उपयोग कर रहे हैं इस साल वर्षा को देखते हुए।
3: इधर राज्य सरकार प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि नई कृषि नीति के तहत किसानों को आसान शर्तों पर बैंक लोन प्रोसेसिंग यूनिट्स और ग्लोबल मार्केट लिंकेज की सुविधा मिलेगी जिससे पारंपरिक खेती एक मुनाफे वाले बिजनेस में तब्दील हो सके।
5: झारखंड मोर और लेस जो है कृषि प्रधान राज्य ही है, खनिज भी है यहाँ पे। हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, उसमें किसानों को अधिकतम सब्सिडी मिले, इंडस्ट्री घोषित होने से जो उनके जो एलाइड बेनिफिट्स हैं वो उनको प्राप्त हो, इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रहे हैं और एग्रीकल्चर पॉलिसी इसी बात को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि किसानों को इसमें अधिकतम किस तरह से हम लोग लाभ पहुंचाए।
3: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची के रिम्स में अत्याधुनिक क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य में आंखों की जटिल बीमारियों का आधुनिक इलाज संभव होगा।
6: रिम्स में बेहतर से बेहतर हम सुविधा कैसे दें, इस दिशा में मेरा फोकस रहता है। झारखंड वासियों को आईज हॉस्पिटल समर्पित करने जा रहे हैं। रिम्स के कैंपस में ये हॉस्पिटल है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, विजन है कि आम जनता तक हम स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाएं, उनका बेहतर इलाज हम करें।
3: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की ऑनलाइन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। घर घर गणना और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से पूरा करने को कहा गया है। सभी नए नाम 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित किए जाएंगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा की बेटी तनिषा गौतम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगी। गुजरात के सानंद में भारत की पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च के अवसर पर यह संवाद होगा। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यरत तनिषा इस ऐतिहासिक मिशन से जुड़े अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा करेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आगामी 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में झारखंड सरकार की ओर से आयोजित होने वाले नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की तैयारी तेज कर दी गई है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हो रहा यह आयोजन राज्य के विजन 2050 को गति देने और झारखंड को आईटी, एआई तथा औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
7: हम इंडस्ट्री, आईटी और टूरिज्म को नेशनल लेवल पर भी प्रमोट करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग दिल्ली से करेंगे। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मानसून में ट्रेवल करना सबसे सेफ है। हमारे यहां कोई लैंडस्लाइड्स नहीं है, कोई फ्लड नहीं है, किसी पर्यटक के रास्ते बंद होने की स्थिति में फंसने की कोई संभावना नहीं है। तो हम दो पॉलिसी का ड्राफ्ट वहां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक झारखंड की टूरिज्म पॉलिसी का ड्राफ्ट है और दूसरा झारखंड की होम स्टे पॉलिसी का ड्राफ्ट है।
3: प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पुत्र रोहित उरांव को नया समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 6 और 7 जुलाई को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इससे पहले जून में समय मांगने के कारण उनकी पूछताछ टल गई थी। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड अंतर्गत बेलबेड़ा गांव में मलेरिया का प्रकोप बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्क्रीनिंग अभियान में अब तक 336 लोगों की जांच की गई है, जिनमें से 160 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रभावित इलाके में मेडिकल टीमें घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही हैं और संक्रमितों को मौके पर ही दवाएं दी जा रही हैं। राज्य के आधे हिस्से में अगले 4 दिनों तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। इससे संथाल और कोल्हान सहित पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 8 जुलाई से मॉनसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। रांची के खेल गांव में तीसरी जिला शूटिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खुद निशाना लगाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
8: इनके पीछे जो योग अभ्यास है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी संस्कृति यही बताती है कि हम अपने जीवन में या फिर किसी भी क्षेत्र में जहाँ हम काम कर रहे हो, हमारे पास अनुशासन होने की आवश्यकता है। धैर्य एक सबसे बड़ी बात, मैं समझता हूँ कि यदि हम धैर्य का धारण करते हैं तो हम धर्म का पालन करते।
3: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकतर प्रमुख अखबारों ने राज्य के वित्त मंत्री द्वारा सुरक्षा वापस किए जाने

की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नाराज वित्त मंत्री ने तीनों गाड़ियां और सभी 16 सुरक्षाकर्मी लौटाए। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड की पंचायतों को मिलेंगे 14,231 करोड़। प्रभात खबर के शब्द हैं, वित्त विभाग में लटक रही योजनाओं की फाइल, तीन मंत्रियों ने जताई आपत्ति। दैनिक जागरण लिखता है, जेपीएससी सिविल सेवा पीटी में 2,204 सफल। और अंत में मुख्य समाचार, नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में बेहतर वित्तीय अनुशासन के लिए झारखंड को मिला अचीवर का दर्जा, देश के टॉप 3 राज्यों में बनाई जगह। राज्य में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक, कम पानी वाली मिलेट की खेती बढ़ाने पर दिया जोर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की SIR कार्यक्रम की समीक्षा, कहा हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो दर्ज। राज्य के संथाल और कोल्हान सहित आधे हिस्से में मॉनसून सक्रिय, 8 जुलाई से पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान। और रांची के खेल गांव में तीसरी जिला शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निशाना लगाकर किया शुभारंभ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

साथियों, अभी आप पंच परगनिया लोक गीत सुन रहे थे और इसी के साथ लोक रंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम है रसरंजन और अब आप सुनेंगे फिल्मी गाने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी से ये गाना अभी आप सुन रहे थे साथियों, फिल्म थी ताजमहल। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई थी रोशन ने। आप फिल्मी गाने सुन रहे हैं, ये आकाशवाणी रांची केंद्र का प्रसारण है और कार्यक्रम है रसरंजन। आपके साथ मैं हूँ राजेश। अब सुनिए पाकिजा फिल्म का ये गाना।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के
4: नाम। दादी आपके नाम
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

नीलकमल, ये थी फिल्म जिसका गाना अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी से। आप फिल्मी गाने सुन रहे हैं। चौदहवीं का चांद। अब आइए हम आप सभी को सुनवाएं इस फिल्म का ये गीत, और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

हम मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये गाना सुन रहे थे। फिल्म थी चौधमी का चांद। अब सुनिए सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना।

लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में यह गाना आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था इंदिवर ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म थी सरस्वती चंद्र। और अब जो गाना आप सुनेंगे

बहारो मेरा जीवन भी सवारो, आप लता मंगेशकर के स्वर में ये गाना सुन रहे थे। और अब आइए हम आप सभी को सुनवाते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

थोड़ी सी बेवफाई। आप इस फिल्म का गाना सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर से। साथियों, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम रसरंजन यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारा कार्यक्रम है शास्त्रीय संगीत का और

0: इस समय आप सुनेंगे सितार पर राग अहिर भैरव में अलाप, जोड़ के बाद दो गते हैं और दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध हैं। कलाकार हैं पंडित मोर मुकुट केडिया और इनका साथ दिया है तबले पर सृजीत चटर्जी ने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। सितार पर राग अहीर भैरव में अलाप और जोर के बाद दो गते प्रस्तुत थी। दोनों ही गते तीन तार में निबद्ध थी। कलाकार थे पंडित मोर मुकुट केडिया, संगत कलाकार थे तबले पर श्रीजीत चटर्जी। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

श्रोताओं, नेत्रदान महादान होता है। हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी आंखों से कोई नेत्रहीन इस दुनिया को देख सकता है, इस रंग बिरंगे नज़ारे का वो भी देख सकता है। तो हमें हमेशा अपने जाने के बाद पहले अपना नेत्रदान ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारे ना रहने पर भी हमारी आंखों से कोई इस दुनिया को देख सके।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी। चर्चा में आज आप सुनेंगे मित्र वही जो समय पर काम आए। वार्ता में आज बातें होंगी परिवार में बढ़ती संवादहीनता पर। वार्ताकार हैं अरुणा प्रकाश और भेंट करता है संजीव कुमार लाल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की।

कल्याणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आप सब स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारी जिंदगी से, हमारे परिवार से, पास पड़ोस से और समाज से जुड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातों की जानकारी और चर्चा आपके साथ करते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दे पर आपसे चर्चा करते हैं और विभिन्न पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ज़रूरत के समय काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। इस कहावत का अर्थ है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में हमारा साथ देता हो। बहुत से लोग खुद को दोस्त कहते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनता है। यही गुण सच्चे दोस्तों को सिर्फ जान पहचान वाले से अलग करता है। तो साथियों, आइए एक खास विषय पर हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि मित्र वही जो समय पर काम आए। मित्रों, मानव जीवन में मित्रता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसे जीवन के हर पड़ाव पर ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे। सच्चा मित्र वही होता है जो केवल खुशी के अवसरों में ही नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी हमारा साथ निभाए। इसलिए तो कहा गया है, मित्र वही जो समय पर काम आए। यह कहावत हमें सच्ची मित्रता का वास्तविक अर्थ समझाती है। सच्चा मित्र वह नहीं होता जो केवल हमारी प्रशंसा करे या हमारे साथ मनोरंजन करे। वास्तविक मित्र वह होता है जो हमारी गलतियों को बताकर हमें सही मार्ग दिखाए। जब पूरा संसार हमारा साथ छोड़ देता है, तब सच्चा मित्र ही हमारा साथ, हमारे हाथ थामने में आगे रहता है। वह बिना किसी स्वार्थ के हमारी सहायता करता है और हमारी सफलता में सच्चे मन से प्रसन्न होता है। दोस्तों, आज के कठिन समय में मित्र की सही पहचान होना जरूरी है। कहा जाता है कि सोने की पहचान आग में ही होती है और मित्र की पहचान कठिन समय में होती है। जब जीवन में आर्थिक संकट, बीमारी, असफलता या किसी अन्य परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब बहुत से लोग हमें साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के हमारी सहायता करता है, वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सर्वोच्च उदाहरण है। सुदामा अत्यंत गरीब थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें कभी नहीं बुलाया। जब सुदामा कठिन परिस्थिति में द्वारका पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने उनका अत्यंत सम्मान किया और उसकी सहायता की। यह घटना बताती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और अपनत्व पर आधारित होता है। मित्रता में विश्वास और ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है। मित्रता की नींव विश्वास पर ही टिकी होती है। यदि मित्र एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे और हर परिस्थिति में साथ निभाए, तो यह संबंध जीवन

0: पर मजबूत बना रहता है। सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देता और न ही अपने मित्र की पीठ के पीछे बुराई करता है। आज के समय में मित्रता कितना जरूरी है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोग मित्र बन जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं हो सकता। मित्रों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण उनके साथ संबंध में गुणवत्ता होती है। मित्र चुनते समय उसके संस्कार, व्यवहार और चरित्र पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सच्चे मित्र के गुण क्या क्या है, आइए हम आपको बतलाते हैं। सच्चे मित्र में अनेक अच्छे गुण होते हैं। वह हर परिस्थिति में साथ देता है, हमारी सफलता पर ईर्ष्या नहीं करता बल्कि खुशी बनाता है, हमारी गलतियों को प्रेम पूर्वक सुधारने का प्रयास करता है, संकट के समय सहायता के लिए सबसे आगे आता है, विश्वास और गोपनीयता बनाए रखता है, हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मित्रता जीवन को आनंदमय बनाती है। एक सच्चा मित्र हमारे मानसिक तनाव को कम करता है, हमें प्रेरणा देता है और कठिन समय में आत्मविश्वास बनाए रखने में सहायता करता है। परिवार के बाद यदि कोई व्यक्ति सबसे अधिक हमारा साथ देता है तो वह हमारा सच्चा मित्र ही होता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि मित्र वही जो समय पर काम आए केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। सच्चा मित्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहे। हमें भी ऐसा मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए जो दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने। सच्चा मित्र विश्वास, त्याग, सहयोग और प्रेम की नींव पर टिकी होती है। यदि जीवन में एक भी सच्चा मित्र मिल जाए तो वह किसी अनमोल धन से कम नहीं होता है। दोस्तों, परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार में प्रेम, विश्वास और सहयोग से ही सुख शांति बनी रहती है। इसलिए आज के समय में बढ़ती व्यस्तता, आपसी संवाद की कमी, स्वार्थ, नशे की लत, आर्थिक तनाव और आपसी मतभेद के कारण पारिवारिक विघटन की समस्या बढ़ती जा रही है। तो मित्रों, आइए इस खास विषय परिवार में बढ़ती संवादहीनता कारण और निवारण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है हमारे खास मेहमान अरुणा प्रकाश जी।
1: परिवार केवल एक मकान में साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं है बल्कि भावनाओं, विश्वास, प्रेम और अपनत्व का एक सुंदर बंधन है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। पहले लोग साथ बैठकर भोजन करते थे, दिन भर की बातें साझा करते थे, सुख दुख बांटते थे। आज स्थिति यह है कि परिवार के सभी सदस्य अपने अपने मोबाइल, टीवी या अन्य व्यस्तताओं में खोए रहते हैं और तभी पनपती है संवादहीनता। और संवादहीनता का अर्थ सरल शब्दों में यही है कि जब लोग एक दूसरों से बात करना बंद कर देते हैं, एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, तो इसमें परिवार की जो धुरी है वो हिल जाती है। कई बार माता पिता बच्चों को नहीं समझ पाते और कई बार बच्चे माता पिता की भावनाओं को कदर नहीं कर पाते। पति पत्नी के बीच भी संवाद की कमी तनाव और विवाद का कारण बन जाते हैं। और इस संवादहीनता के कई कारण हैं। भाग दौड़ भरी जीवन शैली, तकनीक पर बढ़ती निर्भरता, समय का अभाव, अहंकार और एक दूसरे को सुनने में कमी। जब संवाद कम होता है तो प्रेम और विश्वास भी कमजोर होने लगते हैं। इस समस्या का समाधान भी हमारे ही हाथ में है। हम प्रतिदिन कुछ समय परिवार के लिए निकाल सकते हैं। साथ बैठकर भोजन करना, पहले हमारे परिवार में यह एक परंपरा थी कि परिवार के लोग साथ बैठकर भोजन करते थे। समय के साथ इस मूल्य में भी, जैसे सारे मानवीय और पारिवारिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, इसका भी ह्रास हुआ है और हम टीवी के साथ बैठकर खाना पसंद करते हैं। एक ही घर में रहते हैं पर दिन भर में शायद 5 मिनट भी दिल की बातचीत एक दूसरे से नहीं करते हैं। रात को अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और धीरे धीरे किसी की परेशानी का पता हमें बहुत बाद में चलता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए या एक घटना कहिए कि कल्पना कीजिए एक परिवार की जहां पिता नौकरी में व्यस्त रहते हैं, माँ पूरे दिन घर के काम और जिम्मेदारियों में लगी रहती है, बेटा मोबाइल और सोशल मीडिया में खोया रहता है और बेटी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहती है। यह हर घर की कहानी हो सकती है। सब घर एक ही जैसे हैं। एक दिन बच्चों के स्कूल से शिकायत आती है कि उनका व्यवहार बदल गया है, बच्चे हिंसक हो रहे हैं, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन कम गई है और तब परिवार को एहसास होता है कि यह जो समस्या है यह अचानक नहीं आई, बल्कि संवाद की कमी ने उस समस्या को जन्म दिया था। यह हमारे घर में से किसी के घर की कहानी हो सकती है। तो हम देखें कि संवादहीनता जो परिवार में पनप रही है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? इसमें सबसे प्रमुख कारण है मोबाइल और डिजिटल दुनिया का बढ़ता प्रभाव। आज तकनीक ने जीवन आसान तो बनाया है, लेकिन परिवारों के बीच दूरी भी बढ़ा दी है। पहले लोग साथ बैठकर बातें करते थे, पर अब साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल को देखते हैं। दूसरा कारण, व्यस्त जीवन शैली। आज हर व्यक्ति अपने काम, नौकरी, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त है कि परिवार के लिए समय निकालना कठिन हो गया है। समय के अभाव में भावनात्मक दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। तीसरा कारण, सुनने का आदत का अभाव। अक्सर हम बातें करते हैं और बातें करने में रुचि तो रखते हैं, लेकिन सामने बैठने वाले व्यक्ति को धैर्यपूर्वक सुनना भूल जाते हैं। अब किसी को लगता है कि उसकी बातों को कोई सुन ही नहीं रहा है और उसके बोलने की कोई कीमत ही नहीं है, तो धीरे धीरे परिवार का वह व्यक्ति बात करना कम कर देता है और दूरियां यहीं से शुरू हो जाती हैं। कुछ कभी कभी अहंकार और कुछ गलत फहमियां भी इसका कारण बनते हैं। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होना। कई लोग सोचते हैं कि पहले वही बात कर ले, उसके ही अहंकार को पहले तोड़ लूं, पर इससे क्या होता है कि रिश्ते धीरे धीरे अपने जड़ों को खो देते हैं और रिश्तों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। पीढ़ियों में अंतर भी एक बड़ा कारण है। बुजुर्गों की सोच अलग है, युवाओं की सोच अलग है। यदि दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो अच्छी बात है, पर यह होता नहीं है और संवाद टूटने लगता है। देखिए, संवादहीनता के दुष्परिणाम भी हैं। जब परिवार में बातचीत कम होती है तो विश्वास कमजोर होता है, गलत फहमियां बढ़ती हैं, तनाव और अकेलापन बढ़ जाता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स में मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। बच्चों के मानसिक विकास भी प्रभावित होता है और परिवार में प्रेम और अपनापन कम होना शुरू हो जाता है, तो रिश्ते दरकने लगते हैं। धीरे धीरे लोग एक घर में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हैं। अब इस संवादहीनता का समाधान भी हमारे ही पास है। कुछ छोटे छोटे उपाय करके हम इस संवादहीनता में जो आपस में दीवार खड़ी हो रही है उसमें कमी ला सकते हैं, जिसका एक सरल उपाय है कि प्रतिदिन परिवार के साथ समय बिताया जाए। कम से कम 20 से 30 मिनट बिना मोबाइल के बैठिए। दिन भर की अपनी कार्यशैली और जो भी कार्य आपने दिन भर किए परिवार के साथ उसको साझा कीजिए और एक दूसरे से पूछिए कि आज आपका दिन कैसा रहा। दूसरा उपाय, सुनना सीखिए। सिर्फ बोलना ही संवाद नहीं है, अच्छे श्रोता बनना उतना ही आवश्यक है जितना कि अच्छा वक्ता। अब जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसे लगता है कि उसे सम्मान मिला और अपनापन भी, तो वह अपनी बातों को खुलकर बोल पाता है। तीसरा उपाय, छोटी छोटी बातों पर धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करना। एक धन्यवाद, जैसे आप अपने बच्चों को कहें कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने आज एक अच्छा काम किया, या तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूं। ये छोटे छोटे सेंटेंस जो हैं वो रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। चौथा उपाय है, विवाद होने के बाद संवाद। विवाद होना बहुत आसान है, पर विवाद के बाद संवाद की जो स्थिति है यह हमें बनानी पड़ती है। समस्या को बहुत दिनों तक मन में नहीं रखना होता है, शांत मन से बैठकर बात करनी होती है। विवाद होना स्वाभाविक है, पर विवाद के बाद अगर आप संवाद ना करें तो यह अस्वाभाविक है और यही फिर संवादहीनता का प्रमुख कारण बन जाती है और रिश्तों में एक बहुत बड़ा समस्या खड़ी करती है। पांचवा उपाय, परिवार की छोटी छोटी परंपराओं को बनाइए। जैसे बाइबल का एक लाइन है कि अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर एंड प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो एक सप्ताह में एक दिन भी साथ भोजन करना, साथ साथ घूमना, पूजा करना या साथ बैठकर बातचीत करना, ये छोटी छोटी आदतें रिश्तों में सुधार लाएंगी और रिश्तों को मजबूत बनाएंगी। हम सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, लेकिन सुखी परिवार अपने आप नहीं बनते, उन्हें समय, धैर्य, प्रेम और संवाद से बनाया जाता है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते हैं। हमारी चुप्पी, हमारा अहंकार और हमारी उपेक्षा धीरे धीरे हमारे रिश्तों को कमजोर करते हैं। इसी तरह रिश्ते कभी उपहारों से नहीं बनते हैं, बल्कि छोटे

0: छोटी छोटी बातों से बनते हैं और यह अपनापन भी इन सभी छोटी छोटी बातों से आ सकता है। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि हम अपने परिवार को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें संवाद को जीवित रखना होगा। यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने परिवार के साथ प्रतिदिन समय निकालेंगे, एक दूसरे को ध्यान से सुनेंगे, नाराजगी तो होगी पर नाराजगी को चुप्पी में नहीं बदलने देंगे और अपने परिवार को प्रेम, संवाद और सम्मान देकर एक आदर्श परिवार बनाने की कोशिश करेंगे। जहां संवाद होता है वहां विश्वास जन्म लेता है और जहां विश्वास होता है वहां प्रेम बढ़ता है और जहां प्रेम होता है वहां सच्चा परिवार बसता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वार्ता को समाप्त करूंगी।
1: दोस्तों, यदि परिवार के सदस्य प्रेम, विश्वास और आपसी सम्मान बनाए रखें तो किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद को बढ़ाने के बजाय समझदारी और सहनशीलता से परिचय देना चाहिए। तो मित्रों, अभी हमने सुना अरुणा प्रकाश जी को। तो दोस्तों, बातें और चर्चाएं का सिलसिला और भी आगे चलते रहेंगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गीत।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना एक सदाबहार गीत जो अपने समय सभी संगीत प्रेमियों के जुबान पर रहती थी, और 60 से 70 के दशक में यह गीत फिल्म ज्वेल थीफ से काफी लोकप्रिय हुआ था। इस गीत को गाई थी लता मंगेशकर ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। तो दोस्तों, एक बेहतरीन गीत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते चलते आपसे चर्चा करते हैं एक और खास विषय पर, सीमित संसाधनों से भी घर चलता है। मित्रों, परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। प्रत्येक परिवार चाहता है कि उसके सभी सदस्यों का जीवन सुखी, सुरक्षित और सम्मानजनक हो, लेकिन हर परिवार आर्थिक रूप से सम्मान नहीं होता। कुछ परिवारों के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, जबकि अनेक परिवार सीमित आय और साधनों के साथ साथ जीवन यापन करते हैं। फिर भी यह सत्य है कि घर केवल धन संपत्ति से नहीं बल्कि समझदारी, प्रेम, सहयोग और संतोष से चलता है। यदि परिवार के सदस्य मिलजुल कर जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करें तो सीमित संसाधनों से भी घर अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि सीमित संसाधनों का सही महत्व क्या है। तो दोस्तों, सीमित संसाधनों का अर्थ अभाव नहीं बल्कि उपलब्ध साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। जब आय सीमित होती है तब परिवार का प्रत्येक सदस्य खर्च करने से पहले आवश्यकता और इच्छा के बीच का अंतर समझता है। इससे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहता है, जरूरतों की पूर्ति आसानी से हो जाती है। मित्रों, घर को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए मासिक बजट बनाना बहुत आवश्यक है। आय के अनुसार भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और आवश्यक खर्चों की योजना बनाई जाए तो आर्थिक कठिनाइयां काफी हद तक कम हो जाती है। बिना योजना के किया गया खर्च अक्सर परिवार को कर्ज और तनाव की ओर ले जाता है। सीमित आय वाले परिवारों के लिए बचत सबसे बड़ी ताकत होती है। थोड़ी थोड़ी बचत भविष्य में किसी आकस्मिक आवश्यकता जैसे बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या अन्य आपातकालीन परिस्थिति में बहुत काम आती है। इसलिए आय चाहे कम हो, नियमित बचत की आदत अवश्य डालनी चाहिए। मित्रों, आज के समय में हमें दिखावे से बचना चाहिए। आज के समय में कई लोग दूसरे की देखा देखी अनावश्यक खर्च कर बैठते हैं। महंगे मोबाइल, कपड़े, वाहन या समारोह पर अत्यधिक खर्च करने से परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। सादगी और आवश्यकता के अनुसार जीवन जीना ही समझदारी है। सम्मान खर्चे से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और संस्कारों से मिलता है। साथियों, आज के समय में बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि

परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत व आत्मनिर्भर और सुखी बनाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का यह कार्यक्रम आपको खूब पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने दोस्त युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम कल्याणी। चर्चा में आज आपने सुना मित्र वही जो समय पर काम आए। वार्ता में बातें हो रही थी परिवार में बढ़ती संवादहीनता पर। वार्ताकार थे अरुणा प्रकाश और भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। ये प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं।

जोहार नमस्कार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब प्रस्तुत है आपका अपना प्रिय कार्यक्रम जोहार रांची। मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर ज्योत्सना।

श्रोताओं, इन दिनों देश के कई हिस्सों में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल, ठंडी ठंडी हवाएं, रिमझिम फुहारे और चारों ओर फैली हरियाली, मानो प्रकृति ने पूरे प्रदेश को एक नई ऊर्जा से भर दिया हो। गर्मी के लंबे और तपते दिनों के बाद जब पहली बारिश की बूंदें धरती को छूती है तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ों की धुली हुई हरी भरी पत्तियां और वातावरण में घुली ताजगी, ये सब मानसून की पहचान है। बारिश शुरू होते ही प्रकृति की सुंदरता और भी निखर जाती है। जंगलों की हरियाली बढ़ जाती है, पहाड़ियां और घाटियां जीवंत होते हैं, झरनों का पानी तेजी से बहने लगता है और पूरी धरती मानो हरे रंग का चादर ओढ़ ली हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, मानसून का सबसे अधिक इंतजार हमारे किसान भाई करते हैं। बारिश की हर बूंद उनके लिए उम्मीद की किरण होती है। धान की खेती और अन्य फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा अत्यंत आवश्यक होती है। जब खेत में पानी भरता है तब किसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लौट आती है। श्रोताओं, बारिश का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? गरम गरम चाय, पकौड़े, खिड़की के पास बैठकर बारिश का मजा लेना, या बचपन की वे यादें जब हम बारिश में भींगने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। यही तो मानसून की खूबसूरती है, यह हमारे मन को भी ताजा कर देता है। प्रकृति का हर मौसम हमें कुछ न कुछ सिखाता है। मानसून हमें सिखाता है कि कठिन समय के बाद राहत जरूर आती है। सूखी धरती भी एक दिन हरियाली से भर जाती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी चुनौतियां आए, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हर बादल के पीछे सूरज होता है और हर संघर्ष के बाद सफलता। श्रोताओं, आइए, जब मौसम की बातें कर रहे हैं तो आज हमारे शहर का मौसम कैसा रहने वाला है इसकी जानकारी भी हम आपको दे दें। तो आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादल छाए रहेंगे, बारिश होने का आसार है। श्रोताओं, इसी बारिश के मौसम में आइए एक बहुत ही खूबसूरत गाना हम आपके लिए पेश करते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और आज है दिनांक 4 जुलाई। इतिहास के पन्नों में यह दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं, महान व्यक्तियों के जन्म, विज्ञान, राजनीति, खेल और समाज से जुड़ी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। तो आइए अब हम आप सभी श्रोताओं को आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी दे दें। आज ही के दिन 1776 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन से आजाद हुआ था। इस दिन अमेरिकी महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। इसके बाद अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 1827 में आज के ही दिन न्यूयॉर्क राज्य में गुलामी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और अगर 1997 ईस्वी की बात की जाए तो आज ही के दिन 1797 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान मार्स पाथ फाइंडर मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। आज ही के दिन 2007 में वेबसाइट सेंटिडो कॉमन के मुताबिक मैक्सिको के कार्लोस स्लिम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। श्रोताओं, बातें तो होती रहेगी पर बातों के साथ मनोरंजन भी बहुत जरूरी है, तो आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज यानी 4 जुलाई के दिन जन्मे प्रसिद्ध हस्तियों की जानकारी दे दें। 1898 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल का जन्म हुआ था और आज ही के दिन 1916 ईस्वी में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का भी जन्म हुआ था। भाषा विज्ञान, कोश निर्माण, पाठालोचन, अनुवाद और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले भारतीय विमलेश कांति वर्मा ने भी आज ही के दिन यानी 4 जुलाई 1943 में इस दुनिया में कदम रखा। सुशील कुमार, इस अभिनेता को शायद ही कोई भूल सकता है। इनकी फिल्म दोस्ती अगर आज भी देख ले तो आंखों में आंसू आ जाए। इस महान अभिनेता का जन्म भी आज ही के दिन 1945 ईस्वी में हुआ था। और मशहूर अभिनेत्री और निर्देशक नीना गुप्ता का जन्म भी 1959 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था। तो आइए सुनते हैं इनकी फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओ, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक और महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि आज ही के दिन यानी 4 जुलाई को मनाई जाती है। 1902 ईस्वी में आज ही के दिन बेलूर मठ में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिला अमू स्वामीनाथन का निधन भी आज ही के दिन 1978 ईस्वी में हुआ था। भरत व्यास, जो कि भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध गीतकार थे, इन्होंने भी आज ही के दिन 1982 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो आइए सुनते हैं इनकी फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे मन में रात में ही ज्यादा विचार क्यों आते हैं? दिन और रात दोनों एक ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। दिन शोर से भरा होता है, लोगों की आवाजें, काम की जिम्मेदारियां, भागदौड़ और समय के पीछे दौड़ती हुई हमारी जिंदगी। दिन हमें व्यस्त रखता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगती है और रात गहराने लगती है, वैसे वैसे हमारे पास शोर कम होने लगता है और तब हम अपने विचारों की आवाज सुनने लगते हैं। दोस्तों, शायद यही कारण है कि रात में हमें वे बातें याद आती है जिन्हें हम दिन भर भूलने की कोशिश करते हैं। कोई अधूरा सपना, कोई अधूरी बातचीत, कोई पुरानी दोस्ती, कोई छूटा हुआ रिश्ता, या फिर जीवन का कोई ऐसा मोड़ जिसे हम आज भी याद करते हैं। श्रोताओं, रात के समय मन के पास समय होता है, और जब मन के पास समय होता है तो वह हमसे सवाल पूछता है।

दोस्तों, कई लोग रात को केवल आराम का समय मानते हैं, लेकिन रात आत्ममंथन का भी समय है। यदि यही वो समय है जब हम बिना दिखावे के अपने वास्तविक स्वरूप में मिलते हैं, ना कोई भीड़, ना कोई प्रतिस्पर्धा और ना कोई भूमिका निभाने की जरूरत, बस हम और हमारे विचार। श्रोताओं, कभी कभी हमें अपने विचारों से लड़ने की नहीं बल्कि उसे समझने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार मन हमें वहीं ले जाता है जहां हमें वास्तव में पहुंचना चाहिए, और कभी कभी तो हमारी बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी रात के सन्नाटे में मिल जाता है। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से ये कहना है कि कुछ मिनट अपने लिए निकालें, मोबाइल से दूर रहिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन की बात सुनिए। हो सकता है कि आपको अपने ही भीतर वह जवाब मिल जाए जिसकी तलाश आप बहुत दिनों से कर रहे हैं।

की, जो अपनी संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं के लिए पूरे देश में जानी जाती है, और वह है हमारा झारखंड। झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के घने जंगल, ऊंचे पहाड़, झरने और हरियाली इस राज्य को एक अनोखी पहचान देते हैं। झारखंड को अक्सर प्रकृति की गोद में बसा राज्य कहा जाता है। यहाँ के जंगल और पहाड़ सिर्फ सुंदर हैं, सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। झरनों की आवाज, पक्षियों की चहचहाट और हरियाली से भरा वातावरण मन को शांति देता है। यहाँ की प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन हमें संतुलन और सादगी के साथ जीना चाहिए। यहाँ के आदिवासी समाज ने अपनी परंपराओं, लोकगीतों और नृत्यों को आज भी जीवित रखा है। छऊ नृत्य, झूमर और कर्मा जैसे लोक नृत्य यहाँ की पहचान है। मांदर की थाप और लोकगीतों की धुन आज भी गांव में उत्साह भर देती है।

श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी अब हमें ये इजाजत नहीं दे रही कि हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सके। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का हमारा जोहार रांची कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो अब इजाजत दीजिए हमें। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपकी पसंद। और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर ज्योत्सना का आप सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का सबसे पहला गाना हमने लिया है फिल्म जिंदगी तेरे नाम से, केके की आवाज में। इस गाने को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने और रचना है जली शेर वानी का। और इस प्यारे से गाने की फरमाइश करने वाले हैं अपर बाजार रांची से नीरज सोनी, ज्योति कुमारी, सीमा सिंह, पिंकी रानी, राजेश, अमित, दीप्ति, सोनी कुमारी और इनके ढेर सारे साथीगण। बरखाकाना रामगढ़ से अमृत सिंह, हरिहर सिंह, पीयूष कुमार, पलक कुमारी, पीहू, दिव्या, तेजस और संगीता कुमारी। तो आइए सुनते हैं आप सबों के पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: கடற்படை கட்டணம் ஸ்வயம் ஹி கட்படை பாரதிய சேனா.
1: श्रोताओं, अगला गाना राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म कलयुग से है. तर्ज बनाई है फैजल रफी ने और लिखा है साईद कादरी ने. सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय,

श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिहा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। तो पेश है आप सबों के पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है कलयुग।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गानों का प्रोग्राम आपकी पसंद आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म सावरिया से ये गाना, जिसे गाया है शान ने, धुन तैयार किया है मोंटी शर्मा ने और शब्द रचना है समीर अंजान की। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौरा, पिंटू दीवाना, सुरेंद्र कुमार सुमन और जगमोहन साहनी, राजा बाजार चौक बहिया आरा से पूनम देवी केशरी, संगीता देवी केशरी, बीना केशरी और प्रतिज्ञा केशरी। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

अगला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। खमहरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। आप सबकी पसंद का गाना है फिल्म किक से। स्वर है नीति मोहन का। मयूरपुरी का लिखा ये गाना है, जिसे संगीत से संवारा है हिमेश रेशमिया ने।

इसी प्यारे से गीत के साथ हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त ज्योत्सना को। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। चर्चा में आज सुनेंगे सामाजिक उत्थान की अहम कड़ी स्त्री, सूत्रधार हैं शिल्पी और ये प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

के ताने बाने में जीवन का हर तान बुना, कुछ रिश्तों में हम जीते हैं, कुछ रिश्ते हैं हमसे बना। सखियों, हमारे जीवन की दुशाला रिश्तों की डोरियों से बुनी होती है, इसलिए हमारे जीवन में सभी रिश्तों की बड़ी अहमियत होती है। यह जिंदगी तो रिश्तों से ही चमकती है ना, क्यों, सही कहा ना? आपका और हमारा रिश्ता भी जुड़ा है प्रेम से, स्नेह से, जिसे हम कभी देख नहीं पाते लेकिन फिर भी हर दिन हर क्षण महसूस करते हैं। और घर की सारी जिम्मेदारियों को समेटकर आपसे मिलने, खूब सारी बातें करने आ जाते हैं। सखियों, आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं आपके रेडियो सखी शिल्पी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। बहनों, हर स्त्री चाहती है कि उनका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, चाहे घर के बच्चे हों या बुजुर्ग, परिवार रूपी बगिया के सभी फूल हंसते खिलखिलाते रहें। और इसके लिए हम दिन भर भागते फिरते रहते हैं, क्योंकि नारी से ही है घर समाज सुशोभित। सखियों, कहा भी गया है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, पर यदि एक लड़की शिक्षित और सशक्त होती है तो पूरा समाज और आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो भी मजबूत बन जाती है। यही कारण है कि सामाजिक उत्थान की पहली कड़ी स्त्री को माना गया है। स्त्री हर घर आंगन को चमकाती है। बचपन में बेटी घर की उम्मीद जगाती है, तो बहन रिश्तों में अपनापन घोलती है और भाई की रक्षा सूत्र बांधती है। तो वही नए घर में यानी ससुराल में आकर पत्नी उसी रूप में ढल जाती है, चाहे जिम्मेदारी हो या जीवन के खट्टे मीठे रिश्ते। ये सारे रिश्ते स्त्री के जीवन को चमकाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम सभी रिश्तों को बखूबी निभाते हैं। यही नहीं, जीवन की कठिन चुनौतियों में भी अपनी हम भूमिका निभाते हैं, और बड़े ही सूझबूझ के साथ स्त्री चलती हैं अपने घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर। स्त्री केवल परिवार की आधारशिला नहीं है बहनों, बल्कि संस्कारों की पहली पाठशाला भी है। आदिकाल से देखा गया है कि एक माँ ही अपने बच्चों में संस्कार भरती है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान देती है, नैतिक शिक्षा देती है, तथा घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, रिश्तों की मर्यादा, घर के संस्कार और जो भी परंपराओं हैं उससे जोड़कर अपने बच्चों को रखती हैं। इसलिए महिलाओं को परिवार की धुरी कहा गया है। सखियों, कभी घूंघट की आड़ में रहने वाली स्त्री भी अब नई उड़ान भर रही हैं, क्योंकि वो जागरूक हैं अपने कर्तव्यों के प्रति और उतनी ही समर्पित भी हैं। अगर नजर उठाकर देखें तो आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल का मैदान, कृषि, स्वयं सहायता समूह, व्यापार, प्रशासन या रक्षा जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। बस जरूरत है उन्हें अवसर देने की, यानी बेटियों को खूब पढ़ाने की, फिर आप देखिएगा उनकी उपलब्धियां यह साबित कर देगी कि अवसर मिलने पर वे समाज और देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और निभा भी रही हैं। आपने देखा होगा अब ग्रामीण महिलाएं भी अपने भीतर के गुणों को पहचान कर उसे निखार कर और रोजगार के क्षेत्र में खुद को स्थापित कर रही हैं। बिना शिक्षा और पूंजी के भी वो नया आयाम गढ़ रही हैं। सखियों, आप सोचेंगी कि वो कैसे? क्योंकि अब गांव में घरेलू महिलाएं एकजुट होकर स्वयं सहायता समूह को चलाती हैं। आज हमारी बहनें अपने हिस्से की छोटी छोटी राशि को बचा करके सिलाई सेंटर, पशुपालन, घर पर अचार पापड़ बनाती हैं, घरेलू मसाले बनाती हैं। अगर गांव में बांस की खेती है तो बांस से सूप, दौरा, सजावटी सामान और हस्तशिल्प में रंग बिरंगे मनमोहक चीजें बनाकर अपने नजदीकी बाजार या हाट और मेले में भी उसे सजाती हैं और स्टॉल एक लगाती हैं अपने नाम की। सखियों, आश्चर्य हुआ ना? साथ ही यह गर्व की भी बात है कि इनका संचालन भी वो स्वयं करती हैं, साथ साथ कई महिलाओं को भी रोजगार देती हैं, यानी कि

उन्हें भी अपने साथ साथ कई ऐसी बहनें हैं जो घर में बैठी रहती हैं, लेकिन उन्हें भी घर से निकाल कर आत्मनिर्भर बना रही हैं। हमारी बहनों ने महात्मा बुद्ध के कथन को आज सत्य कर दिया है, अप दीपो भवा, यानी कि अपना दीपक स्वयं बने। तो बहनों आइए, बहुत सारी बातें आपसे हो गई और आपको अब एक ऐसे गगन के तले लिए चलते हैं जहां गम न हो, बस धूप खिले और कभी कभी छांव भी मिले।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना। और ये
1: मेरी गुड़िया थी ना।
2: पर दादी
0: हाँ
2: आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
1: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: बहनों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आज के सफर में मैं आपके साथ हूँ शिल्पी। और वक्त हो चला है अब भेंटवार्ता का। भेंटवार्ता का विषय है महिला सशक्तिकरण। भेंटवार्ताकार हैं आज विभा कुमारी और उनसे हमारी बातचीत है। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
6: बहनों महिलाओं को परिवार की धुरी कहा जाता है। घर परिवार को संभालते हुए बच्चों को संस्कार देकर नई पीढ़ी का निर्माण भी महिलाएं ही करती हैं। और इतना ही नहीं देश के विकास में भी अपना सहयोग दे रही हैं। तभी तो सशक्त नारी से समाज भी मजबूत बन रहा है। आइए इसी विषय पर बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं विभा कुमारी। विभा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
7: नमस्कार
6: विभा जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमारी बहनों को।
7: मैं विभा एक स्कूल में कला और शिल्प की शिक्षिका हूँ।
6: बिल्कुल विभा जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सशक्त नारी से ही समाज और परिवार भी सशक्त बनता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
7: नारी जो घर परिवार की धुरी है वैसी नींव है जिस पर घर का एक एक सदस्य हर काम के लिए निर्भर रहता है।
6: बिल्कुल।
7: रोज मर्रा के दिनों के अलावा किसी विशेष आयोजन पर घर की महिलाओं की अहमियत को आसानी से समझा जा सकता है। हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने का जरिया घर की महिलाएं ही होती हैं।
6: बहुत खूब।
7: त्रिशताआत्मक समाज में जहां पुरुषों का रोल अहम माना जाता है वहां भी महिलाओं के बगैर कोई कार्य सफलतापूर्वक अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि धैर्य सहनशीलता और तनाव मुक्त रहने के साथ बिना थके अनवरत काम करने की कला भी महिलाओं को जन्मजात विरासत में मिली है। ऐसे में महिलाएं सशक्त होंगी तो बेशक घर परिवार का माहौल खुशनुमा होगा।
6: घर में समाज के विकास में नारी का क्या योगदान है ये बताएं।
7: समाज में नारी का योगदान जो है उसमें महिला समाज में कई रूपों में विकास में योगदान करती है। हर परिवार को सहेजने के साथ साथ पूरे सलीके से घर को चलाने के लिए जहां वह हर समय पूरी निष्ठा और लगन से लगी रहती हैं, वहीं घर के बच्चों का भविष्य संवारने जैसा अहम रोल भी उन्हीं के जिम्मे रहता है। मौजूदा दौर में तो महिलाएं नौकरी के साथ साथ व्यापार भी कर रही हैं। वहीं कई मामलों में महिलाओं ने उद्योग के क्षेत्र में पुरुषों को पछाड़ दिया है। आज सफल महिला की संख्या देश विदेश में सैकड़ों हजारों में पार कर चुकी है।
6: बिल्कुल सही विभा जी। आज महिलाएं सशक्त बनी हैं, इसमें शिक्षा की क्या भूमिका है ये बताएं।
7: जरूर, महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की बड़ी भूमिका है। शिक्षा के बल पर महिलाएं आज लगभग सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर खड़ी हैं। शिक्षा ने ही उसे खुद के प्रति परिवार और समाज के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सामने लाया है। आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बाद उनमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना बढ़ी है।
6: जी विभा जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी हमारी सखियों से जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को वो सुन रही हैं।
7: सभी सखियों से कहना चाहूंगी, खुद में आत्मविश्वास लाएं। महिला होने के डर को सबसे पहले खुद से खत्म करें और हर उस काम को चुनौती से स्वीकार करें जो अब तक महिलाओं के लिए मुश्किल भरा माना जाता रहा है। तो कल का इंतजार ना करें, हर सुबह कुछ नया करने की सोचे और सबको आगे बढ़ने के लिए हौसला दे। घर की रसोई से बाहर निकले और समाज में पुरुषों से अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष में जुड़ जाए, यही कहना चाहूंगी।
6: विभा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कल का इंतजार नहीं करना चाहिए।
7: बिल्कुल,
6: हर नया पल जीवन में बदलाव लाता है। जैसे हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है।
7: जी।
6: बस आत्मविश्वास हो स्वयं पर तो परिस्थिति भी बदलती है।
7: बिल्कुल
6: विभा जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और सखियों को इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: जी नमस्कार।
5: बहने अभी सुन रही थी भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय था महिला सशक्तिकरण और भेंटवार्ताकार थी विभा कुमारी। और सखियों, अब इस भेंटवार्ता के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में।

बहनों, आज शनिवार है और जुलाई के पहले शनिवार को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और आज हम बात करेंगे जानकारी के अंतर्गत कि महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारिता। मानो किसी भी स्वस्थ समाज की संरचना प्यार और सहयोग पर निर्भर करती है। समाज परिवार से बनता है। अगर परिवार में प्रेम सहयोग की भावना हो तो उसका उत्थान निश्चित है। हमारे यहाँ समाज और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका आदिकाल से चली आ रही है। बच्चों में अच्छे संस्कार देकर एक नई पीढ़ी का निर्माण करती हैं और महिलाएं अच्छे से जानती हैं ये चीज करना। और सिर्फ इतना ही नहीं बहनों, देश के आर्थिक विकास में भी सहकारिता के माध्यम से महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर जनता में जागृति पैदा करनी है तो पहले महिलाओं में जागृति पैदा करो। कितना सही साबित हो रहा है उनकी बातें आज। और आज सहकारिता में भी महिलाएं आगे आ रही हैं। अगर महिलाएं संगठित हो जाएं तो सहकारी समिति गठित करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। बहनें हमारी जो हैं फसलों की रुपाई करती हैं, कटाई से करती हैं और इतना ही नहीं, साल भर तक जो भी अनाज खेतों से आता है उसका भंडारण करती हैं, मसाला बनाती हैं, पापड़, बिस्किट, सेवई, आचार जैसे गृह उद्योगों से जुड़कर खुद को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सकती हैं। देखा भी क्या है कि सदियों से उद्यम और परिश्रम में वो हमेशा मशहूर रही हैं। और यह भी सच है कि पुरुषों की तुलना में या उनकी अपेक्षाकृत महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति बच्चों से ही होती है। बहनों की छोटी छोटी जो बचत होती है समय आने पर बड़ा सहयोग बन जाता है कभी कभी। और यही कारण है कि वे अपनी योग्यता, कार्य कुशलता, गुणवत्ता के आधार पर हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। आज हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो समूह बनाकर व्यवसाय कर रही हैं और इसके लिए सरकार द्वारा कई तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। साथ ही बैंकों के द्वारा उन्हें सहयोग दिया जाता है यानी ऋण दिया जा रहा है। ग्रामोद्योग के लिए जिला ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सहकारिता मुख्य भूमिका अदा कर सकती है। अगर साधन, मार्गदर्शन और पूंजी मिले तो देश की अर्थव्यवस्था में उनका भरपूर योगदान हो सकता है। अगर हम

0: बहनों, इसी खूबसूरत गीत के साथ और इस वादे के साथ अपनी सखी शिल्पी आज आपसे इजाजत लेना चाहती हैं। आपको बता दें कि आज कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: गृहलक्ष्मी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। सूत्रधार थी शिल्पी और ये प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। आइए अब सुनते हैं शैक्षिक प्रसारण। वार्ता में आप सुनेंगे हिंदी साहित्य में अलंकार और रस। वार्ताकार हैं रीना सहाय। प्रस्तुति सहयोग है अवधेश कुमार की और ये प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: प्रस्तुत है शैक्षणिक प्रसारण। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता साहित्य में अलंकार एवं रसों का महत्व। वार्ताकार हैं रीना सहाय।
1: नमस्कार श्रोता मित्रों, शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत आज हम सब जानेंगे हिंदी साहित्य में अलंकार एवं रसों का क्या महत्व है। आप सभी का स्वागत है। साहित्य में रस काव्य के माध्यम से पाठक या दर्शक के मन में उत्पन्न

उत्पन्न होने वाली भावनाएं, अनुभूति या आनंद है, जबकि अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सजावटी तत्व या शिल्प हैं। रस और अलंकार दोनों मिलकर साहित्य को प्रभावशाली और सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। रस हृदय की भावनाओं से संबंधित है, जबकि अलंकार भाषा को सजाने का काम करते हैं। अब हम जाने कि रस का क्या अर्थ है। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मिलने वाला अलौकिक आनंद या भावना का उत्पन्न होना और कार्य पाठक के मन में भाव उत्पन्न करना और काव्य के भावात्मक आधार का निर्माण करना। मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 मानी गई है, किंतु 2 और रस इसमें जोड़े गए हैं, वात्सल्य और भक्ति रस। तो इस प्रकार रसों की संख्या 11 है। सबसे पहले श्रृंगार रस की बात करें। इसके स्थायी भाव रति या प्रेम है। नायक नायिका की सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भावहनी हसे दैन कहे नटी जाए। बिहारी लाल जी की कविता का अंश संयुक्त श्रृंगार का उदाहरण, निसदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। वियोग श्रृंगार का ये उदाहरण। अब हम बात करें हास्य रस के बारे में। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता की भावना। शोक विकल सब रोब ही रानी, रूपो सिलु बलु तेजु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तन बारही बारा। तुलसीदास द्वारा रचित दोहे का ये अंश करुण रस का उदाहरण। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में स्थित उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने से जो भाव उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहा जाता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की रचित कविता का ये अंश। और हम बात करें रौद्र रस के बारे में। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न मनोविकार को क्रोध कहते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल के करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना का ये अंश। भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है। अनिष्ट कर सकने में समर्थ जीव या वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुलता की भावना। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। जयशंकर प्रसाद जी की रचना का ये अंश। विभत्स रस। इस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। घृणित पदार्थ को देखकर हृदय में उठती ग्लानि का भाव विभत्स रस उत्पन्न करता है। सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही सियार अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी के खात बिदारत। भारतेंदु जी की रचना का ये अंश। अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। किसी अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर हृदय में आश्चर्य के भाव का उत्पन्न होना। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित दीर्घ पुल कातु। कवि सेनापति जी की रचना का ये अंश। शांत रस।

0: शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हृदय में संसार के प्रति उदासीनता की भावना का उत्पन्न होना। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। कबीरदास जी की रचना का यह अंश। और हम बात करें वात्सल्य रस के बारे में। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य है। संतान के प्रति माता पिता का प्रेम भाव हृदय में उत्पन्न होना। किलकत कान्ह घुटरुवन आवत, मनिमय कनंक नंद के आंगन, बिंब पकरिए धावत। सूरदास जी की रचना का यह अंश। भक्ति रस, इस रस का स्थायी भाव देव विषयक अनुराग या रति है। हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम अनुराग उत्पन्न होने का भाव। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। विनय पत्रिका से, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से यह अंश लिया गया है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में परिभाषित किया है। अब हम साहित्य में अलंकारों का क्या महत्व है इस विषय में जानें। काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। कहा गया है, अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, श्लेष, संदेह, अतिशोक्ति, मानवीकरण, वक्रोक्ति आदि कई प्रमुख अलंकार हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे अलंकार हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और एक अलंकार उभयालंकार। शब्द अलंकार वो अलंकार है जिसमें किसी कविता या पद्य में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न होता है। ये सौंदर्य शब्दों की ध्वनि, चयन या पुनरावृत्ति से आता है। और यदि उस विशेष शब्द के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो यह चमत्कार नष्ट हो जाता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत हम कुछ मुख्य अलंकारों के बारे में भी जानें, जैसे कि अनुप्रास अलंकार। किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति यानी कि दोहराने से उत्पन्न श्रव्य सौंदर्य उत्पन्न होना। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हो रही है यानी च वर्ण को बार बार दोहराया गया है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, बा खाए बौराए जग या पाए बौराए। कवि बिहारी लाल जी के दोहे का ये अंश। पहले कनक जो है उसका अर्थ है धतुरा और दूसरी कनक का अर्थ है सोना, यानी धतुरा खाकर लोग बावरे हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं, किंतु कनक दूसरे कनक सोना को पाते ही लोग बावरे हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाए और उसका अर्थ एक ही हो। ठुमकी ठुमकी रुन झुन ध्वनि सुनी। श्लेष अलंकार, जब काव्य में एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थ प्रकट हों। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द एक ही बार है किंतु उसका अर्थ अलग अलग है। मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, मोती के लिए चमक और चून के लिए जल, इसलिए पानी को बचाए रखें। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार के बारे में। जब शब्दों के अर्थ से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो तो वह अर्थालंकार कहलाता है। शब्द की ध्वनि नहीं, अर्थ की विलक्षणता ही सौंदर्य उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य अलंकारों के बारे में भी जान लें। सबसे पहले उपमा अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। सागर सा गंभीर हृदय हो। उपमा के चार अंग या तत्व माने गए हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म या गुण। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता दी जाए। उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता दी जाए, वाचक शब्द उपमेय और उपमान को जोड़ने वाले वाचक शब्द जैसे कि सा, सी, सम, सरिस, जैसा, जैसी आदि, और साधारण धर्म या गुण जिन समानता सूचक गुणों के कारण समानता दी जाए। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, के समान वाचक शब्द, सुंदर समान गुणों का होना। इसके दो भेद हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। अब हम बात करें रूपक अलंकार के बारे में, जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, बच्चा चांद खिलौना लेने की जिद कर रहा है, चांद के जैसा नहीं। उत्प्रेक्षालंकार, जहां काव्य में कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षालंकार हैं। वाचक शब्द हैं मानो, जानो, मनो, जनहु आदि। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। और अब हम बात करें अतिशोक्ति अलंकार के बारे में, जहां किसी घटना या बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। और अब हम मानवीकरण अलंकार के बारे में जानें, जहां जड़ वस्तुओं में मानवीय गुणों का आरोप किया जाए। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना का यह अंश। और उभय अलंकार के बारे में भी जानें कि जहां शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित अलंकार हो। कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, इस पंक्ति में कजरारी शब्द का दोहरा अर्थ है, एक तो काली आंखें और दूसरा कजली आंखों में लगाने वाला। ये शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हैं, ये काव्य को चमत्कृत करता है। अलंकार और रस कविता के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और कविता साहित्य की शैली को सजाने और अर्थ को गहरा बनाने में मदद करते हैं। अलंकार काव्य को सजाने में मदद करते हैं, जबकि रस कविता को भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो रस वह भाव है जो काव्य को जीवन देता है, और अलंकार वह सजावट है जो उसे सौंदर्य प्रदान करता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, क्योंकि भावों के बिना अलंकार बेजान और सजावट के बिना रस नीरस हो सकता है। यही दोनों मिलकर काव्य को प्रभावशाली और पूर्ण बनाते हैं। रस आनंद की अनुभूति कराता है, और अलंकार उस अनुभूति को अधिक प्रभावशाली तथा यादगार बनाता है। धन्यवाद।
1: अभी आप शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत सुन रहे थे वार्ता साहित्य में अलंकार एवं रसों का महत्व। वार्ताकार थी रीना सहाय, प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की, और प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का था।

श्रोताओं, अभी आपने अलका याग्निक की आवाज में जख्म फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत सुना। संगीतबद्ध किया था M.M. करीम ने और रचना थी आनंद बख्शी की। दिल है कि मानता नहीं, जी हाँ दोस्तों, ये है उस फिल्म का नाम जिसका गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। स्वर है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। तर्ज बनाया है भूषण दुआ ने और बोल हैं फैज अनवर के।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर

0: कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan today. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The Union Home Ministry has designated 23 individuals based in Pakistan as terrorists under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. They were linked to Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Tayyaba and other organizations. These individuals were designated as terrorists for their involvement in various activities, including infiltration, recruitment, supply of arms and planning attacks in Jammu and Kashmir. This will allow agencies such as the National Investigation Agency to block their finances, impose embargoes on arms sales and seize their assets. The government has issued notice to Telegram over widespread piracy reports. According to official sources, the government has directed Telegram to take immediate measures against pirated films and OTT content. Sources further said that the platform has been asked to submit the action taken report within 15 days. The bilateral investment agreement BIA between India and Israel came into force today. The agreement was signed in September last year in New Delhi. The finance ministry said the BIA is a landmark step towards strengthening bilateral economic relations and ensuring a secure and predictable investment climate. The ministry noted that the BIA is expected to contribute to increased cross-border investment activity and further deepen the economic partnership between India and Israel. Union Minister for Railways Ashwini Vaishnav has expressed confidence that the entire high-speed rail corridor connecting Ahmedabad and Mumbai will be completed by the end of 2029. Speaking to media in Ahmedabad after reviewing various ongoing railway projects in Gujarat, the minister stated that the construction of the Mumbai-Ahmedabad bullet train project is progressing rapidly, with 80% of the work in the Gujarat section already completed. He added that the high-speed rail network is being developed in a phase-wise manner, with the first operational section connecting Surat to Bilimora scheduled to open next year. In Iran, preparations are underway for the six-day state funeral of the former Supreme Leader, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, which will begin in Tehran today. Senior Iranian leaders, military commanders and foreign dignitaries paid their respects to Ayatollah Ali Khamenei at Tehran's Grand Musalla. India was represented by Governor of Bihar, Lieutenant General Sayyid Ata Hasnain and Minister of State for External Affairs, Pavitra Margarita. The funeral procession will continue over the next few days before concluding with his burial in the holy city of Mashhad on the 9th of this month. Public mourning will continue for 40 days thereafter. The Democratic Republic of Congo has reported more than 1,500 confirmed Ebola cases, including nearly 500 deaths, as the WHO warned that the outbreak remains serious. The outbreak continues to spread in the eastern provinces of Ituri and North Kivu. WHO says insecurity and armed conflict in affected areas are hampering case detection and contact tracing. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Orissa for today. The weather agency predicted heavy rainfall conditions over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Gangetic, West Bengal, Chhattisgarh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Marathwada, West Rajasthan and southern parts of the country as well. Indian Grandmaster R. Pragyananda produced a stunning finish to the rapid section of the Croatia Grand Chess Tour. He won all three of his matches yesterday to tie for the lead with Francis Ali Reza Firoza. Pragyanand defeated Ivan Šarić, Bogdan Daniel Dak and Anish Giri to climb to the top of the standings ahead of the Blitz section. And in men's cricket, the second T20 international between India and England will be played in Manchester today at 7 p.m. IST. The opening game of the five-match series was abandoned due to rain at Chester Street. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में कम बारिश को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने की अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा। किसानों को राहत देने पर हुई चर्चा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को सराहा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें रहेंगी पूरी तरह गोपनीय। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में लंबित अदालती मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक। समय पर शपथ पत्र दाखिल करने और विधि पोर्टल 2.0 लाने का निर्देश। राज्य में बीडीओ और सीओ का पद एक ही अधिकारी को देने के सरकार के फैसले का भाजपा ने किया विरोध। प्रदेश महामंत्री ने जताई ग्रामीण विकास ठप होने की आशंका। और झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष ने पश्चिम सिंहभूम का किया दौरा। जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से तुरंत राशन देने का निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के प्रभाव से देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा की स्थिति की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और कृषि सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रबंधन और किसानों को राहत देने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: राज्य में मॉनसून पर अल नीनो का प्रभाव देखा जा रहा है। रांची मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार प्रशांत महासागर के सतही तापमान में बदलाव यानी अल नीनो के कारण दक्षिण पश्चिमी मॉनसून कमजोर पड़ रहा है।
2: देखिए, प्रशांत महासागर में जो सतही समुद्री टेम्परेचर की बात करें तो उसमें जो चेंजेस आता है पूर्वी या पश्चिमी भाग में, उस टेम्परेचर चेंजेस को हम लोग अल नीनो के नाम जानते हैं। तो इसके होने से ये होता है कि भारतीय मॉनसून कमजोर होता है, से अधिकतर खेती होती है, उसी पे हम लोग ज्यादा निर्भर है, बारिश में अनियमितता देखने को मिलती है।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। यह डिजिटल पहल महिलाओं को निडर होकर अपनी आवाज उठाने की सुविधा देती है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने राज्य के प्रखंडों में बीडीओ और सीओ के पद एक ही अधिकारी को सौंपे जाने पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए श्री बाउरी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का विकास और जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है।
3: आज के समय डिसेंट्रलाइजेशन सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। काम को जितना विकेंद्रीकरण करके आप अकाउंटेबल लोगों को, पदाधिकारियों को बैठा करके आप रिजल्ट निकालिए, वैसे समय में आप ये मर्ज करके इस पूरे व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं और मुझे लगता है इसका दूरगामी परिणाम बहुत भयावह होने जा रहा है झारखंड की परिस्थिति में। और आज नहीं तो कल इनको रोल बैक करना ही होगा, इसलिए पुनर्विचार करें और नए नए पदों में नए नए पदाधिकारी जेपीएससी यूपीएससी से जो लोग आए हैं, जो भी वीडियो सीओ, उनको वहां दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की बहाली करिए और उनको काम करने में।
0: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में नवनियुक्त महाधिवक्ता रोहिताशे रॉय भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अदालती मामलों में तय समय पर शपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कानूनी मामलों की प्रभावी डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए जल्द ही अपग्रेड विधि पोर्टल 2.0 लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वामी जी को महान देशभक्त और दार्शनिक बताते हुए कहा कि उनके प्रेरणादायक विचार और आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का मार्गदर्शन करती रहेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के निरसा विधायक अरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा फोन और व्हाट्सएप पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। विधायक ने धनबाद एसएसपी से लिखित शिकायत पर सुरक्षा बढ़ाने और कार्रवाई की गुहार लगाई है।
4: जो ढुल्लू बातों के खिलाफ जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो उनके गलत कारनामों को हम लोग खोल रहे हैं, उन तमाम चीजों से बाज आए। ढुल्लू अगर ये समझता है जो किसी क्रिमिनल को लगा कर हम लोगों को चुप करवा देगा, जब वो खुद नहीं बोल पाता है, चीजों की जवाब नहीं दे पाती है, तो क्रिमिनल को आगे करते हैं।
0: झारखंड राज्य खाद्य आयोग के प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने पश्चिमी सिंहभूम के 2 दिवसीय दौरे के बाद कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित सभी जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से राशन दिया जाए।
5: जांच में मैंने पाया कि उन लोगों का जो आरोप था वो सही है। मैंने यहाँ के एडिशनल कलेक्टर जो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं उनको मैंने ये निर्देश दिया है कि वो 15 दिनों के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान करके और जितने दिनों का राशन नहीं मिला है 1.25 गुना मुआवजा के साथ उसे राशन उपलब्ध कराना है।
0: चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया ने जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, नवनिर्मित बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीआरएम ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और साफ सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के कड़े निर्देश दिए।
6: यहाँ पे आवागमन के लिए लाइन की कमी है, यहाँ पर लाइनों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे और लाइन दी जा सकती है या कहाँ पे लाइन ऐसे दी जाए ताकि गाड़िया जल्दी आया जाए, उसके लिए एक सर्वे किया था हमने, यार्ड में भी गए थे, वो है उपयोग किया जाए तो पैसेंजर के लिए जो सुविधा है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रूपये प्रति किलो है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि का संकल्प दोहराया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र का विस्तार देश की आत्मनिर्भरता की नींव है। 65वीं रांची जिला सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर 15 बालक वर्ग का खिताब मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके ने जीत लिया है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में कांके की टीम ने सेंट जॉन्स स्कूल को 4-3 से पराजित किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में कम बारिश को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने की अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा। किसानों को राहत देने पर हुई चर्चा। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को सराहा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें रहेंगी पूरी तरह गोपनीय। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में लंबित अदालती मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक। समय पर शपथ पत्र दाखिल करने और विधि पोर्टल 2.0 लाने का निर्देश। राज्य में बीडीओ और सीओ का पद एक ही अधिकारी को देने के सरकार के फैसले का भाजपा ने किया विरोध, प्रदेश महामंत्री ने जताई ग्रामीण विकास ठप होने की आशंका, और झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष ने पश्चिमी सिंहभूम का किया दौरा, जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से तुरंत राशन देने का निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम मनोरंजनी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शोभा गुट्टू को। तो आइए सुनते हैं इनसे मिस्र पहाड़ी में ठुमरी, बोल हैं छोड़ो छोड़ो डगरिया।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे चंद गजलें। पेश है जगजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत सा नगमा।

0: यदि माँ HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: अगली गजल आप सुनेंगे चित्रा सिंह की आवाज में।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से बस कुछ ही क्षणों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन

0: ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाए। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों आइए सुनते हैं अब फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। और कार्यक्रम का सबसे पहला गाना हमने लिया है भुज फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। आरको ने इस गीत की तर्ज बनाई है और लिखा है मनोज मुंतजिर ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना, भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है।

दोस्तों, अभी आप योद्धा फिल्म का गाना बी पराग की आवाज में सुन रहे थे, जिसे संगीतबद्ध किया था तनिष्क बागची ने और शब्द रचना थी मनोज मुंतशिर की। और अब अगली पेशकश है विशाल ढलानी और रावजी वाणी की आवाजों में फिल्म फाइटर से। अभिजीत नालानी ने संगीत तैयार किया है और बोल हैं कुमार के।

श्रोताओ, अब हम कार्यक्रम के आखिर पायदान पर पहुंच चुके हैं और यहाँ हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इंडियन का ये खूबसूरत सा गीत। स्वर है रूप कुमार राठौर का और इस गाने को लिखा भी इन्होंने ही है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सी बॉक्स पोर्टल को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। यह डिजिटल पहल महिलाओं को निडर होकर अपनी आवाज उठाने की सुविधा देता है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पुलिस मुख्यालय की अनदेखी से नाराज होकर अपनी सुरक्षा में लगे जवानों और वाहनों को वापस कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इतने जवानों को बिठाने के लिए गाड़ियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए।
2: जैसे कि मेरे साथ भी वही व्यवस्था के तहत गाड़ियां उपलब्ध कराई गई थी। मेरे पास कुल गार्ड्स की संख्या 16 है और 3 गाड़ियां थी। मैंने पत्र लिखा डीजीपी को 2 महीने पहले, यानी कि लगभग 21 अप्रैल को, कि 3 गाड़ियों से 16 जवान को बैठाना उचित नहीं होगा। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी यह कभी अच्छी बात नहीं।
1: इधर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के मंत्रियों को ड्रॉप होने का डर है।
3: विषय है कि राज्यसभा के बाद कांग्रेस में मंत्रियों को रिसफल करने की चर्चा चल रही है। दाव पेच का खेल हो रहा है। इनके संबंध न प्रभारी से अच्छे हैं न अध्यक्ष से अच्छे हैं। इनको ड्रॉप होने का ज्यादा चांस है। स्वास्थ्य मंत्री को भी ड्रॉप होने का ज्यादा चांस है। हो सकता है दीपिका जी को भी हटा दिया जाए। बंधु की बेटी धर्म के आधार पर बच सकती है, लेकिन ये 3 लोगों को जाने का चांस है।
1: भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने राज्य के प्रखंडों में बीडीओ और सीओ के पद एक ही अधिकारी को सौंपे जाने पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए श्री बावरी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का विकास और जनता की समस्याओं से कोई लेन देन नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय

रूप से भाग लेने का आग्रह किया। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में नव नियुक्त महाधिवक्ता रोहिताशय रॉय भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अदालती मामलों में तय समय पर शपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। धनबाद के निरसा विधायक आरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा फोन और व्हाट्सएप पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। विधायक ने धनबाद SSP से लिखित शिकायत कर सुरक्षा बढ़ाने और कार्रवाई की गुहार लगाई है। गढ़वा जिला नियोजनालय द्वारा आज जिला मुख्यालय स्थित गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें शामिल विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा 139 युवक युवतियों को रोजगार प्रदान किया गया। इससे पूर्व रोजगार मेले का उद्घाटन उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू ने संयुक्त रूप से किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: दोस्तों, ये मधुर गीत हमने फिल्म जब वी मेट से लिया था, जिसे लिखा था फैज अनवर ने, आवाज़ थी उस्ताद राशिद खान की, और इस गाने को संगीतबद्ध किया था संदेश शांडिल्या ने। अगला गाना हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से विज्ञापन अंतराल के बाद।
1: सतना मध्य प्रदेश के श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डाले, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
0: श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाजत। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: वो खुद क्या मिला, कुछ भी नहीं। वो ये कि अपनी जिंदगी उसने बहुत ही फायदेमंद तरीके से गुजारी कि वो क्रिएट करता रहा और खुश होता रहा। वही खुशी जब वो एक्सटेसी मिलेगी अपने आप को, क्रिएटर को, वो बड़ा इनाम है।
1: प्रोफेसर साहब, बीइंग एन ऑथर एंड राइटर, आपको क्या लगता है जिंदगी में किस तरह का पर्पस आपको लगा एज राइटर? आपको फीलिंग है आज की तारीख में?
0: न सिर्फ ये कि मैं अपने दुख दर्द और अपने तजुर्बात का इजहार करूं, बल्कि मैं एक जमाने में रहता हूं, किसी जगह रहता हूं। सबसे पहले मैं अपने घर में रहता हूं, फिर अपने मुल्क में रहता हूं, अपने रियासत में रहता हूं, और इस दुनिया में रहता हूं
1: जी,
0: 21वीं सदी में रहता हूं। मेरा अकेलापन बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता। मेरी एग्जिस्टेंस जो है, मेरा वजूद जो है, इज इन रिस्पॉन्स टू अदर इंडिविजुअल्स ऑफ दिस 21st सेंचुरी लिविंग इन सरफेस ऑफ द ग्लोब। उन सब के साथ मेरा ताल्लुक है जिनको मैं जानता नहीं, लेकिन एज राइटर, सेंसिटिव राइटर, वो आंसरेबल है, चाहे वो अमेरिका में हो, कहीं भी हो। उन सब लोगों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए, जो रिश्ता है अपने जमाने और स्पेस एंड टाइम के साथ, रिश्ता है वही रिश्ता। उस रिश्ते की बिना पर हम अब एक दूसरे के दुख दर्द समझते हैं और शरीक हो जाते हैं, चाहे उसके बारे में डायरेक्टली लिखें या ना लिखें। लेकिन जब भी मैं अपनी बात करूंगा, अपनी एगनीज और अपनी पेन के बारे में लिखा, वो मेरा इंडिविजुअल पेन, मेरी इंडिविजुअल एगनी नहीं, बल्कि पूरे इस 21वीं सदी के इंसान की मुसीबत है, उसका अजाब है, उसका तन्हाईपन है, वो लोनलीनेस है जो हमको मिली 21वीं सदी में। लोनलीनेस और सेंस ऑफ एलिनेशन को जब मैं बहुत ही इंटेंसिफाई करके लिखता हूँ, तो वो यूनिवर्सल खुद ही बन जाता है। आज भी अगर हम कोशिश करेंगे कि हम जानें 16वीं सदी में या 17वीं सदी में कश्मीर कैसा था, कहाँ ढूंढेंगे वो? सब के सब इस जहानी फानी से चले गए हैं। तो अगर हम झलक ढूंढना चाहें, वो उस जमाने के अदबारों में ढूंढ के निकालेंगे। कहीं कहीं कोई एक शेर, कोई एक मिसरा या कोई एक नज्म पूरी मिलेगी, तो हम खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ पाया 17वीं सदी या 18वीं सदी के बारे में। वरना लिरिसिज्म वो कॉमन हो जाता है, इसलिए तर्जमानी बुनियादी शर्त है अदब की।
1: प्रोफेसर साहब, हैव बीन योर फोकस्ड एरियाज आपके इमोशन

0: लिखता हो वो इन आइसोलेशन नहीं लिखता, अलग से होके नहीं लिखता
1: जी।
0: ही राइट्स इन रिस्पॉन्स टू अदर लिटरेचर्स ऑफ अदर लैंग्वेज ऑल्सो विद इन हिज ओन लैंग्वेज विद इन हिज ओन सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसके लिए डिलिबरेट कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं जरूरी आज के मसलन हाई फाई साइंस के बारे में लिखूं, एआई के बारे में लिखूं या आज के इंतजार के बारे में। अगर डिलिबरेटली हम कोशिश करेंगे वो अच्छा अदब कभी नहीं बन पाता। हाँ जरूर ये है कि मैंने जैसा कहा कि कोई भी शायर हो अदीब हो वो इन आइसोलेशन नहीं लिख पाता, ही हैज टू रीड अलॉट, क्योंकि अदब में दो चीजें शामिल हैं, एक तो उसका सब्जेक्ट मैटर और हालत। ठीक है हमें उसका सब्जेक्ट मैटर मिलता है आसपास के लोगों से या बाय ट्रेडिशन मिलता है हमें, लेकिन हालत का ताल्लुक जहां तक है, मसलन अगर ये टेबल मेरे सामने है ये वही आदमी बना सकता है जिसको मकसद के बारे में, वो एक कारपेंटर हो तो अगर कोई कारपेंटर बनना चाहे उसको जरूर है उस्ताद के पास जाना पड़ेगा।
1: एग्जैक्टली
0: इसी तरह लिटरेचर में भी अगर कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, हमारे दौर का कोई भी शॉर्ट स्टोरी राइटर हरगिज नहीं लिख पाता तब तक जब तक कम अज कम उसने रशियन वगैरह लिटरेचर्स की बात न करूं, अगर अपने भारत की ही बात करें कम अज कम प्रेमचंद को तो पढ़ना पड़ेगा, कम अज कम कृष्ण चंद्र को पढ़ना पड़ेगा। वरना ऐसा होता है कि आज बहुत सारे लिखना चाहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी, लेकिन उनको मालूम ही नहीं शॉर्ट स्टोरी क्या है।
1: Professor Ashok sir, the amount of time, you can say the hours, months, life you have spent on writings in academics, how the people around you, your family and your friends who are associated with you, you would like to give credit to anybody?
0: Yes, my wife particularly, because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children.
1: So, dear listeners, with this, the special program with Padma Shri Professor Shafi Ashok concludes here. Khuda Hafiz.
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

झारखंड की खूबसूरत राजधानी रांची से आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रांची का स्नेह भरा अभिवादन। तो आइए सुनते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम रांची मेलोडीज। यह वह मंच है जहां संगीत की मिठास हर दिल को छू जाती है, जहां हर धुन एक कहानी कहती है। संगीत केवल आवाज नहीं, एक एहसास है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। रांची मेलोडीज इसी एहसास को समर्पित है। तो आइए श्रोताओं, इसी सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत का।

श्रोताओं, अभी आप हिम्मतवार फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे जिसे गाया था बाबुल सुप्रियो ने और साधना सरगम ने। संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने और ये रचना थी समीर की। और अब बारी है एक मधुर और भावनात्मक गीत की जो दिल को छू जाए और मन को शांति दे। तो पेश है एमएम करीम का और चित्रा की आवाजों में फिल्म इस रात की सुबह नहीं से ये प्यारा सा गीत, जिसे संगीत से संवारा है एमएम करीम ने और शब्द रचना है नीदा फजली की।

श्रोताओ, शाम ढलते ही जब थकान महसूस हो तो संगीत सबसे बड़ा सुकून बन जाता है, और यही सुकून हम आप तक पहुंचाते हैं हर दिन रांची मेलोडीज के जरिए।

आनंद बख्शी का लिखा लता मंगेशकर और कुमार शानू की आवाजों में अभी आपने जब प्यार किसी से होता है फिल्म का ये मधुर गीत सुना, जिसे संगीत दिया था जतिन ललित ने। रांची मेलोडीज केवल गीतों का संग्रह नहीं, यह एक अनुभव है, यह वह अनुभव है जहां संगीत मन की थकान को शांति में बदल देता है। यह कार्यक्रम हर उस श्रोता के लिए है जो रेडियो को आज भी अपना सच्चा साथी मानता है।

जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत जिसे आपने अभी सुना, इसे हमने लिया था फिल्म अंदाज से। स्वर थे अलका याग्निक और उदित नारायण का। नदीम श्रवण ने धुन तैयार की थी और ये रचना थी समीर की। संगीत की यही विशेषता है कि कुछ ही क्षणों में यह मन को हल्का कर देता है, और यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, संगीत के माध्यम से आपके दिन को बेहतर बनाना। तो इसी के साथ आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में सरबजीत फिल्म का ये मधुर गीत। तर्ज बनाया है अमाल मल्लिक ने और ये रचना है रश्मि विराग की।

आइए अब सुनते हैं ये भावनात्मक गीत जो आपकी यादों को ताजा कर देगा। तो ये गाना है फिल्म एयरलिफ्ट फिल्म से, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजों में। धुन है अमाल मलिक के और कुमार ने इस गाने को लिखा है।

प्रिय श्रोताओं, संगीत के इस सुंदर सफर को अब यहीं विराम देने का समय आ चुका है। उम्मीद है आज का रांची मेलोडीज कार्यक्रम आपके मन को सुकून दे पाया होगा। इसी विश्वास के साथ हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे यहीं इसी समय नई धुनों के साथ। नमस्कार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसकी खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनर्निरीक्षण कार्य के समय पूरा हो सके। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सी बॉक्स पोर्टल को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अदालती मामलों में तय समय पर शपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। खूंटी स्थित जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में आज शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक बनाना था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी। चर्चा में आज आप सुनेंगे मित्र वही जो समय पर काम आए। वार्ता में आज बातें होंगी परिवार में बढ़ती संवादहीनता पर। वार्ताकार है अरुणा प्रकाश और भेंट करता है संजीव कुमार लाल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की।

कल्याणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि इस भाग दौड़ भरे जिंदगी में आप सब स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारी जिंदगी से, हमारे परिवार से, पास पड़ोस से और समाज से जुड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातों की जानकारी और चर्चा आपके साथ करते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दे पर आपसे चर्चा करते हैं और विभिन्न पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ज़रूरत के समय काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। इस कहावत का अर्थ है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में हमारा साथ देता हो। बहुत से लोग खुद को दोस्त कहते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनता है। यही गुण सच्चे दोस्तों को सिर्फ

0: जान पहचान वाले से अलग करता है। तो साथियों, आइए एक खास विषय पर हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि मित्र वही जो समय पर काम आए। मित्रों, मानव जीवन में मित्रता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसे जीवन के हर पड़ाव पर ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे। सच्चा मित्र वही होता है जो केवल खुशी के अवसरों में ही नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी हमारा साथ निभाए। इसलिए तो कहा गया है, मित्र वही जो समय पर काम आए। यह कहावत हमें सच्ची मित्रता का वास्तविक अर्थ समझाती है। सच्चा मित्र वह नहीं होता जो केवल हमारी प्रशंसा करे या हमारे साथ मनोरंजन करे। वास्तविक मित्र वह होता है जो हमारी गलतियों को बताकर हमें सही मार्ग दिखाए। जब पूरा संसार हमारा साथ छोड़ देता है, तब सच्चा मित्र ही हमारा साथ हमारे हाथ थामने में आगे रहता है। वह बिना किसी स्वार्थ के हमारी सहायता करता है और हमारी सफलता में सच्चे मन से प्रसन्न होता है। दोस्तों, आज के कठिन समय में मित्र की सही पहचान होना जरूरी है। कहा जाता है कि सोने की पहचान आग में ही होती है और मित्र की पहचान कठिन समय में होती है। जब जीवन में आर्थिक संकट, बीमारी, असफलता या किसी अन्य परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब बहुत से लोग हमें साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के हमारी सहायता करता है, वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सर्वोच्च उदाहरण है। सुदामा अत्यंत गरीब थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें कभी नहीं बुलाया। जब सुदामा कठिन परिस्थिति में द्वारका पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने उनका अत्यंत सम्मान किया और उसकी सहायता की। यह घटना बताती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और अपनत्व पर आधारित होता है। मित्रता में विश्वास और ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है। मित्रता की नींव विश्वास पर ही टिकी होती है। यदि मित्र एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे और हर परिस्थिति में साथ निभाए, तो यह संबंध जीवन भर मजबूत बना रहता है। सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देता और न ही अपने मित्र की पीठ के पीछे बुराई करता है। आज के समय में मित्रता कितना जरूरी है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोग मित्र बन जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं हो सकता। मित्रों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण उनके साथ संबंध में गुणवत्ता होती है। मित्र चुनते समय उसके संस्कार, व्यवहार और चरित्र पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सच्चे मित्र के गुण क्या क्या है, आइए हम आपको बतलाते हैं। सच्चे मित्र में अनेक अच्छे गुण होते हैं। वह हर परिस्थिति में साथ देता है, हमारी सफलता पर ईर्ष्या नहीं करता बल्कि खुशी बनाता है, हमारी गलतियों को प्रेम पूर्वक सुधारने का प्रयास करता है, संकट के समय सहायता के लिए सबसे आगे आता है, विश्वास और गोपनीयता बनाए रखता है, हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मित्रता जीवन को आनंदमय बनाती है। एक सच्चा मित्र हमारे मानसिक तनाव को कम करता है, हमें प्रेरणा देता है और कठिन समय में आत्मविश्वास बनाए रखने में सहायता करता है। परिवार के बाद यदि कोई व्यक्ति सबसे अधिक हमारा साथ देता है, तो वह हमारा सच्चा मित्र ही होता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि मित्र वही जो समय पर काम आए केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। सच्चा मित्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहे। हमें भी ऐसा मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए जो दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने। सच्चा मित्र विश्वास, त्याग, सहयोग और प्रेम की नींव पर टिकी होती है। यदि जीवन में एक भी सच्चा मित्र मिल जाए, तो वह किसी अनमोल धन से कम नहीं होता है। दोस्तों, परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार में प्रेम, विश्वास और सहयोग से ही सुख शांति बनी रहती है। इसलिए आज के समय में बढ़ती व्यस्तता, आपसी संवाद की कमी, स्वार्थ, नशे की लत, आर्थिक तनाव और आपसी मतभेद के कारण पारिवारिक विघटन की समस्या बढ़ती जा रही है। तो मित्रों, आइए इस खास विषय परिवार में बढ़ती संवादहीनता कारण और निवारण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है हमारे खास मेहमान अरुणा प्रकाश जी।
1: परिवार केवल एक मकान में साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं है, बल्कि भावनाओं, विश्वास, प्रेम और अपनत्व का एक सुंदर बंधन है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। पहले लोग साथ बैठकर भोजन करते थे, दिन भर की बातें साझा करते थे, सुख दुख बांटते थे। आज स्थिति यह है कि परिवार के सभी सदस्य अपने अपने मोबाइल, टीवी या अन्य व्यस्तताओं में खोए रहते हैं और तभी पनपती है संवादहीनता। और संवादहीनता का अर्थ सरल शब्दों में यही है कि जब लोग एक दूसरों से बात करना बंद कर देते हैं, एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, तो इसमें परिवार की जो धुरी है वो हिल जाती है। कई बार माता पिता बच्चों को नहीं समझ पाते और कई बार बच्चे माता पिता की भावनाओं को कदर नहीं कर पाते। पति पत्नी के बीच भी संवाद की कमी तनाव और विवाद का कारण बन जाते हैं। और इस संवादहीनता के कई कारण हैं, भाग दौड़ भरी जीवन शैली, तकनीक पर बढ़ती निर्भरता, समय का अभाव, अहंकार और एक दूसरे को सुनने में कमी। जब संवाद कम होता है तो प्रेम और विश्वास भी कमजोर होने लगते हैं। इस समस्या का समाधान भी हमारे ही हाथ में है। हम प्रतिदिन कुछ समय परिवार के लिए निकाल सकते हैं। साथ बैठकर भोजन करना, पहले हमारे परिवार में यह एक परंपरा थी कि परिवार के लोग साथ बैठकर भोजन करते थे। समय के साथ इस मूल्य में भी, जैसे सारे मानवीय और पारिवारिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, इसका भी ह्रास हुआ है और हम टीवी के साथ बैठकर खाना पसंद करते हैं। एक ही घर में रहते हैं पर दिन भर में शायद 5 मिनट भी दिल की बातचीत एक दूसरे से नहीं करते हैं। रात को अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और धीरे धीरे किसी की परेशानी का पता हमें बहुत बाद में चलता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए या एक घटना कहिए कि कल्पना कीजिए एक परिवार की जहां पिता नौकरी में व्यस्त रहते हैं, माँ पूरे दिन घर के काम और जिम्मेदारियों में लगी रहती है, बेटा मोबाइल और सोशल मीडिया में खोया रहता है और बेटी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहती है। यह हर घर की कहानी हो सकती है। सब घर एक ही जैसे हैं। एक दिन बच्चों के स्कूल से शिकायत आती है कि उनका व्यवहार बदल गया है, बच्चे हिंसक हो रहे हैं, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन कम गई है और तब परिवार को एहसास होता है कि यह जो समस्या है यह अचानक नहीं आई, बल्कि संवाद की कमी ने उस समस्या को जन्म दिया था। यह हमारे घर में से किसी के घर की कहानी हो सकती है। तो हम देखें कि संवादहीनता जो परिवार में पनप रही है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? इसमें सबसे प्रमुख कारण है मोबाइल और डिजिटल दुनिया का बढ़ता प्रभाव। आज तकनीक ने जीवन आसान तो बनाया है, लेकिन परिवारों के बीच दूरी भी बढ़ा दी है। पहले लोग साथ बैठकर बातें करते थे, पर अब साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल को देखते हैं। दूसरा कारण, व्यस्त जीवन शैली। आज हर व्यक्ति अपने काम, नौकरी, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त है कि परिवार के लिए समय निकालना कठिन हो गया है। समय के अभाव में भावनात्मक दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। तीसरा कारण, सुनने का आदत का अभाव। अक्सर हम बातें करते हैं और बातें करने में रुचि तो रखते हैं, लेकिन सामने बैठने वाले व्यक्ति को धैर्यपूर्वक सुनना भूल जाते हैं। अब किसी को लगता है कि उसकी बातों को कोई सुन ही नहीं रहा है और उसके बोलने की कोई कीमत ही नहीं है, तो धीरे धीरे परिवार का वह व्यक्ति बात करना कम कर देता है और दूरियां यहीं से शुरू हो जाती हैं। कुछ कभी कभी अहंकार और कुछ गलत फहमियां भी इसका कारण बनते हैं। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होना, कई लोग सोचते हैं कि पहले वही बात कर ले, उसके ही अहंकार को पहले तोड़ लूं, पर इससे क्या होता है कि रिश्ते धीरे धीरे अपने जड़ों को खो देते हैं और रिश्तों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। पीढ़ियों में अंतर भी एक बड़ा कारण है। बुजुर्गों की सोच अलग है, युवाओं की सोच अलग है। यदि दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो अच्छी बात है, पर यह होता नहीं है और संवाद टूटने लगता है। देखिए, संवादहीनता के दुष्परिणाम भी हैं। जब परिवार में बातचीत कम होती है तो विश्वास कमजोर होता है, गलत फहमियां बढ़ती हैं, तनाव और अकेलापन बढ़ जाता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स में मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। बच्चों के मानसिक विकास भी प्रभावित होता है और परिवार में प्रेम और अपनापन कम होना शुरू हो जाता है, तो रिश्ते दरकने लगते हैं। धीरे धीरे लोग एक घर में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हैं। अब इस संवादहीनता का समाधान भी हमारे ही पास है। कुछ छोटे छोटे उपाय करके हम इस संवादहीनता में जो आपस में दीवार खड़ी हो रही है उसमें कमी ला सकते हैं, जिसका एक सरल उपाय है

0: कि प्रतिदिन परिवार के साथ समय बिताया जाए। कम से कम 20 से 30 मिनट बिना मोबाइल के बैठिए, दिन भर की अपनी कार्यशैली और जो भी कार्य आपने दिन भर किए परिवार के साथ उसको साझा कीजिए और एक दूसरे से पूछिए कि आज आपका दिन कैसा रहा। दूसरा उपाय, सुनना सीखिए। सिर्फ बोलना ही संवाद नहीं है, अच्छे श्रोता बनना उतना ही आवश्यक है जितना कि अच्छा वक्ता। अब जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसे लगता है कि उसे सम्मान मिला और अपनापन भी, तो वह अपनी बातों को खुलकर बोल पाता है। तीसरा उपाय, छोटी छोटी बातों पर धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करना। एक धन्यवाद, जैसे आप अपने बच्चों को कहें कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने आज एक अच्छा काम किया, या तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। ये छोटे छोटे सेंटेंस जो हैं वो रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। चौथा उपाय है, विवाद होने के बाद संवाद। विवाद होना बहुत आसान है, पर विवाद के बाद संवाद की जो स्थिति है यह हमें बनानी पड़ती है। समस्या को बहुत दिनों तक मन में नहीं रखना होता है, शांत मन से बैठकर बात करनी होती है। विवाद होना स्वाभाविक है, पर विवाद के बाद अगर आप संवाद ना करें तो यह अस्वाभाविक है और यही फिर संवादहीनता का प्रमुख कारण बन जाती है और रिश्तों में एक बहुत बड़ा समस्या खड़ी करती है। पांचवा उपाय, परिवार की छोटी छोटी परंपराओं को बनाइए। जैसे बाइबल का एक लाइन है कि अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर एंड प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो एक सप्ताह में एक दिन भी साथ भोजन करना, साथ साथ घूमना, पूजा करना या साथ बैठकर बातचीत करना, ये छोटी छोटी आदतें रिश्तों में सुधार लाएंगी और रिश्तों को मजबूत बनाएंगी। हम सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, लेकिन सुखी परिवार अपने आप नहीं बनते, उन्हें समय, धैर्य, प्रेम और संवाद से बनाया जाता है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते हैं, हमारी चुप्पी, हमारा अहंकार और हमारी उपेक्षा धीरे धीरे हमारे रिश्तों को कमजोर करते हैं। इसी तरह रिश्ते कभी उपहारों से नहीं बनते हैं, बल्कि छोटी छोटी बातों से बनते हैं और यह अपनापन भी इन सभी छोटी छोटी बातों से आ सकता है। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि हम अपने परिवार को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें संवाद को जीवित रखना होगा। यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने परिवार के साथ प्रतिदिन समय निकालेंगे, एक दूसरे को ध्यान से सुनेंगे, नाराजगी तो होगी पर नाराजगी को चुप्पी में नहीं बदलने देंगे और अपने परिवार को प्रेम, संवाद और सम्मान देकर एक आदर्श परिवार बनाने की कोशिश करेंगे। जहां संवाद होता है वहां विश्वास जन्म लेता है, और जहां विश्वास होता है वहां प्रेम बढ़ता है, और जहां प्रेम होता है वहां सच्चा परिवार बसता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वार्ता को समाप्त करूंगी।
1: दोस्तों, यदि परिवार के सदस्य प्रेम, विश्वास और आपसी सम्मान बनाए रखें तो किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद को बढ़ाने के बजाय समझदारी और सहनशीलता से परिचय देना चाहिए। तो मित्रों, अभी हमने सुना अरुणा प्रकाश जी को। तो दोस्तों, बातें और चर्चाएं का सिलसिला और भी आगे चलते रहेंगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गीत।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना एक सदाबहार गीत जो अपने समय सभी संगीत प्रेमियों के जुबान पर रहती थी, और 60 से 70 के दशक में यह गीत फिल्म ज्वेल थीफ से काफी लोकप्रिय हुआ था। इस गीत को गाई थी लता मंगेशकर ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। तो दोस्तों, एक बेहतरीन गीत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते चलते आपसे चर्चा करते हैं एक और खास विषय पर, सीमित संसाधनों से भी घर चलता है। मित्रों, परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। प्रत्येक परिवार चाहता है कि उसके सभी सदस्यों का जीवन सुखी, सुरक्षित और सम्मानजनक हो, लेकिन हर परिवार आर्थिक रूप से सम्मान नहीं होता। कुछ परिवारों के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, जबकि अनेक परिवार सीमित आय और साधनों के साथ साथ जीवन यापन करते हैं। फिर भी यह सत्य है कि घर केवल धन संपत्ति से नहीं, बल्कि समझदारी, प्रेम, सहयोग और संतोष से चलता है। यदि परिवार के सदस्य मिलजुल कर जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, तो उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करें, तो सीमित संसाधनों से भी घर अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि सीमित संसाधनों का सही महत्व क्या है। तो दोस्तों, सीमित संसाधनों का अर्थ अभाव नहीं, बल्कि उपलब्ध साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। जब आय सीमित होती है, तब परिवार का प्रत्येक सदस्य खर्च करने से पहले आवश्यकता और इच्छा के बीच का अंतर समझता है। इससे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहता है, जरूरतों की पूर्ति आसानी से हो जाती है। मित्रों, घर को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए मासिक बजट बनाना बहुत आवश्यक है। आय के अनुसार भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और आवश्यक खर्चों की योजना बनाई जाए तो आर्थिक कठिनाइयां काफी हद तक कम हो जाती है। बिना योजना के किया गया खर्च अक्सर परिवार को कर्ज और तनाव की ओर ले जाता है। सीमित आय वाले परिवारों के लिए बचत सबसे बड़ी ताकत होती है। थोड़ी थोड़ी बचत भविष्य में किसी आकस्मिक आवश्यकता जैसे बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या अन्य आपातकालीन परिस्थिति में बहुत काम आती है। इसलिए आय चाहे कम हो, नियमित बचत की आदत अवश्य डालनी चाहिए। मित्रों, आज के समय में हमें दिखावे से बचना चाहिए। आज के समय में कई लोग दूसरे की देखा देखी अनावश्यक खर्च कर बैठते हैं। महंगे मोबाइल, कपड़े, वाहन या समारोह पर अत्यधिक खर्च करने से परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। सादगी और आवश्यकता के अनुसार जीवन जीना ही समझदारी है। सम्मान खर्चे से नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार और संस्कारों से मिलता है। साथियों, आज के समय में बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि जीवन में सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और संतोष में मिलती है। यदि वो छोटी उम्र में ही संसाधनों का सम्मान करना सीख जाए, तो भविष्य में जिम्मेदार नागरिक और सफल परिवार निर्माता बन सकते हैं। अंततः यह स्पष्ट है कि सीमित संसाधनों से भी घर अच्छी तरह से चल सकता है, यदि परिवार में प्रेम, विश्वास, अनुशासन, सहयोग और समझदारी हो। तो धन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन ही है, लेकिन परिवार की वास्तविक खुशहाली आपसी सम्मान, सादगी, संतोष और जिम्मेदारी में निहित है। हमें उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए बचत, मेहनत और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। यही आदतें परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत, वो आत्मनिर्भर और सुखी बनाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का यह कार्यक्रम आपको खूब पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने दोस्त युवराज को, और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

शाम 6:02 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। आज की बात होगी पशुओं में होने वाली प्रमुख विशेषज्ञताएं। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर दीक्षा मलेठा, भेंटकर्ता कृष्ण जीवन पौराणिक। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। साथ ही आप सदस्यों के सुन सकेंगे कुरमाली वार्ता, स्वच्छ भारत अभियान एक चुनौती, वार्ताकार रतन कुमार महतो। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

7:15 पर आप सुनेंगे हो लोकगीत, कलाकार होंगे बुधन सिंह कुंकल एवं साथी। 7:20 पर होंगे क्षेत्रीय समाचार नागपुरी उराव मुंडारी हो एवं संताली भाषा में।

7:45 पर आप सुनेंगे समाचार ध्वनि चित्र। रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:30 पर सुर्खियों में रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 11:10 पर हमारी मीडियम वेव की ये सभा समाप्त हो जाएगी। ये था आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पहला गीत, फिल्म आजा नचले से, स्वर राहत फतेह अली खां का।

आज नचले फिल्म से आप सुन रहे थे ये गीत राहत फतेह अली खां के स्वर में, शब्द रचना जयदीप साहनी की एवं संगीत सलीम सुलेमान का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म आशिकी 2 से।

तुम ही हो। ये गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह के स्वर में। शब्द रचना एवं संगीत मिथुन का एवं फिल्म का नाम था आशिकी 2। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से।

इरशाद कामिल का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। कैलाश खेर के स्वर में संगीत प्रीतम का एवं फिल्म का नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांस सरगम में अगला गीत फिल्म बर्फी से।

सैयद कादरी द्वारा लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म बर्फी से। संगीत प्रीतम का एवं स्वर था रेखा भारद्वाज का। इसी गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम सांस सरगम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को है। बस थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में आज समाहरणालय में जिला आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले में संचालित आधार सेवा केंद्रों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए आधार सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र के धुरमाडी गांव के पास तेज रफ्तार वाहन और बाइक की टक्कर में एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लगभग एक घंटे तक सड़क जाम कर दी। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। खूंटी स्थित जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में आज शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक बनाना था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही हमारे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त होती है क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो आप अपने चाय के कप के साथ रेडियो के करीब आ जाइए और हमारे कार्यक्रम का आनंद उठाइए। हम आपके साथ ढेर सारी जानकारियाँ भी शेयर करेंगे और साथ ही मज़ेदार गीतों का लुत्फ भी उठाएंगे।
0: बिल्कुल दोस्तों, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी दोस्त सनानास,
1: और मैं हूँ श्वेता।
0: हम दोनों की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो सिखाता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव्स के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सहकारिता की भावना को बढ़ावा देना है और समाज के विकास में सहकारी संस्थाओं के योगदान को सम्मान देना है।
1: बिल्कुल दोस्तों, आइए जानते हैं कि सहकारिता क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। सहकारिता का अर्थ है एक दूसरे का सहयोग करते हुए समाज सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करना। इसमें हर संदेश की भागीदारी और समय आधारित होती है। सहकारिता समितियां लगभग कमाने से पहले अपने सदस्यों और समाज के हित को प्राथमिकता देती है।
0: बिल्कुल सही कहा श्वेता। दोस्तों, इस दिन की शुरुआत दुनिया भर में सहकारिता आंदोलन के महत्व को पहचान दिलाने के लिए की गई है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एकजुट होकर हम गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसी चुनौती का बेहतर समाधान खोज सकते हैं।
1: भारत में सहकारिता आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। कृषि, डेयरी, बैंकिंग, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में सहकारी संस्थानों ने लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है। किसानों को उचित मूल स्तर, ऋषि सुविधा और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है।
0: दोस्तों, आज देश में महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों को सहकारी समितियों ने भी आर्थिक सशक्तिकरण का नया मार्ग प्रदर्शित किया है।
1: बिल्कुल, आइए जानते हैं सहकारिता के लाभ क्या क्या हैं। सामूहिक प्रयास में से विकास तेजी से होता है। छोटे उत्पादकों और किसानों को मजबूती भी मिलती है। रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सामाजिक सम्मान और विकास का वातावरण भी बढ़ता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति भी मिलती है।
0: बिल्कुल सही कहा श्वेता। तो दोस्तों, सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पॉजिटिव तरीका है। परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज हर जगह सहयोग की भावना हमें आगे बढ़ाती है। जब हम मैं की जगह हम को अपनाते हैं तब विकास का लाभ सभी तक पहुंचता है।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों इस इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव्स डे पर यह संकल्प लें कि हम सहयोग, विश्वास और साझेदारी की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि मिलकर चलने वाले कदम ही समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाते हैं।
0: दोस्तों, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनकी ऊर्जा, नए विचार और कुछ कर गुजरने का जज्बा देश को नई ऊंचाई तक ले जाता है। वहीं सहकारिता हमें मिलजुल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब युवा और सहकारिता का संगम होता है तब विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल, सहकारिता का अर्थ है एक दूसरे का सहयोग करते हुए सामूहिक रूप से आगे बढ़ना। इसमें सभी सदस्य समान भागीदारी निभाते हैं और लाभ भी सबको मिलता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज के समय में युवा स्टार्टअप, कृषि, डेयरी, डिजिटल सेवाओं और स्वरोजगार के क्षेत्र में सहकारी मॉडल अपनाकर नए अवसर पैदा कर रहे हैं। इससे न केवल रोजगार बढ़ रहा है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हो रहा है।
1: बिल्कुल, सरकार भी युवाओं को सहकारिता संस्थाओं से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। आधुनिक तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नवचर के माध्यम से सहकारी समिति पहले से अधिक मजबूत बन रही है।
0: यदि युवा अपनी प्रतिभा, मेहनत और तकनीक को सहकारिता की भावना से जोड़ दें तो वे न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।
1: याद रखिए, अकेला व्यक्ति तेज चल सकता है लेकिन साथ मिलकर चलने वाले लोग बहुत दूर तक चलते हैं। आइए हम सभी सहकारिता की भावना को अपनाएं, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और एक मजबूत, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।
0: बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों, आगे हम और भी बात करेंगे। इसी सोच के साथ लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, अब चलते हैं इतिहास के पन्नों पर और जानते हैं कि 4 जुलाई को देश और दुनिया में क्या क्या घटनी हुए। 4 जुलाई का दिन विश्व इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में ईयर 1776 में आज ही के दिन अमेरिका ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इस अवसर पर हर वर्ष पूरे अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी का आयोजन किया जाता है।
1: बिल्कुल, 1902 में आज ही के दिन महान संत, दार्शनिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का वेलूर मठ से निधन हुआ था। मात्र 39 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनका संदेश यह था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।
0: बिल्कुल दोस्तों, क्या बात कही है श्वेता तुमने। दोस्तों, 1947 में आज ही के दिन भारत के विभाजन की योजना, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है, को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां हुई। इसी योजना ने आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।
1: बिल्कुल, 1826 में अमेरिका के दो पूर्व राष्ट्रपति जॉन एडसन और थॉमस जैक्सन दोनों का निधन एक ही दिन हुआ। यह इतिहास के अत्यंत दुखदायी घटनाओं में गिना जाता है।
0: दोस्तों, 1865 में प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्य की कालजयी पुस्तक एलिस इन वंडरलैंड का पहला संस्कृतिक प्रशस्त हुआ। ये पुस्तक आज भी बच्चों और बड़ों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है।
1: बिल्कुल, 1804 में प्रसिद्ध अमेरिका लेखक नाथन हॉडसन का जन्म हुआ। उनकी रचनाएं विश्व साहित्य की अमूल्य धाराओं में से एक मानी जाती है।
0: दोस्तों, इसी के साथ 1927 में भारत के प्रसिद्ध अभिनेता जगदीप का जन्म हुआ, जिन्हें फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, इतिहास हमें केवल बीते हुए समय की जानकारी नहीं देता, बल्कि यह सिखाता है कि महान परिवर्तन साहस, दृढ़ संकल्प और सही निर्णयों से ही संभव होते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें आत्मविश्वास, सेवा और राष्ट्रभक्ति का संदेश देता है, जबकि अमेरिका का आंदोलन स्वतंत्रता दिवस हमें स्वतंत्रता के महत्व का एहसास कराता है।
0: तो श्रोताओं, 4 जुलाई हमें याद दिलाता है कि हर दिन इतिहास का एक नया अध्याय लिखता है। हमें भी अपने कर्मों से ऐसा जीवन जीना चाहिए दोस्तों कि आने वाली पीढ़ियां हमें अच्छे कार्यों के लिए याद करें। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ लेते हैं एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के उस हिस्से का जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिन्हें जानकर शायद आप भी ये कह उठे, अरे ये तो आज पहली बार पता चला।
1: बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि इंसान की नाक लगभग 1 ट्रिलियन तरह की अलग अलग खुशबुओं को पहचान सकती है? यानी हमारी सूंघने की क्षमता हमारे सोच से कहीं ज़्यादा कमाल की है।
0: एक और मज़ेदार बात दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केले पेड़ पर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े हर्ब यानी जड़ी बूटी वाले पौधों पर उगते हैं?
1: बिल्कुल दोस्तों। अब बात करेंगे तितलियाँ के ऊपर। दोस्तों, तितलियाँ अपने पैरों से स्वाद महसूस करती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, वो अपने पैरों से स्वाद महसूस करती है। किसी फूल या पत्ते पर बैठते ही उन्हें पता चल जाता है कि वह उनके लिए सही है या नहीं।
0: वाह दोस्तों, क्या आप जानते हैं या फिर आपने कभी सोचा है कि अगर अंतरिक्ष में हम रोएं तो क्या होगा? दोस्तों, वहाँ आंसू नीचे नहीं गिरते बल्कि चेहरे के आसपास ही छोटी छोटी बूंदों की तरह तैरते रहते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सना आपने। अब सुनिए एक और दिलचस्प तथ्य। शार्क धरती पर डायनासोर से भी पहले आ चुका था। यानी शार्क लगभग 40 करोड़ साल से इसी पृथ्वी पर मौजूद है और अभी डायनासोर्स तो मौजूद ही नहीं है दोस्तों।
0: सोचिए दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, आपको सोचना होगा। और जब कल और रोचक तथ्य आएंगे तब और इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि मुझे पता है और हम सबको पता है कि ये फैक्ट आपको बहुत पसंद है।
1: बिल्कुल।
0: और ये बात तो शायद ही आपने कभी सुनी होगी दोस्तों कि मधुमक्खियाँ सिर्फ शहद ही नहीं बनाती। अभी तक हम यही सुन रहे थे कि मधुमक्खियाँ हमें शहद देती है, बल्कि एक खास तरह का डांस भी करती है और वो अपने साथियों को इंडिकेट करती है कि फूल किस दिशा पर है।
1: क्या बात कही है सना आपने। अब बात करते हैं कि बांस की दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस है, जो कि आप सुने भी होंगे और उसे यूज भी करते होंगे। इसकी कुछ प्रजातियां एक ही दिन में लगभग 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती हैं दोस्तों।
0: ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में मौजूद सभी ब्लड वेसल्स को अगर एक सीध में जोड़ दिया जाए तो उनकी कुल लंबाई लगभग 1 किलोमीटर होती है।
1: बिल्कुल। उम्मीद है आपको ये रोचक तथ्य पसंद आए होंगे दोस्तों, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखना हमारी जानकारियाँ और भी मजबूत बनाती है। और अब हम सेकेंड में इसके बारे में और भी अधिक जानेंगे कल के कार्यक्रम में। तो इसी जानकारियों के साथ हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, आज के समय में हर युवा चाहता है कि उसे अच्छा काम मिले, अच्छी कमाई हो और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसे में सहकारिता क्षेत्र युवाओं के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों। सहकारिता का सीधा सा मतलब है कि मिलकर काम करना और मिलकर आगे बढ़ना। जब कई लोग साथ आते हैं तो काम भी आसान हो जाता है और सभी को आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। यही सोच युवाओं के लिए भी नए रोजगार के रास्ते खोल रही है।
0: दोस्तों, सहकारिता युवाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपने स्किल्स, मेहनत और नए आइडियाज़ के दम पर आगे बढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि सहकारिता का फ़ायदा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समूह को मिलता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। जब लोग मिलकर साथ होते हैं तो सफलता भी सबके हिस्से में आती है और यही वजह है कि आज इस क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
0: बिल्कुल सही कहा श्वेता तुमने, और यही भावना युवाओं को आगे बढ़ने का हौसला देती है। दोस्तों, हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। अगर आज का युवा मेहनत, ईमानदारी और टीमवर्क के साथ आगे बढ़े तो आने वाले समय में न सिर्फ उसकी अपनी पहचान होगी बल्कि वह दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा और रोजगार का कारण बनेगा।
1: बिल्कुल, तो आइए हम सब मिलकर यही कोशिश करें कि युवा अपनी ऊर्जा, अपनी सोच और अपने हुनर का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब अवसर और मेहनत साथ आते हैं तभी सफलता की नई कहानी लिखी जाती है। दोस्तों,
0: इसी खूबसूरत सोच के साथ दीजिए अपनी दोस्त सना
1: और श्वेता
0: को इजाज़त। उम्मीद है आज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और इस विषय से जुड़े कई नई बातें जानने को मिली होंगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: जिसके पसीने से सींची जाती है धरती की हर क्यारी, उस श्रमिक के चरणों में झुकती है दुनिया सारी। नमस्कार और जोहार है उन श्रमिक वीरों को जो हमारे देश के सच्चे निर्माता हैं। कार्यक्रम श्रमिक लोक में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहनतकश साथियों का। और आज आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर है मैं आकांक्षा
1: और मैं श्वेता। सभी मेहनतकश साथियों को श्वेता का भी प्रेम भरा नमस्कार। बिल्कुल आकांक्षा, किसी भी देश, समाज या कंपनी की नींव श्रमिकों के पसीने से, बल्कि हमारी प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी। और देश या राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे।
0: बिल्कुल श्वेता, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्थाएं किसी समान आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उसे सहकारिता कहा जाता है साथियों। और इसका मुख्य सिद्धांत जो है वो है

0: और घोषणा भी इसकी की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने।
1: अच्छा, तो आकांक्षा ये तो हमारे साथियों को बहुत अच्छी बात बताई, और हमारे सभी साथियों को ये भी तो बता दें कि इन्हें इस सहकारिता समिति से बहुत सारे लाभ तो है ही। किसी भी जाति, धर्म या लिंग का व्यक्ति अपनी इच्छा से इसका सदस्य बन सकता है और कभी भी सदस्यता छोड़ सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथियों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अगर साथियों को काम करने के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिल जाए तो कैसा रहेगा, है ना श्वेता?
1: बिल्कुल,
0: ये सहकारिता समिति साथियों को एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण या माहौल देती है जहाँ वे सुरक्षित होकर काम कर सके।
1: बिल्कुल, और दोस्तों, बिचौलियों के न होने से साथियों को उनके काम का पूरा और सही मूल्य मिलता है। ठेकेदारों और बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण से पूरी सुरक्षा भी मिलती है। और दोस्तों, सहकारी समितियां जो हैं अपने सदस्यों को नियमित और दीर्घकालिक रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है।
0: बिल्कुल, और सहकारी समिति के माध्यम से कल्याणकारी सुविधाएं भी दी जाती है। जरूरत के समय श्रमिकों को बहुत कम ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम भुगतान की भी सुविधा मिलती है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा है, भविष्य निधि है और दुर्घटना बीमा जैसी जरूरी सुविधाएं भी आसानी से उन्हें मिल जाती है।
1: और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि सहकारी समितियों के माध्यम से श्रमिकों की कार्य क्षमता और हुनर को बढ़ाने के लिए समय समय पर मुफ्त प्रशिक्षण और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं।
0: और हाँ, सदस्य मिलकर सीधे उत्पादकों से सामान खरीदते हैं जिससे बिचौलियों का जो हिस्सा होता है ना वो खत्म हो जाता है और चीजें सस्ती मिलती हैं। छोटे किसान या व्यापारी अपनी पूंजी मिलाकर बड़े स्तर पर व्यवसाय कर पाते, यानी हम कह सकते हैं कि यह ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।
1: दोस्तों, आकांक्षा ने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सहकारिता हमारे लिए कितना जरूरी है। भारत का प्रसिद्ध अमूल डेयरी सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लाखों दुग्ध उत्पादक किसान मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा सहकारी बैंक यानी कॉपरेटिव बैंक्स, जो कम ब्याज दर पर किसानों और छोटे व्यापारियों को ऋण देते हैं।
0: बिल्कुल, सहकारिता का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है बल्कि आपसी सहयोग, समानता और सामाजिक न्याय के जरिए सभी का कल्याण करना है। और एक छोटा सा कल्याण हमें भी अपने साथियों के साथ करना है श्वेता।
1: बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत देर से जानकारियां वो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें तो जरूर इंतजार होगा एक खूबसूरत प्यारे से फिल्मी गीत का। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: साथियों, अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और श्वेता अब अपने साथियों को बताते हैं पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ी जानकारियां। इस विशेष कार्यक्रम का मकसद ही है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से सीधा फायदा हमारे साथियों को हो। और ऊर्जा का नाम तो आपने सुना ही है साथियों, जिसके प्रयोग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यानी सौर ऊर्जा के बारे में।
1: हाँ बिल्कुल, और वो इसलिए क्योंकि यह एक कभी न खत्म होने वाला और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों, सूर्य से प्राप्त होने वाली प्रकाश और उष्मा को आधुनिक तकनीक जैसे सोलर पैनल के जरिए इस ऊर्जा को सीधे बिजली या गर्मी में बदला जा सकता है।
0: बिल्कुल, और इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है साथियों, वो फोटोवोल्टिक, इसमें लगे सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश को सोख कर उसे डायरेक्ट करंट यानी बिजली में बदल देते हैं। इन्वर्टर इस डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है, जिसका उपयोग घर के पंखे, टीवी और अन्य उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है।
1: बिल्कुल, और सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होगी। हम सभी को मिलकर इसके उपयोग को बढ़ावा देना है और सरकार की इसके लिए हर संभव प्रयास कर ही रही है। तो हम सबको तो पहले पहले हम सब जागरूक होंगे, तभी तो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो भारत सरकार द्वारा

0: जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है और इसका जो शुभारंभ किया गया है, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं वो इससे जुड़े।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये योजना महत्वाकांक्षी भी योजना है जिसका उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने की योजना है। इस योजना के तहत साथियों आवासीय छतों पर सोलर पैनल यानी कि रूफ टॉप सोलर स्थापित करने के लिए सरकार भारी सब्सिडी भी आपको देगी।
0: बिल्कुल। और आप इस योजना का लाभ जरूर लें ताकि आपको अपने घरों या व्यवसायों के लिए मुफ्त बिजली मिल सके। दोस्तों सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा, साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषण मुक्त होगा, इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। और दोस्तों इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी बहुत आसान है, इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आपको सबसे पहले पंजीकरण करवाना है साथियों, अपना पहले आप राज्य चुने, अपनी बिजली वितरण कंपनी का चुनाव भी करें, साथ ही बिजली उपभोक्ता नंबर भी आपको उसमें दर्ज करना है और मोबाइल नंबर और ईमेल भी उसमें दर्ज करें। इसी प्रकार आगे की प्रक्रिया भी पूरी कर बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त करें और इस सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, वो भी आपके फायदे के लिए साथियों।
0: बिल्कुल दोस्तों। तो अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और दोस्तों को बताएंगे कि जो हम सब जितने हमारे साथी हैं वो बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं, तो इसके लिए उन्हें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए आपको जो जो भोजन आप लेते हैं उस भोजन का पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके भोजन में क्या कुछ शामिल हो जिससे कि आपको उचित पोषण ऊर्जा मिल सके और आप स्वस्थ रह सकें।
1: तो हम अब आगे बातें करेंगे। एक भेंट वार्ता है, पोषण क्या है क्यों जरूरी है, ये विषय है इस भेंट वार्ता का। और आज की मेहमान है डॉक्टर आशा किरण और इनसे बातचीत कर रही है श्वेता आर्या।
0: नमस्कार साथियों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पोषण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हम सब के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। दोस्तों हम सब भोजन करते हैं लेकिन हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए और किसकी कमी से क्या हो सकता है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। तो आज हम इस सारी विषयों पर विस्तार से जानने के लिए बात कर रहे हैं पीएसएम रिम्स रांची के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशा किरण से। मैडम हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: मैम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पोषण के बारे में बहुत से हमारे साथी हैं जो नहीं जानते हैं कि आखिर पोषण होता क्या है। भोजन तो पेट भरने के लिए सब करते हैं ताकि कुछ एनर्जी मिले, ऊर्जा मिल सके, लेकिन आखिर पोषण क्या होता है और ये क्यों जरूरी है।
2: खान पान से संबंधित जो भी बातें हम जानते हैं, सही खान पान ही सही पोषण कहलाता है
0: जी।
2: अगर खान में दाल चावल सब्जी, उसके अलावा दूध अंडा और फल होने चाहिए। फल का मतलब ये नहीं है कि जो बहुत महंगे फल है वैसे फल नहीं, फल वैसे जो आसपास मिलता है, जैसे कि हमारे आसपास अमरूद है, पपीता है, नींबू है, तो इनको हम लोग सेवन कर सकते हैं
0: जी। और मैडम आपसे एक जानना चाहेंगे ये बात कि पोषण आखिर क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए।
2: हमारे शरीर के लिए जो ग्रोथ होती है, हम बढ़ते हैं, हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये सारे चीज़ जो है हमारे खान पान पर डिपेंड करते हैं। हमारे खान पान में जो मेन पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मतलब कि हम दलहन खाते हैं तो उसमें प्रोटीन मिलता है जो कि हमारे शरीर को मांसपेशियों को ताकत देता है। कार्बोहाइड्रेट जो है उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है जिसकी वजह से हम लोग काम कर पाते हैं। उसके अब फैट, फैट से भी हमें ऊर्जा मिलता है। उसके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि जैसे कि आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, आयोडीन हुआ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाने चाहिए, आयरन युक्त जैसे कि हरी साग सब्जियां हुए जो हमारे आसपास रहते हैं तो उनका उपयोग करने से, तो ये सब में माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे आयरन की जरूरत क्यों होती है, खून बनाने में, कैल्शियम की जरूरत क्यों होती है, तो कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूती देता है। उसके अलावा जिंक होते हैं, तो वो क्या होता है कि अभी जैसे कि कोरोना था तो उसमें आप लोग सब बात सुनते होंगे कि जिंक खाना चाहिए, जिंक खाना चाहिए। तो जिंक जो है एक इम्यूनिटी देता है, इसलिए जब छोटे बच्चों को जब डायरिया भी होता है तो हम अलग से ORS के अलावा जिंक लेने के लिए कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है।
0: जी मैडम, आपने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया कि पोषण क्यों जरूरी है, क्या खाने से हमें क्या मिल सकता है। लेकिन चूंकि हमारा कार्यक्रम है श्रमिक लोग, हमारे जो सुनने वाले जो साथी हैं वो अधिकतर श्रमिक वर्ग के लोग हैं, तो हम आपसे आज जानना चाहेंगे मैम कि जो महिलाएं हैं और जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए पोषण की आवश्यकता क्यों है।
2: जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं कहें कि ये शुरुआत है कि जब वो किशोरियां रहती हैं उसी समय से उनके शरीर को एक सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो आने वाले दिनों में माँ बनेंगी। माँ बनेंगी तो उनके शरीर के साथ साथ जो बच्चे का ग्रोथ होना चाहिए तो वो उन पे डिपेंड करता है। इसीलिए माँ का अगर स्वस्थ माँ रहेंगी तो स्वस्थ बच्चे को जनेंगी। तो इसीलिए मेनली हमारे यहाँ आयरन की कमी होती है, तो इसीलिए किशोरी अवस्था से ही उन्हें वीकली आयरन खिलाया जाता है, सप्ताह में एक बार। और वो अगर रहती, आयरन की कमी से क्या हो जाता है, भूख नहीं लगती है, थका थका रहता है, काम नहीं कर पाती हैं, कमजोर माँ रहेंगी। तो कमजोर माँ रहेंगी तो अगर वो बच्चे को जनेंगी तो वो बच्चा कैसा होगा, बच्चा कमजोर हो सकता है, बच्चे की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए माँ का पोषण बहुत ही उपयोगी है। बच्चे को का पोषण क्यों जरूरी है, माँ के पोषण के साथ साथ बच्चे का पोषण इसलिए कि जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो उस समय माँ अगर नरिश है तो बच्चे दूध होगा माँ का, तो बच्चा भी माँ के पोषण के से बच्चा लेगा। अब जब बच्चा 6 महीने से ऊपर के हो जाते हैं तब उसे ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है। तो जो बड़े लोगों में, वयस्क लोगों में या किशोरियों में आवश्यकता होती है, वही बच्चों को भी रिक्वायरमेंट होता है। तो फूड के बारे में ये जानना होगा कि कौन से फेज़ हमें कितना खिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में खिलानी चाहिए। तो इसलिए बच्चों का पोषण उसके लिए, क्योंकि उसी समय उसका शरीर का विकास होता है, शरीर के साथ साथ उसका मानसिक भी विकास होता है। तो ये सारी चीज और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी, अगर बच्चा के रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, सही पोषण लेगा तो कोई भी बीमारी अगर होगी तो उससे लड़ने की क्षमता उसमें होगी, वह निरोग रहेगा, रोगी नहीं बनेगा। तो इसीलिए पोषण माँ में जरूरी के साथ साथ बच्चों में भी जरूरी है।
0: हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि कई बार ऐसा होता है मैम कि जो हमारे साथी हैं, जो श्रमिक साथी हैं, वो सोचते हैं कि महिलाओं को तो घर का काम करना है, बच्चे तो घर में रहते हैं, पुरुष बाहर जाके काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो ऐसे में उन्हें शायद ये लगता है कि महिलाओं को उतना खाने का क्या जरूरत या बच्चों को उतना ज्यादा क्यों जरूरी। और अक्सर ऐसा होता है कि खाने की क्या मात्रा होनी चाहिए या खाने में क्या शामिल होना चाहिए, इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। तो कृपया हमारे साथियों को थोड़ा विस्तार से बताएं कि जो भोजन में जो भी लेते हैं, दाल चावल या रोटी सब्जी, ये तो कॉमन सी चीज है, तो ऐसा साथ में और क्या शामिल करें जिससे इन्हें संपूर्ण पोषण मिल सके और इन्हें कुपोषण का शिकार नहीं होना पड़े।
2: जब माँ गर्भवती होती है तो उस समय माँ के पोषण के साथ साथ जो गर्भ में बच्चा है उसके भी पोषण की आवश्यकता होती है, जो कि माँ के पोषण से ही मिलता है। तो इसीलिए जो माँ खाना 3 बार अगर खाती है तो माँ को कहना है कि अपने खाने को 1 बार और बढ़ा दे, क्योंकि उस समय कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इसीलिए 1 प्लेट खाना उनको बढ़ा देना है। उनके थाली में दाल चावल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध या अंडा जरूर होना चाहिए। पीले रंग का फल जो होता है, जिसमें कि विटामिन ए की मात्रा होती है, आंख की रोशनी के लिए बहुत आवश्यक होता है। इस समय गर्भवती माँ में भी देखा गया है और बच्चे में भी इसकी कमी से रात में देखने में दिक्कत होता है। तो इसीलिए पीले रंग के फल भी, जैसे कि पपीता हुआ, केला हुआ जो कि हमारे आसपास होता है, या कोहड़ा हुआ, इसको खाने के लिए बताना चाहिए। चाहिए। और हरे पत्तेदार सब्जियां इसलिए खाने चाहिए कि इसमें आयरन भी होता है और गर्भ के समय में बहुत सारे खून का लॉस होता है, तो ये उनका खून उससे बना रहेगा। और इसके अलावा

0: कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम जैसे कि प्रोटीन है वो जिसमें कैल्शियम युक्त भोजन है उस मेनली हम लोग दूध की बात करते हैं, दूध पीने से, तो दूध जरूर पीना चाहिए। और इससे होता है कि गर्भ के समय में एक एक्लेम्सिया होता है, मतलब देखते होंगे कि बहुत माँ जो गर्भवती है उनको चमकी आता है, तो वो चमकी नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए आयरन और कैल्शियम भी लेते रहना चाहिए।
1: मैडम ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या खा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो बहुत महंगी महंगी चीज़ें खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हम लोग तो वो नहीं खा सकते, नहीं खरीद सकते, तो फिर इसीलिए हमारे अंदर पोषण की कमी है। लेकिन जैसा आपने बताया कि हमारे आसपास में जो फल सब्जियाँ मिलती हैं सस्ते दामों में जो हर कोई खा सकता है, उसे खा करके भी हम उतना ही पोषण प्राप्त कर सकते हैं, तो इस गलत फहमी में हमारे साथी बिल्कुल न पड़े कि जो महंगे जो बहुत ज़्यादा दाम वाले ड्राई फ्रूट्स या महंगे फल हों या फिर जो सीजनल न हो वही खाएंगे तो ही हमें पोषण मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आसपास में आपके जो मार्केट में जो हरी सब्जियां मिल रही हैं जो मौसमी हैं ताकि वो सस्ती भी होती हैं, तो ये भी आपको उतना ही पोषण देंगी, तो इसलिए आप बिल्कुल अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें और भोजन में इन सबको शामिल ज़रूर करें। मैडम अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी लोग इतना पोषण युक्त आहार नहीं ले पाते हैं या किसी भी वजह से, तो उन्हें किन चीज़ों के अभाव में क्या समस्याएं हो सकती हैं?
0: सही मात्रा में भोजन नहीं लेने से कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। माँ कुपोषित तो होंगी ही, उनका जो बच्चा होगा वो भी कुपोषित होगा। अगर बच्चा पोषण को सही पोषण नहीं दिया जाता तो बच्चा भी कुपोषण का शिकार होगा। देखा गया कि कुपोषण के कारण जितनी भी बीमारियां हैं 50% चांस में कुपोषण के कारण ही बीमारियां होती हैं और इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए सही पोषण रहना बहुत अत्यावश्यक है। इसे दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा 180 दिन के लिए आयरन की गोली दी जाती है और कैल्शियम दी जाती है उसका सेवन करते रहना चाहिए और बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, 6 महीने तक लगातार स्तनपान कराना चाहिए। 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ साथ उसे ऊपरी आहार भी देना चाहिए कि बच्चा भी कुपोषित ना होगा। अगर बच्चा कुपोषित, अगर माँ कुपोषित हुई तो बच्चा कुपोषित होगा, कुपोषित बच्चा होगा तो आने वाला जो बच्चा उसके जो बच्चे होंगे वो भी कुपोषित है, तो ये एक तरह से एक साइकिल चलता रहेगा कि कुपोषित घर में कुपोषित ही लोग रहते हैं। इसीलिए अपने पोषण का पूरा ध्यान देना है। कुपोषण के कारण मृत्यु दर भी, माताओं में मृत्यु दर होगी या जो गर्भवती माँ है उनमें बच्चे जो होंगे कम वजन के बच्चे होंगे, मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा होगी और अदर बीमारियाँ जो हैं सांस से रिलेटेड बीमारी, पेट खराब से रिलेटेड बीमारी, ये ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, तो इसीलिए अपने पोषण का पूरा ध्यान देना।
1: बिल्कुल, और हम अपने साथियों को ये भी कहेंगे कि ऐसा बिल्कुल न समझे, आज जो आप अपने खाने पे जो खर्च कर रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, न कि आप आज अपने भोजन को बचाएं, खाने पर खर्च कम करें और बाद में इलाज पर खर्च करें। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आज अपने भोजन में इन जो मैडम ने बताया इन सारी चीज़ों को शामिल ज़रूर करें। आज से ही आप अपने भोजन को थोड़ा बदलें और अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों को, फलों को, दूध या अंडा, कुछ इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि घर में लोग पोषित हों, पोषण का कोई अभाव ना हो और पोषण के अभाव में कोई बीमारी ना हो। मैडम आपने हमारे साथियों को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, बहुत अच्छी जानकारी दी, चलते चलते आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: अभी झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो यहाँ एक स्लोगन चलता है, सही पोषण तो देश रोशन।
1: वाह जी।
0: उसके अलावा बच्चों में दूध के बारे में होता है कि जो बच्चे खाए खिरसा वो बनेगा भगवान बिरसा, तो यही सोच के हमें भी अपने अपना पोषण भी सही रखना है और बच्चे को भी पोषण पोषित रखना है।
1: ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि अपना पोषण भी सही रखना है, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगी तभी आप पूरे घर का ख्याल रख पाएंगी, पूरा घर स्वस्थ होगा। तो मैडम की बातों पर जरूर अमल कीजिएगा और इसी के साथ मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथियों से अपना कीमती वक्त शेयर किया और अपनी महत्वपूर्ण बातों को इन्हें बताया। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: साथियों अभी आप सुन रहे थे बाह्य

0: मानकन पर आधारित ये भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर आशा किरण और इनसे बातचीत कर रही थी श्वेता आर्या।
1: तो दोस्तों, आपने जाना कि पोषण कितना ज़रूरी है, और अब आगे आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे श्रमिक साथी अपनी आजीविका के लिए उद्योगों पर आश्रित हैं। उद्योग देश की प्रगति और रोजगार के लिए ज़रूरी है, और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उद्योगों को स्थापित करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इससे अत्यधिक पेड़ों का कटाव हो जाता है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता। वनों से हमें बहुत कुछ मिलता है। हम सभी प्राणियों के लिए पेड़ पौधे भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने उद्योगों का विकास। वन ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, साथ ही वन जैव विविधता और जल चक्र को बनाए भी रखते हैं। पेड़ों की कमी से तापमान लगातार बढ़ रहा है, असमय बाढ़, सूखा और भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ रही हैं।
1: बिल्कुल, और दोस्तों, हमारे वातावरण में भी प्रदूषण का प्रकोप बढ़ रहा है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं और कचरा हवा पानी में मिलकर जहरीला बना रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि औद्योगिकीकरण और वन का संतुलन बनाए रखें, और इसके लिए देश का हर एक नागरिक खुद जिम्मेदारी ले कि जितने भी ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं, उनके बदले उतने पेड़ भी लगाए जाएं, क्योंकि हम औद्योगिकीकरण को कम या समाप्त तो नहीं कर सकते। हमें दोनों को ही एक समान रूप से लेकर बैलेंस करके चलना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता। साथियों, हम अपनी तरफ से संकल्प लें और पेड़ों की कटाई को दुगनी पेड़ लगाकर पूरा करें। उद्योगों से निकलने वाला कचरा को बिना साफ किए नदियों या मिट्टी में ना छोड़ें। औद्योगिकरण और वनों का संतुलन बनाए रखना सतत विकास के लिए बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों, ये भी जरूरी है कि हम अपने समय का ध्यान रखें। और चूंकि अब इजाजत नहीं है हमें ज्यादा बात करने की, वक्त अब खत्म हो चला है हमारे कार्यक्रम का। दीजिए अपनी दोस्त श्वेता
0: और आकांक्षा को
1: इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोग, और आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें, ताकि पुनर्निरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके। रांची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के महात्मा गांधी मार्ग स्थित श्री हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों को सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में नवनिर्मित वातानुकूलित सामुदायिक हॉल श्री राम वाटिका का उद्घाटन करते हुए इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की प्रेरणादायी केंद्र बताया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी। सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित आसांगी चेक डैम में नहाने के दौरान दो स्कूली छात्र गहरे पानी में डूब गए। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद एक छात्र का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे छात्र की तलाश है। रामगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश महामंत्री सरोज सिंह ने कहा कि 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से 6 जुलाई उनके जन्म दिवस तक पूरे देश में विशेष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सम्मेलन में बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे सब भाई बहन उनके करण भाई कर जोहार और मनोज भाई रवरे के जोहार।
1: और संगे संगे मोर दनिस में जोहार करण भाई, और का हाल चाल मन है, किसन खबर मन है।
0: हाल चाल तो सब नगदे नगद है, लेकिन देखो पानी बरखा कर तो आसरा है भाई।
1: देखो आसरा में ही जीवन है, और जीवन में तो आसरा करक चाहिए, उम्मीद छोड़क नखे। लेकिन खेती बाड़ी कर जे काम के हमारे मन के छोड़क नखे करके है कि नहीं।
0: डाण वाला ले तो तनी मनी जे आवत है से तन ठीके है, लेकिन बीड़ा करे के लिए चाहे दैन कर जे खेती रोपनी कर है तो कर बीड़ा करे के लिए तो एकदम एकदम हमचोवट पानी डील तक तब नहीं तो
1: सही
0: उस
1: बात है
0: नहीं
1: भाई,
0: आवत है।
1: सही बात है। देखो पानी बरखा तो आते रहे जाते रहे, लेकिन हमारे मन के अपन तरफ से भी जैसे कि खेती बाड़ी करेला तो हमारे मन के नुकसान हो जाला, दोसर दाने भी हमारे मन के ध्यान देवक चाहिए।
0: एकदम सही कहती। देखो हमारे मन खाली गोड़ा मोड़वा उरीद चाहे इसने दिन कर धान कर खेती करत थी और पानी नहीं आवत है तो और कहली कि नुकसान हो गया। एकदम हो गया काले कि वो हिसाब से खन जे बिहन मना है अब हना कि कृषि वैज्ञानिक मन कम पानी वाला ऐसा जे आहे से कि निकसाय कर प्रयास करते हैं आते हुआ है, लेकिन ऊपर से नुकसान से अगर बाँचे के चाहे नुकसान नहीं हो भी तो दोसर बट हमरे के जरूर जाएक चाहिए। जैसे हमरे मन छेगरी पोई सकीला, मछरी पोई सकीला, गेड़े मन पोई सकीला है नहीं, और
1: मुर्गी
0: गाय
1: मन है ये।
0: हाँ गाय मन क्यों पोस के दूध कर व्यवसाय कर सकीला। और मुर्गियों गोटे बढ़िया चीज़ है, गांव घर में तो मुर्गी पोसें लेकिन वह दू चार गो दू चार सबकर घर में रहेला
1: और
0: लेकिन
1: देखो ना
0: कचिया कमाए के लायक नहीं रहे।
1: आजकल देखो बॉयलर मुर्गी जिसने आवेला और जिसने है तुरंत तैयार हो जाला, आजकल तो डिमांड भी दुनिया भर कर है। एक आमदनी से भी हमारे लगा थे कि कुछ तो भरपाई हो जी है कि नहीं।
0: हाँ एकदम काले कि बॉयलर वाला तो नहीं जल्दी हूँ बाढ़ेला और जल्दी उनके बेचे के लायक हो जाएला तो नहीं कुन ध्यान देवे कर चीज़ है कि मुर्गी मरेला काले कि उकर जे बीमारी मना है एगो तो माता जैसन हो जाएला तो नहीं के हगाबो करेला तो बहुत मुर्गी मर जाएला है नहीं। तो दवाई मन कराते रह टीका मन अगर हमारे मन दिवाते रह टीका मन दिले नहीं मरेला तो ऊपर ध्यान दिले बढ़िया है। उकर पानी क्यों सफा सुथरा तनि राखे का है, उकर आहार है से मन के हमने ध्यान देब और उकर घर के तनि बढ़िया रखब तो फायदा होगी।
1: और देखो नहीं भाई आजकल देखो तो चरका कर बॉयलर मुर्गी के अलावा रंगीन मुर्गी भी भेटाएल जे कि बॉयलर रहेला लेकिन देसी
0: देसी
1: और
0: मत
1: ओकर
0: क्या हो
1: मिक्स
0: जाए।
1: टाइप कर रहेला, जेकर से है कि मतलब यहाँ कर क्षमता जे मौसम के सहे कर क्षमता रखेल ओकर में
0: हाँ
1: उस
0: और
1: समय
0: बहुत के
1: पोसेक
0: तो अगर
1: चाहिए।
0: नहीं जानबे हले कहबे देसी है कि लेकिन तने के गोड़ मन के देख ले पता लागे ला कि वो असली देसी है कि बॉयलर वाला जे मतलब का कहब रंगीन डेना आई गेल है नहीं।
1: सही बात है। देखो कोनो चीज़ के हमरे मन पोसत है तो जानकारी कर हमरे मन के तुम तो पूरा जानकारी ले के करे चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कोई अगला कही देलक, दोस्त यार मन संग कही देलक और सुरते व्यवसाय शुरू कर दिले, तो उसमें घाटा होकर संभावना, प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी रहेला।
0: एकदम वो तो बहुत जरूरी है, पहले काल की व्यवस्था नहीं रहे नहीं तो हमारे मन इसने करत रहे। अब तो प्रशिक्षण कर ठावे ठावे व्यवस्था है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर से तो ईसन प्रशिक्षण देवल जाए
1: जानकारी देवल
0: खेती
1: जाला
0: बाड़ी
1: है।
0: से हूँ करल जाए।
1: और देखो हर के बीके जहाँ जहाँ जिला में के बीके वहाँ से भी जानकारी देवल जाला है नहीं।

0: तो भाई देखो, बता दें, चाहले के कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और
1: हाँ
0: आज कर
1: हाँ
0: कार्यक्रम सबसे पहले हमारे मन जानब मवेशी में होए वाला प्रमुख विषाक्तताएँ कर बारे में, जिसके बतावे डॉक्टर दीक्षा मलेठा। उकर बाद कृषि विकास गीत में सुनो मेघनाथ महतो और संगी मिलकर गावल गीत। और आज कर एक ठो किसान है सुमित्रा देवी। तो मौसम में देखो तो भाई आ है कि नहीं आए,
1: मौसम तो देखो
0: पहुँचिए खाना भी तो बता
1: पहुंचे
0: दो
1: के
0: भाई ना।
1: वाला है, मानसून पहुंचे तो देखो काले के तापमान तो तने गिरल है और बदरी मना है तो तने के तापमान तो गिरल है। बूंदा बूंदी बूंदा बूंदी तो दिन के पानी रहे, रांची में हो रहे हैं, दोसर बट्ठू दोसर सौ जिला में हो रहे हैं। और इसन एखन मौसम विभाग कहते कि झारखंड कर 200 जिला मन में पानी आवी और कोनो कोनो बट जोर हुआ भी, कोनो कोनो बट तनी मनी आवी है नहीं।
0: तो भाई हमारे को उम्मीद छोड़े के रखे और खेती बाड़ी के रखे। और देखो बहुत सा भाई मन पशु पालन करे ना, जेकर समझला कि बीमारी हो जाएला, जेकर बारे में हमारे मन के जानकारी नहीं रहेला तो फिर मर जाएला, है कि नहीं। तो सब चीज़ के हमारे मन के जानकारी होए चाहिए। और जे का प्रमुख ओकर विषाक्तता है, मतलब विष मन रहेला, जहर मन रहेला, कैसे कैसे बीमारी मन होला, वो कि हमारे मन के दूर करे के और जानकारी ही बचाव है कहे ना, है कि नहीं।
1: हाँ, काले के देखो पशु मन का खात है का करत है तो उनकर शरीर मन में उस समय हो जाएला है नहीं, तो उकर से दूसर बीमारी हो सकेला। तो से चलते हमरे के तो जाने के जरूरी है, काले के मौसम बदलत है और पहले हमरे कर माहौल अलग रहे, पर्यावरण बहुत सफा सुथरा रहे, अब उस न खे तो मवेशी मन में प्रभाव पड़त है नहीं।
0: और खान पान का तो हमारे मन के विशेष ध्यान देवे के चाहिए कि नहीं। चले निकर बारे में हमारे मन के जानकारी देवत हैं डॉक्टर दीक्षा मलिठा, इनकर से हमारे कर संगी गुठिया हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
1: चलो सुनी ले।
2: किसान भाइयों नमस्कार। पशुपालन हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम अपने पशुओं को रहने और खाने पीने का इंतजाम तो रखते ही हैं, लेकिन कई बार हमारी छोटी सी लापरवाही या अनजाने में हुई चूक पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। चारा खाते समय कीटनाशकों के संपर्क में आने से या दूषित पानी पी लेने से पशुओं के शरीर में जहर फैल जाता है। सही समय पर लक्षण न पहचान पाने के कारण कई बार पशु दम तोड़ देते हैं, जिसे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी बीमारी को हम कहते हैं पशु विषाक्तता। इसी महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीक्षा मलेठा, सहायक प्राध्यापक वेटनरी कॉलेज रांची। दीक्षा जी, आपको हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि पशु विषाक्तता होती क्या है।
3: विषाक्तता का मतलब है विषाक्त तत्वों या पदार्थों से होने वाली समस्याएं।
2: जी
3: जब कोई हानिकारक या विषाक्त या जहरीला पदार्थ सेवन के पश्चात हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारी शारीरिक क्रियाओं को बाधित करता है, हमें बीमार करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उसे विषाक्तता कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों में जहरीले पदार्थ खाने पर हानिकारक व प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है, वैसे ही पशुओं में भी विषाक्त रसायन, जहरीले पौधे, सड़ा पुराना चारा खाने से गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तथा कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है।
2: जी, तो पशुओं में विषाक्तता के प्रमुख कारण क्या हैं?
3: देखिए, पशुओं में विषाक्तता के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं कुछ जहरीले पौधे जो कि आपने सुना होगा, जैसे पुटुस, थेथर, कनेर, गाजर घास, अकवन, धतूरा, कटेरी आदि।
2: जी।
3: ये जहरीले पौधे जो होते हैं ये भी विषाक्तता का कारण होते हैं।
2: जी जी।
3: अगला आता है अगर हरे चारे में ऐसा हरा चारा जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है, अगर उनमें आपने कीटनाशक छिड़काव किया हुआ है या फिर उर्वरक का उपयोग किया है तो उनमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, या फिर साथ ही पानी का अभाव हो तो ऐसा चारा देने से पशुओं में नाइट्रेट विषाक्तता देखी जाती है जो कि ऑक्सीजन को बाधित करती है। अगला आता है यूरिया का उपयोग। हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर पशुओं में संतुलित मात्रा में प्रोटीन की आपूर्ति के लिए यूरिया हम देते हैं, लेकिन इसे अगर निर्धारित मात्रा से ज्यादा दिया जाए तो इसके अधिक सेवन से विषाक्तता होती है।
2: जी।
3: अगला आता है कुछ सायोजनिक पौधे जैसे ज्वार, बाजरा, अलसी, बबूल, जिनमें की साइनाइड ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। पशु अगर इनका सेवन कर ले, कच्चे छोटे पौधे अगर पशु खा ले तो उनमें साइनाइड ग्लाइकोसाइड की मात्रा अधिक

0: होती है
1: जी।
0: वो साइनाइड विषाक्तता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा फफूद लगा चारा, कीटनाशक का गलती से सेवन जो कि चारे या पानी के रूप में हो सकता है, साथ ही दूषित गंदा रुका हुआ पानी तथा कुछ अन्य रसायनों का गलती से सेवन पशुओं में विषाक्तता का कारण बनता है
1: जी। अभी आपने बताया कि क्या क्या चीज खाने से होता है
0: जी,
1: लेकिन इसको हम कैसे पहचानेंगे, कौन कौन सी विषाक्तताएं देखी जाती हैं?
0: देखिए, पशुओं में आम तौर पर जो विषाक्तताएं देखी जाती हैं वो होती है साइनाइड विषाक्तता, नाइट्राइट विषाक्तता, ऑक्सलेट विषाक्तता, एफ्लाटोक्सिकोसिस जो कि फफूद लगे चारे के सेवन से होती है
1: जी,
0: यूरिया विषाक्तता, कीटनाशक विषाक्तता तथा जहरीले पौधों का सेवन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइनाइड विषाक्तता। कुछ चारा जैसे कि ज्वार, बाजरा, बबूल, अलसी आदि, इन सब में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड मौजूद होते हैं। तो इनके कोमल फसलों में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड की मात्रा अधिक होती है, साथ ही पानी का अभाव और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग ग्लाइकोसाइड की मात्रा पौधों में बढ़ा देता है जो कि साइनाइड विषाक्तता की संभावना को बढ़ा देता है
1: जी, जी।
0: दूसरा आता है नाइट्रेट विषाक्तता। कई ऐसे नाइट्रेट युक्त पौधे होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ने के पत्ते, इनमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है। अगर हम इनमें नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करते हैं, साथ ही अगर पानी का अभाव है या सूखापन है तो इनमें नाइट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है जो कि शरीर में ऑक्सीजन को बाधित करता है और श्वास संबंधित विकार करवाता है। इसके अलावा आता है ऑक्सलेट विषाक्तता जो कि ऑक्सलेट युक्त फसल के अधिक सेवन से होती है जो कि शरीर में कैल्शियम की कमी को करवाता है। फिर बात करते हैं यूरिया विषाक्तता की। अधिक मात्रा में यूरिया मिश्रित आहार तथा खाली पेट यूरिया देने से क्या होती है। फिर एफ्लाटोक्सिकोसिस की बात करें तो कई बार हम जब चारा स्टोर करते हैं तो उस दौरान नमी और अधिक गर्मी के कारण फफूद लगने का चांसेस हो जाते हैं
1: जी,
0: जिस वजह से एफ्लाटॉक्सिन्स नाम के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं और जिस वजह से पशुओं के लीवर में और पाचन तंत्र को वो प्रभावित करते हैं
1: जी।
0: फिर आता है कीटनाशक। हम जानते हैं कि कीटनाशक का उपयोग पशुपालक बहुत करते हैं तो यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कीटनाशक के सेवन से चारे के रूप में हो या फिर दूषित पानी के रूप में पशु इनका सेवन करते हैं। इसके अलावा कई विषाक्त पौधे जैसे कि मैंने अभी बताया थेतर हो गया, गाजर घास हो गया, अकवन हो गया, ये सब भी इनके सेवन से भी पशुओं में हानिकारक या गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं
1: जी। जी, पशुओं में विषाक्तता के सामान्य लक्षण क्या पाए जाते हैं और अगर लक्षण देख लिया गया तो उसके उपचार क्या है?
0: लक्षण की हम बात करें तो यह निर्भर करता है कि किस प्रकार की विषाक्तता हुई है
1: जी,
0: किस प्रकार का चारा पशु ने खाया है। अगर हम बात करें साइनाइड विषाक्तता की तो इसमें पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, अत्यधिक लार गिरता है, आंख, नाक और श्लेष्मा झिल्ली का रंग गहरा हो जाता है, खून का रंग गहरा तथा मांसपेशियों में ऐठन और कंपन देखने को मिलती है और कई परिस्थितियों में जो कि गंभीर हो जाता है जब मामला तो पशु की मौत भी हो सकती है। नाइट्रेट विषाक्तता में आप देखेंगे कि पशु तेज तेज सांस ले रहा है तथा पशु कमजोर तथा लड़खड़ाकर चलेगा, मुंह और आंखें नीली पड़ जाएंगी, साथ ही रक्त का रंग चॉकलेटी कलर का दिखाई देगा
1: जी।
0: एफ्लाटॉक्सिकोसिस में पशुओं के पाचन तंत्र तथा लीवर में असर दिखता है जिस वजह से पशु खाना कम खाते हैं, सुस्त नजर आते हैं, कमजोरी आ जाती है, साथ ही उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता प्रभावित हो जाती है
1: जी।
0: यूरिया विषाक्तता की बात करें तो इसमें पशु सुस्त, बेचैन, शरीर में ऐठन, लार टपकना, बार बार पेशाब करेगा और सांस लेने में तकलीफ दिखाई देती है, साथ ही पेट फूल जाता है
1: जी।
0: ऑक्सलेट विषाक्तता में क्योंकि यह कैल्शियम की कमी करवाता है तो पशु में कमजोरी और दूध उत्पादकता पर फर्क पड़ता है। कीटनाशक विषाक्तता से मुंह में अत्यधिक झाग और लार टपकता है, मांसपेशियों में ऐठन, सांस लेने में तकलीफ, दस्त, बेचैनी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विषाक्त पौधों के सेवन के उपरांत पशुओं में पाचन तांत्रिक तथा श्वास संबंधी विकार देखने को मिलते हैं, साथ ही पुटुस, गाजर घास में त्वचा संबंधित समस्याएं जैसे कि शरीर में लालिमा, लाल चत्ते आदि दिखाई देते हैं जो कि पशुओं को स्ट्रेस में लाते हैं और उनकी उत्पादकता पर फर्क पड़ता है। अगर उपचार की बात करें तो विषाक्तता का इलाज पशु चिकित्सक के परामर्श तथा उनकी देखरेख में ही करवाएं क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक उपचार होता है जो कि पशु पालकों को फॉलो करना चाहिए। हम बात करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग की, तो इसमें सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायसल्फेट का इंजेक्शन दिया जाता है। नाइट्रेट विषाक्तता की बात करें तो इसमें 1% मिथिलिन ब्लू का इंजेक्शन दिया जाता है, साथ ही में एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं। ऑक्सलेट विषाक्तता में कैल्शियम का सेवन बढ़ाया जाता है और कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट का इंजेक्शन देते हैं। कीटनाशक व फफूंद के प्रकोप से बचाने के लिए पशु को फफूंद युक्त व कीटनाशक युक्त चारा देते हैं, साथ ही लक्षण के आधार पर उपचार किया जाता है
1: जी।
0: और यूरिया विषाक्तता में पशुओं को सिरका या फिर एसिटिक एसिड ठंडे पानी में मिलाकर देते हैं, और विषाक्तता का उपचार करने के लिए हम लक्षण के आधार पर और अनुसार उपचार करते हैं
1: जी। तो क्या मौसम का इस पर कोई प्रभाव पड़ता है?
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम बात करें तो अधिक गर्मी और उमस में तापमान नियंत्रित न होने की वजह से हीट स्ट्रोक आदि समस्याएं पशुओं में देखी जाती हैं, जो कि पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती है, साथ ही विषाक्तता की संभावना बढ़ा देती है। अधिक गर्मी, पानी का अभाव तथा सूखेपन की वजह से विषाक्त साइनोजेनिक पौधों में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही साथ उमस और नमी के कारण चारे में फफूंद लग जाते हैं, जो कि एफ्लाटॉक्सिकोसिस का कारण बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिक तापमान, उमस, सर्दियां, जल का अभाव, चारे की गुणवत्ता में परिवर्तन और कीटनाशक और उर्वरक का अधिक प्रयोग विषाक्तता को बढ़ावा देता है।
1: तो कि इसे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतें?
0: विषाक्तता से बचने के लिए पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने पशु को साफ, स्वच्छ व ताजा पानी पिलाएं तथा चारे की गुणवत्ता पर ध्यान दें
1: जी।
0: फफूंद, सड़ा गला चारा ना दें, पशु को ऐसी जगह ना चरने दें जहां कीटनाशक या उर्वरक का छिड़काव हुआ हो। मुरझाया सूखा हुआ चारा ना खिलाएं, क्योंकि उसमें विषाक्त तत्व तथा नाइट्रेट और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड की मात्रा अधिक होती है। साथ ही पशुओं के दाने और चारे की समय समय पर गुणवत्ता करवाएं। बारिश होने के तुरंत बाद फसल ना काटें, कुछ दिनों रुकने के बाद हरा चारा काटें, क्योंकि उसमें विषाक्त पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं और तभी वह अपने पशुओं को उसका सेवन कराएं। वह साथ ही पशुओं को अपनी निगरानी में ही चराने लेकर जाएं, जिससे कि पशु विषाक्त पौधों का सेवन ना करें
1: जी। तो किसान भाइयों, आज डॉक्टर दीक्षा जी ने हमें बहुत सरल शब्दों में समझाया कि पशुओं में विषाक्तता कितनी खतरनाक है और हमारी थोड़ी सी जागरूकता पशुओं के प्राण बचा सकती है। तो डॉक्टर दीक्षा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: तो भाई एखन हमारे मन के जानकारी दिले डॉक्टर दीक्षा मलिठा जी की बतालें कि मवेशी में होने वाला प्रमुख विषाक्तताएं कर बारे में। तो करण भाई करवा देखा तो गीत सुनी ला है नी?
3: गीत नहीं सुन ले तो मजे नहीं लागे है नी, कार्यक्रम में गीत नहीं रही तो फिर कैसे।
2: तो भाई चलो सुनिला मेघनाथ महतो और संगीत मनकर गावल गीत।
3: चलो

0: तो एखन हमरे मन मेघनाथ महतो और संगी मन कर गावल नागपुरी में गीत सुनत रही। और सही बात है, खेती बाड़ी तो अपन काम है कि अगर एक में मन लगे करब तो भाई राजा रहब है नी। और खेती बाड़ी वाला गीतों रहे और हमरे मन नई उम्र का नवा फसल में किसान मन से करल गोइठ के सुनवाई ला। तो आज गोटे महिला किसान है सुमित्रा देवी, उनकर से रावरे काका गोठिए ही तब चलो सुन लेवेला।
1: चलो नहीं किसान भाइयों नमस्कार। आज आपको एक ऐसी महिला से मिलवा रहे हैं जो कि खेती बाड़ी तो करते ही हैं, साथ में खाद भी बनाते हैं और नए नए खाद का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा नाम सुमित्रा देवी है और मैं कांके ब्लॉक से गागी गाँव से आई हूँ।
1: तो सुमित्रा बहन, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई थी क्या?
2: हाँ, कुछ बहुत पढ़ाई हुई है, मैट्रिक तक पढ़ाई हुई है।
1: और क्या करते हैं आप?
2: अभी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं।
1: जैसे कि बात करते हैं हम लोग खाद के बारे में, और बहुत सारे किसान भाई खाद देते हैं, बहुत सारे के रासायनिक खाद देते हैं, बहुत सारे जैविक खाद देते हैं, तो आप कौन सा खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं?
2: अधिकतर हम ऑर्गेनिक खाद, जैविक खाद प्रयोग करते हैं।
1: तो ये सब खाद के बारे में जब बात की है, जैविक खाद के बारे में, तो अपने से बनाते हैं कि खरीदते हैं?
2: हम जैविक खाद अपने से बनाते हैं।
1: उसमें क्या क्या बनाते हैं?
2: उसमें हम केचुआ खाद बनाते हैं। जैसे मेरा खेत में जो भी सब्जी का अवशिष्ट बचता है, लतर हो गया, जो भी साग का पत्ता उत्ता हो गया, उससे हम केचुआ खाद बनाते हैं। और हम खाद में बनाते हैं कि डीएपी खाद के जगह हम बनाते हैं मटका खाद हो गया, घन जीवामृत हो गया, और फिर द्रव जीवामृत हो गया, ये सब खाद बनाते हैं।
1: तो ये सब कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा हमारे किसान भाई को बताएं ताकि वो भी बना पाए।
2: जैसे मटका खाद हो गया, डीएपी का काम करता है, तो 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ डालते हैं और 250 ग्राम बेसन डालते हैं और आधा केजी गोमूत्र डालते हैं, आधा केजी गाय का गोबर डालते हैं। उसको हम एक सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं। उसको सुबह शाम हमको दहिना और बायां दोनों तरफ से मिलाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है उसको, तब एक सप्ताह में मेरा खाद तैयार हो जाता है। फिर उसको हम 15 लीटर पानी में मिला करके हम अपना खेत में छिड़काव करते हैं।
1: और इसके बाद फिर दूसरा कोई और खाद के बारे में?
2: गोबर को हम ले लेते हैं, फिर गोबर में बेसन डालेंगे 10 केजी गोबर में, देसी गाय का गोबर 10 केजी रहेगा, उसमें आधा केजी गुड़ डालेंगे और आधा केजी बेसन डालेंगे, फिर उसमें गोमूत्र डालेंगे, उसको अच्छा से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम उसको गोइठा, दीवार में गोइठा, छायादार जगह में गोइठा ठोकते हैं, फिर वो सूख जाता है, उसको हम एक जगह जमा करके और उसको चूर बनाते हैं। चूर बना करके उसको बोरी में हम डाल देते हैं, उसको हम समय समय से प्रयोग करते हैं।
1: इसको कौन सा खाद बोलते हैं?
2: इसको घन जीवामृत खाद बोलते हैं।
1: और कोई तीसरा खाद?
2: और तीसरा खाद है द्रव जीवामृत है, वो भी डीएपी का ही काम करता है। जैसे 5 लीटर पानी में हम 1 पाव गुड़ डालते हैं, 1 पाव बेसन डालते हैं और 250 ग्राम गोमूत्र डालते हैं, गोबर आधा केजी डालते हैं, उसको हम कोई घड़ा या डब्बा में उसको घोल करके छाया जगह में रख देते हैं और उसको भी हम सुबह शाम उसको चलाते हैं। फिर एक सप्ताह में वो तैयार हो जाता है। उसके बाद हम उसमें 25 डिसमिल जमीन के लिए 15 लीटर पानी में मिला करके हम उसको डालते हैं। वो मेरा खाद 1 महीना तक अच्छा रहता है, 1 महीना के बाद वो खराब हो जाता है, इसलिए हम उसको 1 महीना में अपना खेत में यूज करते हैं।
1: इसके अलावा और कोई खाद बनाते हैं?
2: इसके अलावा खाद नहीं, और भी बहुत सारा खाद है, लेकिन अब दवा बनाते हैं, कीटनाशक दवा।
1: तो दवा में क्या क्या बनाते हैं?
2: कीटनाशक दवा में ये है कि हम जैसे निमास्त्र हो गया कीड़ा को मारने के लिए, तो निमास्त्र बनाने के लिए 25 लीटर पानी में 2.5 किलो करंज का पत्ता डालते हैं, फिर 2.5 किलो नीम का पत्ता डालते हैं और धथुरा का पत्ता हो गया, थेथर का पत्ता हो गया, ये सबको हम मिला करके कूट के और पानी में 25 लीटर पानी में उसको हम डालते हैं, फिर उसमें हम 2.5 केजी गोबर डालते हैं, फिर और 2.5 लीटर गोमूत्र भी उसमें हम डालते हैं, उसको हम रख देते हैं। एक सप्ताह के बाद वो तैयार हो जाता है। फिर उसको हम 1 लीटर पानी में उसको छान लेते हैं, फिर 1 लीटर पानी में 250 ग्राम हम उसमें डालते हैं और अपना खेत में छिड़काव करते हैं ताकि कीटनाशक मर सके।
1: तो कौन कौन खेत में प्रयोग करते हैं इसका कीटनाशक का?
2: कीटनाशक हाँ, कोई भी खेती में हम लोग कर सकते हैं छिड़काव।
1: इसके अलावा और कोई कीटनाशक बनाते हैं?
2: हाँ
1: बताइए।
2: ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र में सब वही सब रहता है जो हम बताए ना अभी, तो उसमें ब्रह्मास्त्र में नीम का पत्ता, करंज का पत्ता, जितना भी जानवर जो भी पत्ता है जिसको जानवर नहीं खाता है सब पत्ता को कूट करके हम पानी में डाल देते हैं। खैनी होता है ना तंबाकू, तो तंबाकू का डंठल हो गया या मिर्ची भी हो गया, लहसुन हो गया, वो सबको हम उसमें सबको मिल कूट करके मिलाते हैं। उसके बाद एक सप्ताह में वो भी तैयार हो जाता है। अब उसको एक सप्ताह के बाद उसको छान के हम लोग अच्छा से बोतल में रख देते हैं, और बोतल में रखने के बाद हम उसको छिड़काव करते हैं। जैसे एक लीटर पानी में 250 ग्राम करके मिलाते हैं, और उसको हम एक सप्ताह के अंतराल में छिड़काव करते हैं, जिससे बड़ा कीट छोटा कीट जो भी कीड़ा है हमारे खेत में है उसको हम छिड़काव करते हैं तो मर जाता है।
1: चलिए अच्छी बात है किसान भाइयों कि आप लोग अपने खेतों में खाद और कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए खुद से बनाएं, जैसा कि हमारे सुमित्रा बहन बता रही हैं आपको, तो अवश्य हमारे खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए। सुमित्रा बहन, आप जितने सारे जो खाद और कीटनाशक के बारे में बताएं, ये सब की जानकारी आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली आपको
2: ये जो जानकारी मिली? जो कीटनाशक खाद हो गया, कीटनाशक दवा हो गया, ये हम लोग को जैसे LPS में हम जुड़े हैं तब हम लोग को वहाँ से प्रशिक्षण मिलता है, या तो आत्मा ब्लॉक से वहाँ से भी हम लोग को ट्रेनिंग मिला और हम लोग सब अपना खेत में यूज करते हैं।
1: तो इस सब को देख के आपके गांव वाले चाहे और आसपास के गांव वाले, तो वो लोग भी खुद बनाते होंगे?
2: हाँ, हम लोग मिल के बनाते हैं, फिर अगला दीदी अगला किसान है उन लोग को भी हम लोग जानकारी देते हैं, और मिल के एक साथ 10-15 किसान मिल के हम लोग वो सब काम करते हैं ताकि अगला किसान भी इसको जाने और समझे।
1: जो किसान भाई हमारे बात को सुन रहे हैं उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
2: जो किसान दादा और दीदी सुन रहे हैं उन लोग को हम यही सलाह देना चाहते हैं कि पहले हम लोग रासायनिक खाद से रासायनिक दवा से खेती करते थे, उससे हमारे मिट्टी में भी बहुत सारा उर्वरक शक्ति था वो खराब हो गया, नष्ट हो गया, और जो रासायनिक दवा था वो उससे भी हमारे शरीर में नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हम यही सलाह देना चाहेंगे कि जो भी किसान दादा दीदी हैं उन लोग को हम रासायनिक खेती को हटाना है और जैविक खेती को
1: अपनाना है। सही बात है किसान भाइयों, हम लोग को नए नए तरीके अपनाने हैं और खाद को हम लोग को बढ़िया से ध्यान देना है, क्योंकि खाद अच्छा प्रयोग करेंगे तभी हमारा खेत अच्छा से निकलेगा, है कि नहीं?
2: हाँ।
1: तो किसान भाइयों, आज हमारे साथ मौजूद थे सुमित्रा बहन, जो कि गागी रांची के रहने वाले हैं, जो कि खेती बाड़ी करते हैं और साथ में खाद और कीटनाशक खुद बनाकर अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, दूसरे दिन फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जोहार, और सुमित्रा बहन आपको भी नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। तो भाई देखो, आज कल किसान रहे सुमित्रा देवी जी की जैविक खाद से तो खेती बाड़ी करे ना, संग से दवा भी बनाए के छिड़काव भी करे ना, है कि नहीं?
0: ये अति वाला जैविक वाला दवाई बनाए।
1: हाँ, जैविक वाला दवा
0: तो बहुत बढ़िया ओकर से खेती करते हैं, और सही बात है। एखन सरकार हो बहुत जोर देवे थे जैविक खेती पर तो घूरे के लिए, और बहुत के घूरत है काले की पर्यावरण हो क्यों नुकसान हो थे और हमारे के नवा नवा बीमारी हो धरत थे, है नहीं?
1: तो भाई देखो, आज कर किसानों के कार्यक्रम का प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
0: और प्रस्तुति रहे प्रभु शरणकर।

0: होबे है नी, सब कर जीव जहाँ नगदे नगद होई, रौरे बताओ कैसे नहीं
1: भाई। देखो काम धंधा कर बात कर रही थी तो देखो नी, सरकार इसी इसी कार्यक्रम इस योजना मन बना है नी कि हमरे ले है।
0: तो सही बात है, सरकार तो देखो भाई लोक कल्याणकारी हो गया नहीं,
1: सही
0: और
1: बात
0: हमारे लोकतंत्र में तो लोक कल्याणकारी योजना बहुत चलेला। जखन से सरकार बोइन है सबकर हंसी खुशी जिंदगी बीते कहके बहुत एकन योजना चलाते आवत है, एखनो तक चलत है नहीं। रौरे मन एक रौरे को योजना कर फायदा ले है
1: भाई
0: कि नहीं?
1: देखो सरकार कर जितना योजना रहे ना सब हम क्योंकि देखिला पढ़िला और दूसर के समझाइला और बताबो करिला कि भाई देखो
0: हाँ
1: इस योजना में निकल है भरक चाहिए, बेरा सिरा थे जल्दी जल्दी भरू नहीं और काम करो।
0: हाँ ये तो बहुत बढ़िया काम कर, रेडियो से हम बताइले और गांव घर में बताइले, ये तो
1: सही
0: बहुत
1: बात है।
0: बढ़िया काम है। और इतना पढ़त है लिखत है रवरे जैसा, अगर करबे नहीं मनोज होल मके लागे कि इतना जे तनि कम पढ़े लिखे नहीं बूझे ना से उनके तकलीफ नहीं हुई, अगर रवर जैसा निशन
1: देखो
0: करबे।
1: भाई बात है सब कुछ जाने ना लेकिन करे के नहीं चाहे ना कोई, सब कोई बोले अच्छा फलना चीज तो मिल रहा है लेकिन कैसे जाएंगे कहाँ से मिलेगा कौन बताएगा, सब सोचते रहे ना लेकिन करब तब नहीं होई जी,
0: और
1: घर बैठल से
0: हाँ
1: तो कोनो नहीं होई।
0: और बहुत के कहे नहीं बोलो कि जायक पड़ेला, तनिक तो जायक होगी नहीं, जायक होगी का
1: कष्ट करब कर तब नहीं
0: हाँ
1: होई।
0: तनिक तो जायक होगी। और कोनो कोनो धाम तो गाँव ही आई जाली योजना, लेकिन पता लगा के लिए चाहे कोनो जैसे बाजार जैसन दिन में बोलोक मन में लागे ला तो जाओ, हर महीना नहीं जाओ तो 1-2 महीना कर पाछे जाओ, रो दिन के जायक कहते तो जायक चाहिए, काले कि सरकार हमारे लिए 1 कदम बढ़ाई है तो हमारे कहूँ 2 कदम बढ़ाए के चाहिए।
1: और देखो सरकार के कोनो योजना का देखा हमने तो सब बढ़िया है, बस हमरे के जागरूक होए का जरूरत है, जागरूक हो तो अपने आप हमारी जिंदगी सुधर जी है कि नहीं। और भाई देखो एक में एक योजना है कौशल विकास योजना, जेकर में है कि कौशल तरीका के हमारे मन के शिक्षा मन देवेला प्रशिक्षण मन देवेला ताकि हमारे कोनो काम करके कमाए सको।
0: मतलब कोनो काम में पारंगत होवे खे नहीं ओके कौशल कहे ना, जैसे मान ले रहे बहुत बढ़िया कोनो मोबाइल बना थी तो ओकर में कुशलता हासिल के रही, हुनर तेर हो के देख सकेला हमरे मन। और एक अगर एकर विकास होत है तो आजकल नौकरी बहुत कम भेटा थे मनोज
1: सही
0: काले कि
1: बात सही
0: सरकारी
1: बात
0: नौकरी बहुत कम आए सबके नहीं भेटाई, प्राइवेट नौकरी हूँ कम आए, तो हमरे मन ऐसा जो कौशल विकास योजना है एकर फायदा लेके प्रशिक्षण पाई के छोट मोट अपन जे व्यापार तेरे बिजनेस है क्यों शुरू कर सकेला।
1: अब भाई देखो इकर में शामिल होए के लिए कम से कम 15 साल से 45 साल कर बीच होए के चाहिए।
0: अच्छा
1: और देखो प्रशिक्षण के बात करब तो 3 महीना कर कोर्स है, 6 महीना कर कोर्स है, 1 साल कर कोर्स वाला कर बहुत सारा कोर्स है जेकर से हमारे मन फायदा उठा सकेला। लेकिन जानकारी होए के चाहिए कि सन कार्यक्रम सरकार चलाते और कहाँ हुआ थे कहाँ चलत थे ओकर बारे में जानकारी दे के हमारे मन के संपर्क करके लाभ उठाए के चाहिए।
0: हाँ अगर प्रशिक्षण लेवे के है तो कहाँ लेवे के है नहीं।
1: हाँ कैसे
0: और
1: फॉर्म भरे के कहाँ फॉर्म भरे ला, बहुत कुछ जाने ना कि भाई फॉर्म भरा थे कहाँ भरा थे, तो भाई कहीं तो भरावे करे। आजकल मोबाइल का युग है सबका हाथ मोबाइल है तो मोबाइल से देख के हमारे मन जानकारी ले सकेला और ऑनलाइन तो भरावे करेल है कि नहीं।
0: और देखो एकर तहत में जे प्रशिक्षण देवल जाएला वो मुफ्त देवल जाएला, और काले की नौजवान मन जब बेकार में आए तो से चलते उमन के लक्ष्य मतलब करल जाए, टारगेट करल जाए उमन के प्रशिक्षित करके उमन के अपन गोड़ में ठड़वा कर है नहीं।
1: सही बात है। और भाई देखो गुठिया तो रहबे करब हमरे मन और एक बाद बहुत सारा जानकारी भी है और गीत भी है तो पहले काठो बढ़िया सा गीत सुनती।
0: और मके लागत है बहुत दिन कर पाछे मैं शायद यशोदा देवी कर गीत सुनबो
1: तो
0: सन
1: चलो सुन
0: लागत
1: ले
0: है,
1: वो
0: तो
1: याद हो
0: चलो
1: जी ताजा हो जी।
0: चलो

0: তো ভাই দেখো, এখানে আমরা শুনলি যশোদাদেবীর সঙ্গে উনকার গাওয়াল গীত। আর জানি না কারণ ভাই, আমেরিকার রাজ্য আমেরিকার দেশ মে নি স্বচ্ছতা কর বারে মে বহুত কিছু সোচে না, আর সরকার ভি সোচে থে।
1: हाँ ये बात तो सही कहते, लेकिन गोटे बात मुके घड़ी घड़ी कचटेला, अगर हमरे के कहाँ का करे के, कैसे का करे के, कहाँ दिशा पे साफ करे, अगर उके नहीं जानत थी भाई तो कहाँ जाने
0: सही
1: ला।
0: बात है कि हमारे मन के जाने के सरकार बताया ला कि हुआ जाओ
1: हाँ
0: हुई करो करो,
1: कम
0: तो
1: से
0: पता
1: कम
0: है कर बात का है। हमारे तो जन्म से सीखे ला
1: तो
0: कि भाई
1: हाँ,
0: साफ सुथरा रहे के और कहाँ कहाँ जाए के।
1: और विवेक है हमरे जग तो जरूर विवेक कर प्रयोग करे के चाहिए। हाँ तनिक दिक्कत है काले कि जनसंख्या बहुत बेसी है, से चलते किचकिचा तो हो ही जाएला, लेकिन अगर हमारे मन सावधानी बरतब ध्यान देव तो सफा सुथरा तो राख सकेला नहीं।
0: और सही बात है, देखो ना आजकल सब डहरों में चले ना, तो सब जहाँ तहाँ ठीक ठाक इसे गंदा कर देव ना, चले कर मन नहीं करे, लगे कि शहर न खे पूरा गंदगी कर शहर हो जाए है।
1: शहर हूँ अब गाँवों मूर किचकिचा हो जाते का कहब। और देखो नहीं पान और गुटखा खाई के फचर फचर जे हिने होने थूक चलन, बाप रे बहुत
0: एक
1: दिक्कत है।
0: तो रोड तो गंदा होबे करेला, दोसर का छिटका भी पड़ेला, तो दोसर को
1: एकदम का होलक नहीं, एगो कार में रहे चलात रहे पान पान की का खाई थूक देले और गोटे छोड़ा रहे ओकर गोटा शॉर्ट पॉइंट मतलब शॉर्ट में लाग गेल, बताओ तो कतना
0: देखो
1: थे।
0: ऐसा नहीं का होल करण भाई कि बहस करे कर नौबत आ जाला, बहस कर अब तो दिमाग खराब हो जी, कोनो काम करे के जाते तो ओहम मने लगेला, मतलब कहे के सब तरह से कचका चक्कच हो जाले। नहीं
1: हाँ तो देखो नहीं भाई, अगर और थूकत ही चाहे कोनो करत है तो अंदाज

0: हमको लगा थे करण भाई रो रहे साफ साफ कहते कहते जरूर साफ कर्मी बारे में सोचो, अब आप साफ सुथरा करा दो।
1: ए भाई देखो, अब बीमार से मार होवे के न खे तनिक जिंदगी के लंबा करे के, तो हमरे के सब के ध्यान देवे के है नहीं, इन्हें कि दूसर के तकलीफ पहुंचाए के और सोच सोच के कूड़ी कूड़ के रह रहे हो बीमार पड़ जाते।
0: सही बात है भाई, तो चलो स्वच्छ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और अपन जीवन स्वयं के ठीक रखो। तो चलो और मन का संगे मनोज
1: और करण भाई के विदा देव, जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 7 बजने को है, बस थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया हमारा मंत्र। जमशेदपुर की तनिषा भी संवाद में हुई शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत भरा अपना इन्यूमरेशन फॉर्म। मतदाताओं से अभियान में सहयोग का किया आग्रह। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत ANM कर्मियों को सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का दिया निर्देश। पलामू जिले के सिक्का गांव में आर्जिनिमोन मिले सरसों तेल से हुई ड्रॉपसी बीमारी के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई थी मौत। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। और राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने की बैठक। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सांडा में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ भारत आगे बढ़ रहा है।
4: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
3: कार्यक्रम के दौरान जमशेदपुर की बेटी तनिषा गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद किया। भारत की पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च के अवसर पर इस संवाद का आयोजन किया गया। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यरत तनिषा ने ऐतिहासिक मिशन से जुड़े अपने अनुभव को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनर्निरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके। उन्होंने सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों से भी अपने तथा परिवार के सदस्यों का इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र भरवाने का आग्रह किया। रांची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा किया जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज जमशेदपुर के आदित्यपुर में दिवंगत हिमांशु सिंह के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान श्री साहू ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ी करती है।
5: जिस प्रकार से जमशेदपुर में जो पुलिस की मौजूदगी में हमने दो दो जुआ नौनिहाल बच्चों का साथ जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा करें शायद मुझे कम लगता है। एक जुआ की मौत हो गई, एक जुआ जीवन और मौत से जूझ रहा है और ये बतलाने का अपराधियों ने काम किया है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की सरकार नहीं चल रही है, इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर रही है।
3: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के महात्मा गांधी मार्ग स्थित श्री हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में नवनिर्मित वातानुकूलित सामुदायिक हॉल श्री राम वाटिका का उद्घाटन करते हुए इसे धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रेरणादायी केंद्र बताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 17-18 वर्षों से संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मियों को अंतरिम राहत देते हुए अंतिम निर्णय तक उन्हें सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सेवा नियमितीकरण से जुड़ी याचिका पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से विस्तृत जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। सिविल सर्जन डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि अर्जीमोन मिले सरसों तेल के सेवन से परिवार के सदस्यों को ड्रॉप्सी रोग हो गया था, जिससे शरीर में सूजन फैलने के बाद उनकी मौत हो गई। धनबाद के निरसा से विधायक आरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वसेपुर क्षेत्र में प्रिंस खान से जुड़े एक ठिकाने पर आज बुलडोजर चलाया गया। धनबाद के सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि कुड़की जब्ती के आदेश को लेकर कार्रवाई की गई है।
6: पूरी तरह से लगभग खंडर हो चुका था, इसका पार्ट पूरी तरह सब गिर रहा था। यहाँ पे बच्चे खेलते थे, एक दो बच्चों को यहाँ पे चोटें भी आई और संभवतः इसका नक्शा वगैरह भी पास नहीं था, तो इन सभी के मद्देनजर कुर्की भी की गई। जो पार्ट्स गिर रहे थे, जो खंडर हो चुका था जिसके कारण जनमानस को दिक्कत हो रही थी, बस उसे अभी तोड़ा जा रहा है और जैसे ही हमारे पास पूरा ऑर्डर आ जाएगा तो वैसे ही घर को भी उठाया जाएगा उसमें।
3: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी।
7: कस्टोडियन के कैपेसिटी में हमको देखना है किस तरह से हम हेड अवाइज को खर्च करे, जिसे इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ और पब्लिक ट्रस्ट बना रहे पर्पस है। अगर फाइनेंशियल में मिसमैनेजमेंट हो गया तो ट्रस्ट एलिमेंट है जो इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ डेवलप नहीं करेगा। उसी के लिए जितना भी रिपोर्ट होता है PAC में जाता है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं डिस्कशन करते हैं, यही फोकस है कि हम लोग उसी ट्रस्ट को बनाने के लिए गैदरिंग है उसको।

0: राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल आयोजन को लेकर आज देवघर में झारखंड और बिहार के अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। संथाल परगना आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरिया पथ पर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा की समीक्षा की गई। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने बताया कि मेले के दौरान वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी।
1: सभी बिंदुओं पे आज बहुत ही वृहद तरीके से चर्चा हुई और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग एस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्थ का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं ये कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है आपस में शेयर करें ताकि हम लोग आगामी श्रावणी मेला का संपादन हो बहुत बढ़िया से।
0: रांची जिला जूनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कल मोराहबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के वुशु हॉल में होगा, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों, क्लबों और प्रशिक्षण केंद्रों के जूनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के चयन का अवसर मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन, कहा डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया हमारा मंत्र। जमशेदपुर की तनीषा भी संवाद में हुई शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत भरा अपना इन्यूरेशन फॉर्म। मतदाताओं से अभियान में सहयोग का किया आग्रह। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मियों को सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का दिया निर्देश। पलामू जिले के सिक्का गांव में आर्जिनमोट मिले सरसों तेल से हुई ड्रॉपसी बीमारी के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई थी मौत, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। और राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने की बैठक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: दुमका जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों दुमका, जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा में SIR यानी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान मतदाता सूची को दुरुस्त करने और उसके शत प्रतिशत सत्यापन के लिए चलाया जा रहा है। BLO और BLO पर्यवेक्षक घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची से जोड़ना और अयोग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाना है। BLO चांदनी बीबी कहती हैं कि
2: मैं घर घर जाके गन्ना पत्र बांट रहा हूँ और जो सही पाया जा रहा है उनका मोबाइल में नाम कर रहा हूँ।
1: सरकारी शिक्षिका गायत्री रॉय वॉलंटियर के रूप में SIR अभियान को पूरा करने में जुटी हुई हैं। वह बताती हैं कि
3: मेरा प्रमुख काम है BLO और मतदाता को SIR से संबंधित सभी तरह का सहयोग प्रदान करना। ये सरकार की तरफ से एक पहल है जिसमें कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी फर्जी मतदाता मतदाता सूची में नहीं है।
1: मतदाता टीम के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गणना प्रपत्र में जरूरी जानकारी भरकर हस्ताक्षर कर BLO को लौटा रहे हैं। दुमका में संताल हूल दिवस शौर्य और गौरव भाव के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। दुमका की पोखरा चौक स्थित अमर शहीद सीधो कानू एवं वीरांगना फूलो झानू की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दुमका के विधायक और झामुमो नेता बसंत सोरेन, पूर्व विधायक और भाजपा नेत्री सीता सोरेन, उपायुक्त अभिजीत सिन्हा, पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक

0: बसंत सोरेन ने कहा कि
1: दिन को लोग जरूर मनाएं और उनके द्वारा कार्य किए गए हैं उन चीजों को याद करते हुए, उन्हें अनुसरण करते हुए अपने जीवन को एक प्रेरणा के तौर पर जीवन मिलाने का प्रयास हुए।
0: भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इस अवसर पर कहा कि
2: हम लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि आज की सरकार की जो गलत नीतियों का जो परचम लहरा रही है और अवैध खनन पूरे जोर शोर से चल रही है और यहाँ के जनता भूखे मर रहे हैं वो हम लोग देखने पा रहे हैं।
0: दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि दुमका के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम स्पीड पोस्ट से एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी जिसमें दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की बात लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि
3: डिस्ट्रिक्ट जज साहब को पोस्ट लेटर दिया गया जिसमें कि बोला गया कि हम लोग कोर्ट में हमला करेंगे। इसमें मुख्य बात है स्पीड पोस्ट में चिट्ठी लिखे थे वो अपने आधार कार्ड मेंशन किया, अपना डिटेल एड्रेस भी दिए थे तो उसका छानबीन किया गया। उसमें वर्तमान निवासी हैं जो आधार कार्ड है उन लोगों ने बताया कि हम लोग कभी ऐसा चिट्ठी नहीं लिखे, लगता है कोई दुर्भावना से हम लोग से किसी का विवाद होगा इसलिए हम लोग का नाम दे दिया और आधार कार्ड मेरा डाल के जज साहब के यहाँ कोई स्पीड पोस्ट कर दिया।
0: बासुकीनाथ श्रावणी मेले की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। इस माह के अंत में मेले की शुरुआत होनी है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
4: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: अभी आप सुन रहे थे हो लोकगीत, कलाकार थे बुधन सिंह कुंकल एवं साथी। और आइए सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार नागपुरी, उराव, मुंडारी, हो एवं संथाली भाषा में।
1: ये आकाशवाणी रांची है के अब रोरम नंजू कुमारी से नागपुरी में साप्ताहिक समाचार सुनू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून के मन की बात कार्यक्रम में कहले कि स्वदेशी सी 295 जहाज कर पहला उड़ान कर संगे भारत विमानन और रक्षा क्षेत्र में बड़ सफलता हासिल कई रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कर राष्ट्रव्यापी सफलता कर तारीफ करते कहले कि इकर में देश विदेश कर करोड़ों जनता मन भाग ले लें।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई, इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: डिजिटल इंडिया अभियान सफलतापूर्वक 11 बरिस पूरा कर ले है। 1 जुलाई 2015 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकर शुरुआत कर रहे हैं। देश कर वस्तु और सेवा कर यानी GST लागू होवे कर हो 9 बरिस पूर गेलक। ई ऐतिहासिक कर व्यवस्था कर संरचना के तर्क संगत और मानकीकृत बनाए के एक भारत श्रेष्ठ भारत कर दृष्टिकोण के मजबूत कर है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले 28 जून के झारखंड कर एक दिवसीय दौरा में रांची पहुँचल। ई पहर उ कहल कि केंद्र सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास ले वचनबद्ध है। उ बतालें कि झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन मुद्रा और उज्ज्वला जैसन योजना मन से करोड़ों आदमी मन के लाभ हो है। नीति आयोग कर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में झारखंड देश का टॉप 3 राज्य में जगह बना है। बेस वित्तीय अनुशासन कर चलते राज्य के अचीवर श्रेणी मिल है। झारखंड टैक्स राजस्व 60% से अधिका राखलक और राजकोषीय घाटा के 3% से हेठे बनाए के राखलक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर अगुवाई में 2 जुलाई के होवल राज्य कैबिनेट कर बैठक में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के राज्य में लागू करे कर नीतिगत मंजूरी दे देवल जा है। कैबिनेट कर बैठक में कुल 27 को प्रस्ताव मन के मंजूरी देवल गया। लोक भवन रांची में 1 जुलाई के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झारखंड राज्य सूचना आयोग कर 4 गो नवा सूचना आयुक्त मन के पद और गोपनीयता कर शपथ दिवालय। मुख्य सचिव अविनाश कुमार राज्यपाल कर नियुक्ति आदेश के पढ़ के सुनालय। राज्य में 30 जून से 29 जुलाई तक मतदाता मनकर SIR अभियान चलाल जाते जेकर तहत BLO घर घर जाए के 2,64,00,000 मतदाता मनकर जांच करत हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन SIR कर तहत अपन अपन प्रपत्र भर के जमा कर लें और शो पात्र नागरिक मन के समय से मतदाता सूची कर सत्यापन करवाए कर अपील कर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जून के रांची कर खेलगांव कर टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 को नवा चयनित सहायक आचार्य मन के नियुक्ति पत्र दिलें। इकर में पहला से पांचवा क्लास तक ले 274 और छठवां से आठवां क्लास ले 768 गो सहायक आचार्य मन आएं। नई दिल्ली में कल राज मनकर पंचायती राज मंत्री मनकर कार्यशाल कर आयोजन करल गेलक। इकर में झारखंड कर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल होलें। उ बतालें कि झारखंड के साल 2026-27 से 2030-31 कर माझे करीब 14,231 करोड़ रुपया कर अनुदान राशि मिली। झारखंड हाईकोर्ट पारा शिक्षक मन ले बड़े फैसला सुना है। अदालत नियमित होवे से पहले कर संविदा सेवा अवधि के हो पेंशन योग्य माइन है। सरकार के 8 सप्ताह कर भीतरे 6% ब्याज कर संगे पेंशन लाभ देवे कर आदेश मिल है। राजधानी रांची संगे गोटा राज्य में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान जारी है। इकर तहत राज्य कर 61,00,000 से अधिका और रांची में 5,00,000 से अधिका छुआ मन के पोलियो रोधी खुराक पियाल जाय। जमशेदपुर में करनी सेना कर जवान नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड कर पाछे राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर निर्देश में जमशेदपुर SSP और सरायकेला कर SP के पद से हटाए के नवा पुलिस अधिकारी मन के नियुक्त करल गेलक। झारखंड में 30 जून के ऐतिहासिक खुल दिवस कर मौका में अमर शहीद सिद्धो कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो के गोटा राज्य में श्रद्धापूर्वक नमन करल गेलक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीर सपूत मन के श्रद्धांजलि दिलें। पूर्वी सिंहभूम जिला में मलेरिया से 4 जन कर मौत कर पाछे झारखंड सरकार राज्य भर में स्वास्थ्य अलर्ट जारी करते सब उपायुक्त मन के वेक्टर जनित रोग मन कर रोकथाम ले तत्काल व्यापक कार्रवाई कर निर्देश दे हैं। भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड कर 4 गो खिलाड़ी मनकर चयन हो है। इकर में 3 गो रांची कर, बरियातू कर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कर छात्रा मन है कहें, चौथा खिलाड़ी सिमडेगा कर है के। महाराष्ट्र कर नासिक में आयोजित 14वां राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड कर खिलाड़ी मन शानदार प्रदर्शन करते कुल 9 गो पदक जीतलें। इकरे संगे आकाशवाणी रांची से नागपुरी में साप्ताहिक समाचार सिरालक।
3: इद आकाशवाणी रांची के अकुनिम पुतुल त्रिकीति कुड़कनु हफ्ता खबर मिना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून उल्ला मन की बात कार्यक्रम नु बाचस का स्वदेशी सी 295 विमान ही पहल उड़ान संगे भारत विमानन अरा रक्षा पहटानु अकय सफल मंजगिरी। आस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ही पूरा राष्ट्र नु सफल मनन एरर अकय सराहना नन्नु बाचस का या देश विदेश का करोड़ों आलर भाग होचर।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई, इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
3: डिजिटल इंडिया अभियान तंगहे 11 वर्ष पूरा नंज चुकरा। जुलाई 2015 नु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इदी ही पहल ही ओरे नंज कराचस। प्रधानमंत्री बाचस का ई अभियान भारत के उनटापुना वैश्विक चिन्ह चीताच की रही। देश नु वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू मनना हूँ 9 वर्ष पूरा मंजा करा। ई ऐतिहासिक कर व्यवस्था कर संरचना तर्कसंगत अरा मानकीकृत कमर उनटा भारत श्रेष्ठ भारत ही दृष्टिकोणन पुख्ता नंज की रही। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावलेश 28 जून उल्ला झारखंड नु ओन दिवसीय दौरा नु रांची अड़सियस। आस बाचस का केंद्र सरकार सामाजिक न्याय अरा समावेशी विकास गे प्रतिबद्ध रही। आस तिंगियस का झारखंड नु प्रधानमंत्री जनधन मुद्रा अरा उज्ज्वल लेखा योजना ती करोड़ों आलर गे फायदा मंजा। नीति आयोग ही फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नु झारखंड देश ता टॉप 3 राज्य नु अड्डा कमज की रही। बेहतर वित्तीय अनुशासन ही करने राज्य के अचीवर श्रेणी खखर की रही। झारखंड टैक्स राजस्व 60% ती बग्गे उया अरा राजकोषीय घाटन 3% ती किया उया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही अध्यक्षता नु 2 जुलाई उल्ला मंच का राज्य कैबिनेट ही वैश्की नु विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 राज्य नु लागू नन्ना ही नीतिगत मंजूरी खखरा करा। वैश्की नु कुल 27 प्रस्ताव ही स्वीकृति खखर की रही। लोक भवन रांची नु 10 जुलाई ती मन्ना शपथ ग्रहण समारोह नु राज्यपाल संतोष कुमार गंगवारस झारखंड राज्य सूचना आयोग ही 4 पुनः सूचना आयुक्त रिन पद अरा गोपनीयता ही शपथ चीताचस। मुख्य सचिव अविनाश कुमारस राज्यपाल शी बहाली अधेशन बचर मिन्ताचस। राज्य नु 30 जून ती 29 जुलाई गोटी मतदाता ही खास गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान चलावा लगी। 71 बियोलोर एड़पा एड़पा कालर 2,64,00,000 वोटर ही जांच नना लगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवारस अरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मतदाता सूची ही खास गहन पुनरीक्षण अभियान ही तहत तंगा तंगा प्राप्त भर आ जमा नंजर। दुयो शीर्ष नेतर राजी ताहुरमी पत्र नागरिकर संगे समय ती मतदाता सूची ही सत्यापन नंत आना ही अपील नंजकार अनर। मुख्यमंत्री सोरेन 29 जून उल्ला रांची ता खेलगांव नु राना टाना

0: अगत इंडोर स्टेडियम नु 9042 नव चयनित सहायक आचार्य गे नियुक्ति पतखटियस या पहिला ती पांचवा क्लास गे 274 अरा छठा ती आठवीं क्लास गे 768 सहायक आचार्य मिशारा अनर नई दिल्ली नु चिरो राजी ता पंचायती राज मंत्री ही कर्शाला ही आयोजना नंतारा या झारखंड ता ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल मंजा आतिंगिया का झारखंड गे बछर 2026-27-2030-31 ही मझी लगभग 14,231 करोड़ ढिबा ही अनुदान राशि हखरो झारखंड हाईकोर्ट पारा शिक्षक कर गे कोहा फैसला मिनताचा अदालत नियमित मनना ती पहले संविदा सेवा अवधिन पेंशन योग मंजूर ई सरकार गे 8 सप्ताह ही मजी 6% ब्याज ही संगे पेंशन लाभ चीना ही आदेश चिच्चा राजधानी सहित गोटा राजी ती राष्ट्रीय पोर्टफोलियो अभियान जारी रही अभियान ही तहत राजी ता 61 लाख ती बग्गे अरा रांची ता 5 लाख ती बग्गे खद्दर इन पोलियो रांची खुराक उनतो छमन के चिके पोलियो रोधी खुराक उन्ताना रही जमशेदपुर नु करनी सेना ता युवा नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड ही हो खा राजी नु राजनीतिक अरा प्रशासनिक हलचल तेज मंच की रही भाजपा मामला नु कड़ा रुख अपना नु कानून व्यवस्था मैया गंभीर सवाल उठावाज की रही अया मुख्यमंत्री हिमांशु ने सी निर्देश नु जमशेदपुर SSP अरा सरायकेला ता SPN पद ती हटावर पुनः पुलिस अधिकारी गे कमान सौंपता की रही झारखंड नु 30 जून उल्ला ऐतिहासिक हुल दिवस ही मौका नु अमर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरो अरा फूलो झानो रिन गोटा राजी नु श्रद्धा पूर्वक नमन नंतारा इदि संगम कुड़ुक नु हफ्ता खबर मुंजरा
1: निया आकाशवाणी रांची तना मन ना दोहोड़ो जगर ते धनिक गुड़िया तेने हफ्ता रिया खबर वु अयुम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसी इरलिया जोन रे मोन रे अजगर काजी कामी रे काजी के दची स्वदेशी सी 295 जहाज रे असीदा उटंगलो ते भारत रे जहाज उड़ो होप्रो रे पूरा गी पोकोत कना इनकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गोटा दिसुम रे बुगी लेका हो बजाना एना बर्निका तान लोकिन काजी के दची दिसुम उड़ो एटा दिसुम रे करोड़ो ते आदिका होड़ो को जमा लेना
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: डिजिटल इंडिया अभियान गेल में सिर में पूरा किया नया ते गोटा भारत दिसुम पोक्तो कना 1 जुलाई 2015 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया एटेला दिसुम रे GST रे आरे सिरमा पुरयना नया ते गोटा भारत दिसुम पोक्तो तना केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले हिसी अरे जून रे झारखंड रे मुसिंग मेंते रांची से ट्रलेना ने दिपली इनकिन काजी के दची केंद्र सरकार समाज रे न्याय और बुगिन विकास मेंते जोरा कदा इनकिन उदुप के दची झारखंड रे प्रधानमंत्री जनधन मुद्रा और उज्ज्वला लेकन काजी कामिते पूरा गी होड़ो को फायदा कदा नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रे झारखंड दिसुम रिया अप्य राज रे टायद बैकेदा झारखंड रे टैक्स अपी अपी प्रतिशत अधिक तयन जना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अनयर रे बर जुलाई रे होबलन राज रिया कैबिनेट दुनुम रे जी रामजी आयन 2025 रे राज रे लागू मेंते हे जना कैबिनेट रे आ दुनुम रे हिसी या काजी कामी हे जना लोकभवन रांची रे 1 जुलाई रे नेडालैंड किरिया जोम जलसा रे राज्यपाल संतोष कुमार गांगवार झारखंड राज्य सूचना आयोग रेन उपनवा सूचना आयुक्त को के हुदा रे अक्रिया को एमत कुआ मूद सचिव अविनाश कुमार राज्यपाल हुकुमाय पढ़ाव के दा राज रे हिसी गेल जूने ते हिसी आरे जुलाई संतेन सेसेन मूद पिपती SIR उलगुलान सेसेन तना नया लेकते BLO ओड़ा ओड़ा सेन कुआय ते बार करोड़ अपी हिसी उपुन लाख भोट एम को के पिपती उतना राज्यपाल संतोष कुमार गांगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वोटर लिस्ट रे मूद पिपती काजी कामी लेकते अपन अपन फोरम किन फेरे केदा बरन किन राज रेन होड़ो को के अपन अपन वोटर लिस्ट लेल रुवड़ रे किन गुआरी कदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिसी अरे जून रे रांची रे अखेल गांव रे अटाना भगत।

0: राजधानी रांची जमा गोटा राज्य रे पल्स पोलियो अभियान से सेंतना ने काजी कामी लेका ते अपी हिसी मिट लाके ते अधिका उड़ो रांची रे मोणे लाके ते अधिका हुन को के ने पोलियो रानू एमजना। जमशेदपुर रेन करनी सेना रेन सेपरेट नेता हिमांशु सिंह गोपोज तायम ते राज्य रे राजनीति उड़ो प्रशासन रे काजी कामी जोर कना भाजपा आईन अड़ी रे सवाल कदा। इंतारिगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ना हुकुम ते जमशेदपुर एसएसपी उड़ो सरायकेला एसपी के हुदाय ते फर्क के ते नवा सिपाही साहेब को के जिम्मा एमकना नेलोतिगी आकाशवाणी रांची ते खबर नेतारिगी टुंडू जना मर
1: नेना आकाशवाणी रांची तना ना अबेन डॉक्टर प्रदीप कुमार बोदरा ताते मी हाटो रे खबर हो हायम ते आई में बेन मुन दुन नरेंद्र मोदी तेकिंग 28 जून मुसिंग मन की बात कुरुडुरु रे जागर के डच चेकिंग स्वादेशी 295 अपिर जाजोर या मांग अपिरेन सुल भारत होयो रे अपिरेती आ पाइटिको ओंडो होरो जांगी ता रे मरंग सफलता नाम नाम जाना आकिंग अंतरराष्ट्रीय योग दिलंग रे गोटा दिसुम रे सफलता रे आकिंग सारावतन लो किंग जागर कड़ाची नेन रे देश विदेश रे करोड़ होड़ो को शामिल लेना।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: डिजिटल इंडिया अभियान भुगिल कते अपना गेल बोचर पूरे किया है। जुलाई 2015 मुसिंग मून तुवन नरेंद्र मोदी तकिंग नैन पार्टी को अयोब लेना मुलुक रे गिनीस ओंडो सेवा कर ची जीएसटी लागू जनती आउ आरे बचो पूरे जना निना इतिहास रे कर व्यवस्था बनाई को काजी जगर रिया बुदिते ओंडो मानवा को बाई बनाई लेकते मियन भारत श्रेष्ठ भारत उड़ केड़े तिया केंद्रीय सामाजिक न्याय ओंडो एक्तियर इट राइज दुवन रामदास अटवाले तिकिंग 28 जून मुसिंग झारखंड रिया मुसिंग लगी रांची तिकिंग हुजू लेना नेन आसड़ा रे अकिंग जगर केडची केंद्र सरकार सामाजिक न्याय ओंडो सबिन को उन्नति लगी उदिते तडा नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रे झारखंड मुलुक रे टॉप आपिए राज को रे जगह बाइकडा राज मुर्दुवन हेमंत सोरेन तेकिंग अजस्ता रे 2 जुलाई रे हुआ जन राज कैबिनेट रिया दुनुक रे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 राज रे लागू तिया नीतिगत मंजूरी एम जना कैबिनेट रिया दुनुक रे कुल हिस्सी ई ए प्रस्ताव को स्वीकृति एम जना लोकभवन रांची रे 1 जुलाई रे हुभजन शपथ समारोह रे राज्य गोम के संतोष कुमार गंगवार तेकिंग झारखंड राज्य सूचना आयोग रेन उपनीय नामा सूचना आयुक्त को पद ओंडो दनंग रिया काजी को का उद्वेतिया बाट को एमत को राज्य रे 30 जून ने ते 29 जुलाई जों वोट एमतन को विशेष एसआईआर अभियान से सेंतना बीएलओ को वा वा सेंजनते 12 करोड़ अपे इसी 1 लाख वोट एम को जांच को तना राज गोमके संतोष कुमार गंगवार ओंड मुंडुएन हेमंत राज मुंडुएन हेमंत सोरेन तेकिंग वोट एम ए तिया फारम पेरे के तेकिंग जमा केडा राज्य मुर्दुवन हेमंत सोरेन तेकिंग 29 जून मुसिंग राज्य रिया खेलगांव रे मिना थाना बाकत इंडोर स्टेडियम रे 1000 बार हिसी नमा सलाकन मिस्टेस मास्टर को बहाली सकम को हटिंग किडा हटिंग केट को किन नेन रे 1 क्लास यते 5 क्लास लगे 1200 अपे हिसी गेल उपन उपन ओंड 6 क्लास यते 8 क्लास चोंग लगे 200 अपे हिसी इरिल मास्टर मिस्टेस को शामिल करना। नई दिल्ली रे होला राज कोरेन पंचायती राज मंत्री को कार्यशाला हो बजना नेन रे झारखंड रे ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल लेना झारखंड हाईकोर्ट पारा मास्टर मिस्टेस को लगे मरंग फैसला आयु इचिकेट को कोर्ट नियमित आयरते संविदा सेवा उड़ी के पेंशन योग्य मनातिंग के डाय सरकार इरिल हफ्ता भीतर 3% सूद लोते पेंशन लापा नामेतिया आंदे नाम नमकना। ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିର ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଅଭିଯାନ ନୀତିର କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟ ଆପେ ଇସି

0: इस अंक में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया, झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक, सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण और हुल दिवस। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों लगभग 1000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रांची में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद अपने संबोधन में कहा,
1: आपको अब नई राह में आगे बढ़ने के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में आपको एक ऐसे क्षेत्र का एक जिम्मा दिया जा रहा है जहां आने वाले समय में इस राज्य का बौद्धिक क्षेत्र का आयाम कैसा हो ये अब आप लोग तय करें। हमारी आने वाली पीढ़ी अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो इसको आप सभी लोग तय करेंगे। सरकारी संस्थानों में बहुत सारी उंगलियां उठती, बहुत सारी कमी खामियां दिखाई जाती। कुल मिला जुला करके सरकार की जो एक जिम्मेवारी है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। झारखंड प्रदेश में आज सरकार की जिम्मेवारी 3.25 करोड़ लोगों की, सभी लोग सरकारी कर्मचारी, आईएएस आईपीएस पदाधिकारी, बूढ़ा बुजुर्ग, किसान, महिला, बच्चे, नौजवान, छात्र छात्राएं, हर वर्ग, यहाँ तक कि हवा पानी, उन सब की भी जिम्मेवारी सरकार की होती है। ये मैं मानता हूँ कि सरकार की प्रथम जिम्मेवारी हर विषयों पर होती, लेकिन उसके अंदर राज्य के नागरिकों की भी एक जिम्मेवारी, अलग अलग तरीके से हर एक की जिम्मेवारी।
0: राज्य के स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने नियुक्ति प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया,
2: माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के कुशल मार्गदर्शन में आज पुनः 274 इंटर प्रशिक्षित एवं 768 स्नातक प्रशिक्षित नव नियुक्त सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। विगत 6 माह में 5528 इंटर प्रशिक्षित तथा 4284 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। यह क्षण राज्य के शैक्षणिक परिदृश्य के लिए बहुत बहुमूल्य है। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नियुक्ति के सौगात निश्चित रूप से राज्य की तरक्की और भविष्य के सपनों को संजोने का एक सुनहरा रास्ता प्रदान करेगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करें, जन सरोकार के मुद्दे पर संवेदनशील बने तथा राज्य के शैक्षणिक विकास की गति को आगे ले जाने में अपना श्रेष्ठ योगदान समर्पित करें।
0: झारखंड में पिछले दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर की शुरुआत हुई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में एसआईआर प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया,
3: झारखंड में आज एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गया। इसी एसआईआर प्रक्रिया में 2,64,63,236 वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। वर्तमान का मतदाता सूची में इतना वोटर है। प्रत्येक वोटर का नाम में 2 एनुमरेशन सभी बूथों पर पहुंचा दिया गया। आज उसका प्रक्रिया शुरू हो गया। आज एनुमरेशन प्रोसेस के लिए बीएलओ है, प्रत्येक वोटर का संपर्क करते हुए अपने एनुमरेशन का काम करेंगे। एनुमरेशन के समय में उनका वोटर का प्रीवियस एसएआर में भारत में कहां पर भी क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, उसी का सूचना लिया जाएगी। वो सेल्फ कैटेगरी में किनका उम्र 1 जुलाई 1987 का पहले जन्म हुआ, किसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 के बीच में हुआ उसमें उनका माता नेता का जानकारी लिया जाएगी, किसका जन्म 2/12/2004 का बात हुआ वहां पर माता पिता दोनों को भी प्रीवियस एसआर में जानकारी लिया जाएगी। किसी वोटर के पास वो उनका माता पिता का नहीं, मतलब सेल्फ का उनका जानकारी नहीं होगा, मतलब भी उसी का भी इनुमरेशन होगा। मतलब सभी प्रोसेस के कितना भी वोटर सबको इनुमरेशन प्रोसेस में भाग लेंगे। प्रत्येक वोटर का इनुमरेशन फॉर्म जाएगी, उसका प्रत्येक वोटर का इनुमरेशन फॉर्म वापस आएगी। 5 अनकलेक्टेबल कैटेगरी है, उसमें उसी का बीएलओ अपने रिपोर्ट के साथ अनकलेक्टेबल इनुमरेशन फॉर्म का भी उनका रिपोर्ट के साथ में कमीशन का वापस करना इसी नेट के माध्यम से, इसलिए एक भी इनुमरेशन फॉर्म छूटने के लिए संभावना नहीं रहती है। किसने अनकलेक्टेबल है उनका भी वापस आना है। उसमें 5 कैटेगरी है, एक ऑलरेडी एनरोल मतलब उनका पहले एक का अधिक जहां पर है उसका डी बोला जाता है, उसके बाद डेथ है, उसके बाद परमानेंटली शिफ्टेड हो या अपने जगह से दूसरा जगह पर चले गए उनको, फिर उसके बाद एब्सेंट वोटर है मतलब अनट्रेसेबल है, उनका बारे में कोई जानकारी नहीं उसका। 5वां कैटेगरी है रेफ्यूज कैटेगरी, साइन कैटेगरी है, उसमें मतलब ये कोई भी भारत का नागरिक था, अभी दूसरा देश में जाके वहां नागरिकता प्राप्त ले लिया, वो भी एनुमरेशन फॉर्म मिलने के समय में वो भी बीएलओ को तुरंत वापस कर देंगे। यहाँ पर झारखंड में कोई भी गलत डिक्लेरेशन देखे, कोई भी दूसरा देश का नागरिक अपने यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर दिया तो उनका भी एनुमरेशन फॉर्म आएगी, वो भी बीएलओ का बिना सिग्नेचर करके वापस लटा देंगे कारण खत्म होता है। ये पांच कैटेगरी के छोड़कर बाकी सभी वोटर का एनुमरेशन फॉर्म प्राप्त करके उनका ड्राफ्ट रोल में नाम आएगी। कोई वोटर आज का डेट में झारखंड में ही बाहर में कुछ काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ अन्य कुछ कारण से बाहर होगा, मतलब उनका परिवार का सदस्य कोई उसी फॉर्म का सिग्नेचर कर सकते हैं तथा उनका माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन कोई भी होगा उन्हीं का जहां बिहाफ पर उनका रिलेशन क्या है वो लिखते हुए उनका सिग्नेचर कर सकते हैं। साथ में ये भी सुविधा है उनका ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने एनुमरेशन फॉर्म का सिग्नेचर कर सकते हैं, मतलब बीएलओ ये भी सुविधा करेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनका भेजवा के उनसे भी वापस लेके उसका भी कर सकते हैं, इसलिए कोई भी वोटर छूटने के लिए संभावना नहीं रहती।
0: झारखंड सूचना आयोग में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पिछले दिनों लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में चारों सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के आरंभ में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित आदेश पढ़ा गया।
4: मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को झारखंड राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त के पद पर अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि नियुक्त करता हूं। एक, श्री अनुज कुमार सिन्हा। दो, श्री तनुज खत्री। तीन, श्री अमूल्य नीरज खलको। चार, श्री शिव पूजन पाठक। मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा से आज दिनांक 8 जून 2026 को लोक भवन रांची में दिया गया। संतोष कुमार गंगवार, झारखंड के राज्यपाल।
0: नियुक्ति आदेश के बाद राज्यपाल श्री गंगवार ने चारों सूचना आयुक्तों को बारी बारी से शपथ दिलाई।
5: मैं अनुज कुमार सिन्हा, जो झारखंड राज्य सूचना आयोग का सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।
6: मैं तनुज खत्री, जो झारखंड राज्य सूचना आयोग का सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।
7: मैं अमूल्य नीरज खलको, जो झारखंड राज्य आयोग का सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता,

0: ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों के मर्यादा बनाए रखूंगा।
1: मैं शिवपूजन पाठक, जो झारखंड राज्य सूचना आयोग का सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।
2: झारखंड मंत्री परिषद की पिछले दिनों रांची में हुई बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रधान सचिव वंदना दादेल ने मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया,
3: मंत्री परिषद की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव योजना एवं विकास विभाग से झारखंड योजना सेवा नियमावली 2026 के गठन के स्वीकृति के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव वित्त विभाग से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए राज्य राजस्व प्रतिवेदन झारखंड सरकार वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 4 को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में वृत्तिका की सुविधा देने के संबंध में। इससे संबंधित पूर्व में ही 23/4/2026 को संकल्प निर्गत हो चुका है और उसमें जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी जो स्टाइपेंड मिलेगा, उसमें जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स सदर अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे हैं उन्हें भी ये स्टाइपेंड वृत्तिका दे होगी। पूर्व के संकल्प में सदर अस्पताल का नाम छूट गया था तो उसे शामिल करते हुए ये प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव संख्या 6 कार्मिक विभाग से राज्य के प्रखंड अंचलों में पदस्थापित झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों के युक्ति संगत पदस्थापन करने के संबंध में। इसके तहत जो 12 से कम पंचायत वाले प्रखंड एवं अंचल हैं, वहां पर एकल पदस्थापन के लिए कुछ प्रखंड एवं अंचलों को चिन्हित किया गया है, जहां पर कि या तो सिर्फ वीडियो पदस्थापित होंगे या सिर्फ अंचल अधिकारी। तो इस तरह जो वर्तमान में 271 हमारे प्रशासनिक इकाई हैं, इसमें से 164 वैसे प्रशासनिक इकाई हो जाएंगे जिसमें 2 पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी का पदस्थापन किया जा सकता है और 53 ऐसे प्रशासनिक इकाई रहेंगे जिसमें सिर्फ अंचल अधिकारी रहेंगे, सीओ कम वीडियो एक ही पदाधिकारी रहेंगे और 54 ऐसे प्रशासनिक इकाई रहेंगे जहां पर की वीडियो का एकल पदस्थापन रहेगा। प्रस्ताव संख्या 7 है ग्रामीण विकास विभाग से झारखंड राज्य में वीबीजी रामजी योजना को लागू करने की नीतिगत स्वीकृति दी गई और साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया गया कि पीवीटीजी समूह के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करेंगे।
2: राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में पिछले दिनों हूल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अपने संदेश में कहा,
4: आज हूल दिवस और ये कैसा दिवस जहां पर लोगों ने इस देश का कई सारे शोषण का शिकार होते रहे थे, अंतोगत्वा आज का ये दिन उस शोषण के विरुद्ध मोर्चा खोला गया और परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर उस क्रांति के आंदोलनकारी शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो जैसे लोगों ने पूरे देश के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध बिगुल फूका और आज हमें गर्व है कि आज इन वीर सपूतों के बदौलत झारखंड को एक वीर भूमि भी हम कहते हैं। ऐसे कई अवसर हैं इस राज्य में कि ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं।

0: और उनके सम्मान में उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं।
1: इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक महविश रहमान, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम केरकेट्टा।

अभी आप सुन रहे थे समाचार ध्वनि चित्र, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से।

लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत, अनजान का लिखा हुआ, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, एवं फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म नसीब से।

नसीब फिल्म से आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत। आनंद बख्शी का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अर्पण से।

आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म अर्पण से, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी रांची से। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अनामिका से।

अनामिका फिल्म से आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, लता मंगेशकर के स्वर में, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की एवं संगीत आडी बर्मन का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म तेरे घर के सामने से।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आपने सुना ये प्यारा सा गीत फिल्म तेरे घर के सामने से, शब्द रचना हसरत जयपुरी की एवं संगीत एस जी बर्मन का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म शक्ति से।

0: लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म शक्ति से, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की राजस्थान गुजरात यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
3: सबसे पहले तो बात इस पर कि राजस्थान के इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए उनका शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए एक नई व्यवस्था की एक नई आधारशिला रखी। आइए सुनते हैं कि भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करने और विभिन्न मेगा परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
4: चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है।
3: अशोक टंडन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद।
3: पूरे कार्यक्रम को देखें तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये सिर्फ विकास परियोजनाओं का कार्यक्रम है या फिर एक विकसित भारत 2047 की जो रूपरेखा लेकर के प्रधानमंत्री चल रहे हैं उस दिशा में बढ़ाया गया कदम है।
5: बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जो कोई भी योजना हाथ में लेते हैं और उनका वो वहाँ पर केवल नींव पत्थर नहीं लगाते बल्कि उनको पूरा होने पर उनका उद्घाटन भी करते हैं। और उसी कड़ी में हम जब देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर गए तो उन्होंने जो है सबसे पहले तो जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल के भवन का उद्घाटन किया
3: जी,
5: और जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया, और उसके बाद बालोतरा पे गए जहां उन्होंने 1,00,000 करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया और कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया। तो ये जो एक हम बात कर रहे थे कि इसमें जो आज जो भी कार्यक्रम हुए उनमें शहरी विकास, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़कों और ये ऊर्जा के नए स्रोत, पावर ट्रांसमिशन, ये सारे प्रोजेक्ट जो थे आज विकसित भारत की ओर जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जा रहा है उसी कड़ी में ये अलग अलग योजनाओं का जो आज हमने देखा कार्यक्रम हुआ, और उसमें से मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण था कि राजस्थान के बालोतरा जिले में देश के पहले ग्रीन फील्ड इंटेग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र के नाम समर्पित किया उन्होंने, और उन्होंने इससे भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि भी बताया। तो इस तरह से आज राजस्थान का जो दौरा हुआ उसमें अगर हम बात करें तो एक एक कार्यक्रम को हम ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ने जो अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहली बात भी यही कही कि जो राजस्थान में जो आज मैं ये कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहा हूँ मैं पेट्रोकेमिकल का, क्योंकि आज के संदर्भ में हमारी जो डिप्लोमेसी है उसने जंग में भी ये बात दिखा दी कि पहले हम जो तेल था कम देशों से लेते थे
3: जी।
5: अब हमने अपनी डिप्लोमेसी को देखते हुए उसका दायरा बढ़ाते हुए अब हम 40 देशों से कच्चा तेल मंगवा रहे हैं। तो ये हमारे जो मित्र देशों के साथ संबंध हैं उसको उन्होंने उजागर करते हुए कहा कि जब पश्चिमी एशिया में युद्ध के दौरान हरमुज बंद हो गया था और दुनिया भर में बड़े संकट आ रहे थे, लेकिन हमारे प्रयासों ने हमें संकट

0: संयुक्त उद्यम से ये जिस रूप में विकसित हुआ है इसमें 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इसमें लगभग 80,000 करोड़ का इसमें निवेश किया गया है।
1: जी जी।
0: और उत्पादन की क्षमता की हम अगर बात करें तो पेट्रोकेमिकल क्षमता जो है 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और इस रिफाइनरी का जो कुल मिलाकर उत्पादन है वो 26% जो है वो बड़ा है और ये जो दक्षता और स्थिरता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है। तो इसी ऊर्जा के संबंध में पेट्रोकेमिकल की तो हमने बात की, आपने जैसे कहा कि सौर ऊर्जा की भी बात की है प्रधानमंत्री ने और इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि राजस्थान में तो सूर्य देवता की बहुत कृपा रहती है और इसीलिए यहाँ पर जो सौर ऊर्जा का है 1,000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को उन्होंने आज राष्ट्र को समर्पित किया।
1: बिल्कुल।
0: और इसे लगभग 5,500 करोड़ के निवेश से विकसित किया गया है और इस परियोजना में स्वदेशी रूप से निर्मित 24.22 लाख सौर मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। यानी प्रधानमंत्री ने ये जो 300 मेगावाट के बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र के साथ समर्पित किया तो इससे स्वदेशी रूप से निर्मित 7.75 लाख सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का उपयोग किया गया है।
1: जी टंडन जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस उनकी कही गई इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि उर्वरक संकट भी देखा गया है बीते दिनों में वैश्विक स्तर पर और दुनिया भर में यूरिया महंगा हुआ लेकिन भारत में किसानों को सब्सिडी के साथ सस्ती दर पर यूरिया उपलब्ध कराया गया। तो इस तरह के जो फैसले सरकार लेती है क्या लगता है कि इनका किसानों और कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक सकारात्मक असर पड़ता होगा?
0: मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कुल मिलाकर पेट्रोकेमिकल उत्पादन की बात है इसमें पेट्रोकेमिकल जो इसमें जो कुल मिलाकर सारा इसमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की जो बात की गई है उसी में देखने को ये मिलता है कि पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास के एक आधार उद्योग के रूप में कार्य करेंगे तो इससे उद्योगों में और जैसे आपने कहा कि उर्वरक इत्यादि में भी उनके उत्पादन और हम जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो बनेगी। तो कुल मिलाकर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार इस पर बहुत ही महत्व देते आ रहे हैं और अलग अलग समय पर योजनाओं को लागू करते हैं तो देश में ऊर्जा संकट जो है और जैसा कृषि में भी हम देखते हैं कि उसमें भी इसकी बहुत आवश्यकता रहती है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमें ये सब देखने को मिला।
1: राजस्थान में 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। कहा जा सकता है कि सिर्फ युवाओं के विश्वास को बढ़ाने का एक अवसर नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षमताओं को भी मजबूती प्रदान करना, आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना, इस पर भी प्रधानमंत्री का काफी फोकस रहता है तो आपके इस पर क्या विचार होंगे?
0: देखिए आज जो 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए वो राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में वो चुनकर आए यानी उनकी नियुक्ति जो हुई इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी क्षमता से उसके टेस्ट पास किए और ये राजस्थान के लगभग सरकार के लगभग सभी विभागों से जुड़े हुए और हम देख रहे थे टेलीविजन पर कि सब नौजवान जो है वो 20 से 25 साल की उम्र के थे और उनको नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री से जब मिले तो वो गदगद हो रहे थे और प्रधानमंत्री ने उनमें से कुछ लोगों से बात भी की। तो ये जो समस्या रहती है कि भारत में जो है हम लोग रोजगार सृजन करने के बारे में बात करते हैं नौकरियों की तो प्रधानमंत्री का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम नौकरी पाने की बजाय नौकरी देने वाली बात करें तो स्टार्टअप के जरिए। लेकिन सरकार के पदों पर भी जो नियुक्तियां होती हैं तो राजस्थान सरकार के पदों पर जो नियुक्तियों के आज 54,000 दिए गए नौजवानों को नियुक्ति पत्र वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था।
1: टंडन जी, अब गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हो रही है, OSAT सेमीकंडक्टर संयंत्र का शुभारंभ होना एक बहुत बड़ी बात है। आइए सुनते हैं आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है।
1: भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है ऐसे समय में जब भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर

0: सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद भागीदार बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, तो इस संयंत्र का शुभारंभ होना हमारे लिए कितनी बड़ी सफलता होगी?
1: भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में ये सचमुच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस संयंत्र में जो वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो रहा है, ये वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी है। क्योंकि ये जो परियोजना है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो प्रधानमंत्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, उस मिशन के तहत स्वीकृति पहली 4 परियोजनाओं में से एक है और इसे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश से विकसित किया गया है
0: जी।
1: और अगर ये पूर्ण क्षमता के साथ जब संचालन में आ जाएगा तो इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप की होगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में तेजी से हो रहे विकास के कारण मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में सहयोग करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो ऐसा संयंत्र है, ये ऑटोमेटिव, औद्योगिक, दूर संचार, 5G, इंटरनेट और इन सब क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ती है और उस क्षेत्रों के जो ग्राहकों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करेगा। क्योंकि चिप की कमी के बिना, चिप की कमी होने से इन सब क्षेत्रों पर असर पड़ रहा था और अब ये जो संयंत्र, ये वेफर सॉर्टिंग, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेज डिजाइनिंग और विश्लेषण, टेस्ट प्रोग्राम, ये सब निर्धारित और इन सब को ये सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सेवाएं जो है, ये जो आज संयंत्र प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, उनकी सेवाओं को ये प्रदान करेगा। तो ये एक शुरुआत है और इसमें भारत के एक भरोसेमंद और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर विनियम केंद्र के रूप में जो इसका हुआ है, ये देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने में भी प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है ये उसके अनुरूप भी हुआ।
0: जी टंडन जी, गुजरात को वैसे भी व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, कई सारी परियोजनाएं लगातार वहां पर काम कर रही है, बुलेट ट्रेन की भी हम बात करते हैं, वहां उसकी शुरुआत भी गुजरात से ही हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा जो हर बार नई योजनाएं शुरू की जाती, नई योजनाओं का शिलान्यास किया जाता, उद्घाटन किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, गुजरात की बात तो है ही है क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री का अपना राज्य है, लेकिन जितनी भी परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने लागू की है देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी, सभी का, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। तो जो परियोजनाएं देश के भागों में की गई है, चाहे वो पूर्वोत्तर का भाग हो चाहे दक्षिण भारत हो, उन सब में जो परियोजनाएं लागू की जाती है वो पूरे समय पर ही हुई है। तो गुजरात थोड़ा, जैसे प्रधानमंत्री पहले भी कहते थे कि हमारा जो पश्चिम क्षेत्र है भारत का, वो तो विकास की दर से बहुत आगे है, लेकिन हमारा जो पूर्वोत्तर या पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें हम देखते थे कि पूर्वोत्तर के राज्य तो सही ही, लेकिन बंगाल, उड़ीसा, ये राज्य पिछड़े थे, बिहार था, झारखंड था, उनके भी विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो उन पूर्वी राज्यों को भी अब पश्चिमी राज्यों के मुकाबले में लाकर खड़ा किया गया है। और ये सारी योजनाएं जो है हर देश के हर प्रांत में लागू की गई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे कोई भी राज्य हो, इसमें कहीं भेदभाव नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजनाएं जब इनका शिलान्यास होता है तो इनको पूर्ण भी, इनको इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री उसी समय सीमा के अंदर करते हैं। यही उनका निर्देश भी है कि जो भी मुझसे लोकार्पण करवाना है या जिसका मुझसे आपने नींव पत्थर लगवाया है, उसकी योजना को पूरा भी मेरे से ही करवाएंगे, तभी मैं उसके लिए आगे आऊंगा। तो ये कुल मिलाकर जो अप्रोच है विकसित भारत की ओर बढ़ने की, उसमें सभी प्रदेशों के साथ न्याय हो रहा है और देश का कोई ऐसा भाग नहीं है इसको ये शिकायत हो कि प्रधानमंत्री जो है उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं।
0: जी टंडन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की राजस्थान गुजरात यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। अगला कार्यक्रम समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से बस थोड़ी ही देर में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य

0: जनजीवन प्रभावित है, प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश माघो विद द न्यूज एट 9।

0: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's visit to Rajasthan and Gujarat, launch of key development projects. The participants are Ashok Tandon, political analyst, and Nishit Kumar, anchor.
1: Prime Minister Narendra Modi is on a one-day visit to Rajasthan and Gujarat, where he inaugurated, dedicated, and laid the foundation stones in both the states. And to discuss more about it, we are joined in by Mr. Ashok Tandon, political analyst. A warm welcome, Mr. Tandon.
2: Thank you.
1: Mr. Tandon, as we all know, the Prime Minister was on a visit to Rajasthan and Gujarat today. But first of all, we'll talk about the Rajasthan visit, wherein he inaugurated, laid the foundation stone and dedicated to the nation various projects. And if we talk about the transport sector, that is...
3: मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैनल अक्वामे क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निजाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शा आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कूरा प्लांट में मुतनव्वा अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वज़ीर आज़म ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निजाम से मसनूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
4: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते सवा दो सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
3: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मस्कूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
5: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
3: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीत मिलेगी। दिन भर के अपने दौरे में वजीर आजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मगरबी एशिया की महाजराई से 21वीं सदी का तवानाई का सबसे बड़ा बहरान पैदा हो गया था, लेकिन भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मुहतात बंदोबस्त के जरिए इस चैलेंज पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया।
4: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
3: जनाब मोदी ने कहा कि बुहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम रोल रहा। वजीर आजम ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने दिया।
4: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया, औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
3: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की नुमाया तरक्की को ये कहते हुए उजागर किया कि मुल्क की दिफाई बरामदात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई हैं। नई दिल्ली में मीडिया के एक निजी इदारे की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि माली बरस 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से जबरदस्त इजाफा तकरीबन 57 गुना है और इससे मेक इन इंडिया दिफाई प्लेटफॉर्म में बढ़ते आलमी एतमाद की अक्कासी होती है।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
3: वजीर दिफा ने कहा कि माली बरस 2025-26 में सालाना दिफाई पैदावार भी अब तक की सबसे ज्यादा बुलंदी 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई, जो 2014-15 की सतह से तकरीबन 3 गुना है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की वसीतर हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग की तौसी, मोटर गाड़ियों के बरामदात में इजाफे, अंदरूने मुल्क तैयार करदा रेल इंजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया। گزشتہ دہائی میں ملک کی ترقی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے قلت کا ازالہ کیا، مواقع بڑھائے اور ورک کلچر میں یکسر

0: मेघ मालाओं में खो जाता है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
1: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता, उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती, वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
0: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
0: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
1: कालिदास उज्जैनी पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अंतही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
0: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मल्लिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है।

0: और विरह विमर्दता एक क्षणिक तुम हो,
1: मेघ मन और मालवा। अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
2: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसे भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है। हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
3: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
2: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
3: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था, और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थी जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद

0: उस अपने कस्बे में लौट के आया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है, और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, और उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में भी लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही है। अच्छा, शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है, और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था, और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनपे बुंदिया चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे, और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। ये रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है, और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इससे भी वो मांगती है कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इससे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के कशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगली दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशरफी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहाँ तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा ये केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं भी, जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी
0: अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन यह है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वांगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले, तो वो आप देखिए कितनी चीजें हैं जो आपको आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं आशा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी 4 लाइनें सुना सकता हूँ और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी, और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हां भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी, सुरसरी स्नाता राजनीति की अचल स्वामिनी, साम्य धर्म ध्वज धर की माता। भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथीपुरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभति उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50 60 70 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्म गौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत के उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हो, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
2: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थामकर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपने ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: टुनाइट इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी प्रेजेंट ख्याल रिसाइटल बाय Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan, the doyens of Kirana Gharana, has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Tumri presentations, which makes his renditions quite colorful and popular.
0: आज रात पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय के साथ संगत करेंगे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा।
1: Tonight, Pandit Arnob Chattopadhyay is accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksh Mukhopadhyay and on the tanpura by Koel Saha.
0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय राग यमन के साथ करेंगे। यह बंदिश पूर्वार्ध में विलंबित एक ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय बिगिन्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग यमन। द कंपोजिशन इज सेट टू विलंबित एक ताल फॉलोड बाय द्रुत तीन ताल।

0: गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: काल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति in the Khayal recital by Pandit Arnob Chattopadhyay. He was accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha. And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है.
2: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah